हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और ठीक 30 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। भोर की इस मंगल बेला में आप सभी श्रोताओं का सहृदय स्वागत है।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 6 बजने को है। श्रोताओं, बस कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए समूह स्वर में मातृवंदना।

श्रोताओं, समूह स्वर में मातृ वंदना भी आपने सुनी। अब सुनिए गणपति भजन सुरेश वाटकर की आवाज में। शब्द रचना चंद्र शेखर पांडे की है, संगीत शंभू से इनका है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सुनिए कृष्ण भजन। गायक कलाकार और संगीतकार जगजीत सिंह है। शब्द रचना रविंद्र पठानिया की है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं ये अगला भजन राजेश मिश्रा की आवाज में। कमलेश सोनी का संगीत है, शब्द रचना रेखा रावल की है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना के अंतर्गत भक्ति गीत और संगीत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आपको जानकारी दे रहे हैं आज की प्रसारण सभा के कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर के बाद 6:30 से सुनिएगा श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होगा ए हरिहरन का। 6:40 से सुनिएगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 6:55 से दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार हम रिले करेंगे। सुबह 7 से कार्यक्रम सुबह सुबह आप सुन सकेंगे और 7:05 से कृषि संकेत। 7:10 से भोपाल केंद्र से रिले करेंगे हम प्रादेशिक समाचार। 7:20 से सुनिएगा मन चाहे गीत कार्यक्रम और 7:45 से संगीत सरिता कार्यक्रम। सुबह 8 से सुनिएगा दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। 8:15 से सुनिएगा कार्यक्रम लोक संगीत। आज सुबह 8:30 से सुनिएगा पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर और 8:45 से कार्यक्रम संगीत सरिता। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। 9 से मुंबई केंद्र से इन कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हम करेंगे। सुबह 10 से भोपाल केंद्र से आप सुन सकेंगे जिले की चिट्ठी। 10:05 से शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागिनी और 10:30 से कार्यक्रम आपकी पसंद। सुबह 11 से सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और 11:30 से मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। 2:10 दोपहर में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे भोपाल केंद्र से और 2:15 से दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार। शाम 5 से भोपाल केंद्र से इस घंटे की सुर्खियां और 5:02 से कार्यक्रम युववाणी का अनुप्रसारण किया जाएगा। शाम 5:30 से सुनिएगा कार्यक्रम संगीत सरिता। 6:30 से कार्यक्रम सदाबहार गीत। शाम 6:45 से कार्यक्रम लोकरंग। शाम 7 से दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 7:10 से भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 7:30 से सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8 से संगीत सरिता। 8:15 से चित्रपट संगीत। 8:30 से संगीत सरिता। रात 8:45 से सुनिएगा दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और 9 से कार्यक्रम मन चाहे गीत आकाशवाणी के सागर केंद्र से। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे 9:30 से और आज रात 10 से आप सुन सकेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण रिले करेंगे हम दिल्ली केंद्र से। 11 से सुनिएगा हिंदी में समाचार और 11:05 से अंग्रेजी में समाचार। समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आज की प्रसारण सभा का समापन हम करेंगे रात 11:10 पर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर ए हरिहरन का है।

अपना नाम एक तनु बताने वाले कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतने के लिए उसे तप की महिमा बताई, जिसके प्रताप से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। कर्म धर्म की कथाएं कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये सुनकर जब राजा प्रताप भानु पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ गया और उसे अपना नाम बताने को हुआ, तो कपटी मुनि एक तनु ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ। अभी तक अपने विषय में तुम्हारा कुछ न बताना मुझे अच्छा लगा। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बताते। तुम महाराज सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, साधु संतों में निष्ठा और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता जगी है। अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा प्रताप भानु ने मुनि को प्रसन्न जानकर अपनी ओर से ये दुर्लभ वर मांगा कि उसके शरीर को वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य करता रहे। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण कुल छोड़कर काम भी तुम्हारे सामने झुकेगा।

आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं जाली नोट फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज है, अनजान और राजा महेंद्र की शब्द रचना है, संगीत है ओपी नैयर का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम।

0: जी
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
0: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
0: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था आंख मिचोली, मुकेश की आवाज थी, मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना थी, संगीत चित्र गुप्त का था। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं जंतर मंतर फिल्म से सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में गीत, हसरत जयपुरी की शब्द रचना, संगीत सरदार मलिक का।

0: और श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत को अब हम संपन्न कर रहे हैं। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। अब आप सुन सकेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा।

0: अथ वार्ताः। नीट प्रकरणे छात्राणां विरोध प्रदर्शनावधौ कथितारक्षकैः कृतानि कार्याणि अधिकृत्य विपक्षदलानां कोलाहलात् ह्यः संसदः उभे सदने लोकसभा राज्यसभा च स्थगिते अभवताम्। लोकसभायां ह्यः सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 26/26 इति प्रस्तुतम्। एतस्य विधेयकस्य उद्देश्यं सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 26/24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। डॉ. जितेन्द्र सिंहः एतत् विधेयकं सदने प्रस्तुतवान्। अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि सन्ति। तेषु दोषसिद्धानां कृते अधिकतमः 10 वर्षीयः कारावासः, 10 कोटि रूप्यकपर्यन्तः अर्थदण्डः तथा दोषसिद्धानां सम्पत्त्यधिग्रहणञ्च सम्मिलितमस्ति। प्रकरणानां शीघ्रनिस्तारणं सुनिश्चितुं प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य च प्रशासनाय विशेषद्रुतन्यायालयानां स्थापनं विधेयके अनिवार्यरूपेण विहितम्। एतदपि विधीयते यत् अपराधस्य सूचना आरक्षकस्थानके अभिलिखितदिनाङ्कात् 2 मासाभ्यन्तरे अन्वेषणं सम्पन्नं भवेत् तथा च आरोपपत्रप्रस्तुतेः 3 मासाभ्यन्तरे न्यायनिर्णयः सम्पन्नः भवेत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः स्काईरूट एरोस्पेस इत्यस्य पवनचंदना नागा भरत डाका इत्येताभ्यां सह संवादम् अकरोत्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् वार्तालापे विक्रम 1 इत्यस्य सफलता विशेषतया चर्चिता, अन्येष्वपि कतिपयेषु रोचक विषयेषु चर्चा जाता। प्रधानमंत्री तयोः जीवनयात्रां भावियोजनाश्च श्रुत्वा हर्षम् अभिव्यक्तवान्। तेनोक्तं यत् तयोः ऊर्जा महत्वाकांक्षा सकारात्मकदृष्टिश्च भारतस्य निज अन्तरिक्षपरितन्त्रस्य सजीवभावनां प्रतिबिम्बयति। प्रधानमंत्री स्काईरूट एरोस्पेस इत्यस्य समूहस्य सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। उत्तर प्रदेश प्रशासनेन उच्चतम न्यायालयः संसूचितः यत् अयोध्या स्थितस्य राममंदिर न्यासाय प्राप्त दानराशेः कथित दुरुपयोगस्य अन्वेषणार्थं लखनऊ परिक्षेत्रस्य आरक्षक महानिरीक्षकस्य किरण एस इत्यस्य अध्यक्षतायां 4-सदस्यात्मकं विशेषान्वेषण दलं निर्मितम्। अस्मिन् दले एकः आरक्षक उपमहानिरीक्षकः, एकः वरिष्ठाराक्षक अधीक्षकः, एकक्ष अपर आरक्षकाधीक्षकः अपि भविष्यन्ति। उच्चतम न्यायालयेन राज्यप्रशासनं निर्देशितं यत् विशेषान्वेषणदले 5वें सदस्यरूपेण न्यायिक लेखा परीक्षकः अपि नियोज्यताम्। एतद्दलं 2 सप्ताहाभ्यन्तरे स्वप्रथम स्थिति प्रतिवेदनं न्यायालये समर्पयिष्यति। न्यायपीठं राममन्दिरदानराशेः कथित दुरुपयोगस्य तथा न्यासस्य वित्तीय लेखानां केन्द्रीयान्वेषण विभागेन अन्वेषणार्थं प्रस्तुताः याचनाः शृणोति स्म। एतन्मध्ये उत्तरप्रदेशस्य विशेष न्यायालयेन कथित राममन्दिर दान चौर्य प्रकरणे सर्वेषाम् 8 अभियुक्तानां न्यायिकाभिरक्षायाः अवधिः 14 दिनानि यावत् वर्धितः। भारतीय भारोत्तोलिका ज्ञानेश्वरी यादवः ह्यः ग्लास्गो नगरे आयोजितेषु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु महिलानां 53 किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवती। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च ज्ञानेश्वरी यादवं रजत पदक प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दितवन्तः। अधुना भारतस्य पदकतालिकायां 1 स्वर्णपदकं, 3 रजतपदकानि, 1 कांस्यपदकं च एवम् आहत्य 5 पदकानि सन्ति इति वार्ताः।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार का अनुप्रसारण। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 7 बजे हैं।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सुबह। नमस्कार, मैं हूं अदिति। आज हम बात करते हैं कल्पना की। कल्पना यानी वो जगह जहां मन कुछ देर के लिए वास्तविकता की सीमाओं से बाहर निकल जाता है, जहां कोई लक्ष्य हासिल करना जरूरी नहीं होता, कोई निष्कर्ष निकालना जरूरी नहीं होता और ना ही हर बात का कोई व्यावहारिक अर्थ ढूंढना पड़ता है। कई बार कल्पना केवल इसलिए होती है क्योंकि मन किसी बात को एक नए कोण से देखना चाहता है। तो चलिए आज कुछ देर के लिए हम भी एक कल्पना करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सुबह उठें और दुनिया को पहली बार देखें। आपको ना देशों के नाम पता हो, ना राज्यों की सीमाएं, ना शहरों के नक्शे और ना ही मोहल्लों की पहचान हो। आपके सामने केवल धरती हो, वही धरती जिस पर पहाड़, नदियां, पेड़, रास्ते और लोग हैं। कितना अलग दृश्य होगा, है ना? क्योंकि तब शायद हम ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा इलाका है और वो किसी और का, ये मेरा शहर है और वो पराया। तब हमारे सामने बस एक पृथ्वी होगी जिस पर अरबों लोग अपने अपने जीवन जी रहे होंगे। सोचिए कितनी रोचक बात है। पहले पृथ्वी थी, फिर हमने उसे देशों में बांटा, देशों को राज्यों में, राज्यों को जिलों में, जिलों को शहरों में, शहरों को मोहल्लों में और मोहल्लों को गलियों में। ये बांटना आवश्यक भी था व्यवस्था के लिए, पहचान के लिए, जीवन को संगठित करने के लिए। लेकिन कभी कभी लगता है कि व्यवस्था बनाते बनाते हमने अपने मन में भी बहुत सी सीमाएं बना ली। कई बार अपने ही शहर का कोई दूसरा इलाका हमें अजनबी लगने लगता है। किसी दूसरे प्रदेश की भाषा, किसी दूसरे समाज की आदतें या किसी दूसरे देश की संस्कृति हमें अपने से अलग लगने लगती है और फिर हम भूल जाते हैं कि इन सब पहचानों से पहले हम सब एक ही धरती के निवासी हैं। शायद यही कल्पना का सौंदर्य है। वो हमें कुछ देर के लिए उन रेखाओं से बाहर ले जाती है जिन्हें हमने स्वयं बनाया है। कल्पना कीजिए कि किसी बच्चे को दुनिया दिखाई जाए लेकिन नक्शा ना दिखाया जाए, उसे सीमाएं ना बताई जाएं, उसे ये ना बताया जाए कि कौन किस देश का है, कौन किस भाषा का है, कौन किस समुदाय का है। संभव है कि वो सबसे पहले लोगों को देखे, उनके चेहरे देखे, उनकी मुस्कान देखे, उनकी कहानियां सुने। शायद वो उन रेखाओं को उतना महत्व ही ना दे जिन्हें बड़े होने पर हम बहुत महत्वपूर्ण मानने लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि पहचाने महत्वहीन है। हमारी भाषा, हमारा शहर, संस्कृति, घर, ये सब हमारी जड़ों का हिस्सा है। लेकिन शायद ये याद रखना भी उतना ही आवश्यक है कि जड़ों के साथ साथ आकाश भी साझा है। हम सब एक ही सूरज के नीचे जागते हैं, एक ही चांद को देखते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं और अंततः हमारी खुशियां, हमारे डर, हमारे सपने और हमारी उम्मीदें भी एक दूसरे से बहुत अलग नहीं होती। शायद कभी कभी हमें अपनी कल्पना को इतना विस्तृत होने देना चाहिए कि वो मोहल्लों, शहरों और सीमाओं से आगे जा सके, ताकि हमें याद रहे कि इस विशाल पृथ्वी पर हम सब यात्री हैं। किसी ने कहीं जन्म लिया, किसी ने कहीं और, किसी की भाषा अलग है, किसी का पहनावा, किसी की परंपराएं, लेकिन घर अंततः हम सबका एक ही है। और जाते जाते कल्पना के बारे में एक और बात। कई बार हम कल्पना को किसी लक्ष्य, किसी प्रेरणा या किसी उपलब्धि से जोड़कर देखते हैं, बल्कि ज्यादातर हम ऐसा ही करते हैं, जैसे हर कल्पना का कोई उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता श्रोताओं। कभी कभी कल्पना किसी समस्या का समाधान ढूंढने या स्वयं को प्रेरित करने के लिए नहीं होती। कभी कभी कल्पना केवल कल्पना होती है, बस यूं ही मन का एक शांत, स्वतंत्र और सुंदर अभ्यास। एक ऐसा अभ्यास जो हमें कुछ देर के लिए दुनिया को वैसा देखने पर अवसर देखने का अवसर देता है जैसी वो है, और कभी कभी वैसी भी जैसी वो हो सकती है। इसी के साथ कार्यक्रम सुबह सुबह में बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुबह, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कृषि संकेत। विषय है भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं। विशेषज्ञ हैं विपिन जैन।
4: जो अपना भारत है किसी प्रधान देश है, और जो अपनी अर्थव्यवस्था है वो किसी पे ही आधारित है। बिना खेती के भारत अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। तो किसी क्षेत्र में जो है अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि
5: जी,
4: जो किसानों को सीधा लाभ पहुंचाती है, किसान भाइयों के खाते में हर वर्ष 6,000 रुपए सीधे बैंक खाते में पहुंचते हैं, जिसके द्वारा किसान भाइयों को कुछ आर्थिक मदद मिलती है। इसके बाद लगातार जो चल रही है फसल बीमा योजना, ये फसल के लिए मुख्य आधार है। यदि किसान भाई अपना फसल बीमा करवा लेते हैं तो इसके द्वारा भी एक सुरक्षा की गारंटी किसान भाइयों को मिलती है। इसके बाद MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य है, किसान भाइयों को MSP के द्वारा मिलता है, उसके लिए सरकार प्रयास करती है। इसके बाद बात आती है किसान क्रेडिट कार्ड की। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छा साधन है, क्योंकि पहले जो किसान भाई के पास पूंजी नहीं रहती थी तो वो व्यापारी या आढ़तिया साहूकारों से लेते थे, जिससे बहुत ज्यादा महंगे रेटों में उनके लिए ऋण प्राप्त होता था। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा न्यूनतम रेट पे उनको पैसा प्राप्त हो जाता है। इसके बाद नई तकनीक एवं नवाचार की बात करें तो पीएम कुसुम योजना है। इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिला है। साथ ही साथ आप देखें कि जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का या और भी उर्वरकों का प्रयोग होता है, तो पहले किसान भाई छोटे पंपों से करते थे, लेकिन अब जो नमो ड्रोन दीदी योजना निकली है, आप देखेंगे कि ड्रोन के द्वारा आप उर्वरकों का और अन्य पेस्टिसाइड खरपतवार नाशक के लिए जो काम घंटों में होते थे वो मिनटों में ड्रोन के द्वारा छिड़काव होने लगा है, कम समय में। और बहुत अधिक क्षेत्र में आप देखेंगे व्यापक रूप से एक समान रूप से ड्रोन के द्वारा आप छिड़काव हो रहा है। और साथ में देखेंगे कि मेरा स्वास्थ्य कार्ड की कौन सा पोषक तत्व कितना है, ये जानकारी मिल जाती है। और अब एक और नाम जुड़ गया है ई-नाम। इसमें जो मंडियों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, इसमें अधिक से अधिक व्यापारी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। और साथ में आप देखेंगे किसी मैपर में लगातार जो शासन की योजनाएं चल रही हैं, कहां कितने प्रदर्शन दिए गए हैं, किस किसान को दिया है, वो प्रदर्शन लगाया गया है तो उसमें शुरुआत बुवाई से लेके कटाई तक उसकी जो ग्रोथ है वो डिजिटल रूप से सैटेलाइट द्वारा ली जाती है, और उसका पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड भविष्य के लिए संधारित होता है कि जो प्रदर्शन लगाए गए थे तो उसका क्या परिणाम है। ये नई नई टेक्नोलॉजी और बहुत सारी योजनाओं के द्वारा लगातार 12 वर्षों में बहुत अच्छे कार्य हुए।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं विषय पर विपिन जैन से वार्ता। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 7:10 होने को हैं, बस कुछ ही पलों के बाद सुनिएगा भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्काईरूट एरोस्पेस के संस्थापकों से मुलाकात, विक्रम वन मिशन की सफलता पर दी बधाई। भोपाल के चौथे रेलवे स्टेशन निषादपुरा का आज शुभारंभ, मुख्यमंत्री दिखाएंगे मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 जुलाई को उज्जैन में करेंगे गुरु पूर्णिमा महोत्सव की अगुवाई, प्राचार्यों का करेंगे सम्मान। और भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक होगी अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक मीटिंग, कई देशों के संस्कृति मंत्री होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की अग्रणी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के सह संस्थापकों पवन चंदाना और नगा भारत डका से मुलाकात की। इस मुलाकात में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए स्काईरूट के विक्रम वन मिशन की सफलता पर पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कंपनी के संस्थापकों का उत्साह और दृष्टिकोण भारत के तेजी से विकसित हो रहे निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि यह क्षेत्र आने वाले समय में वैश्विक पहचान बनाएगा। भोपाल के चौथे रेलवे स्टेशन निषादपुरा की शुरुआत आज से होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। यहां मालवा एक्सप्रेस के अलावा सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज होगा। कल प्रदेश के खेल मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इंदौर जाने वाली ट्रेनें अब निषादपुरा से शुरू होंगी। नरेला विधानसभा क्षेत्र में बना यह स्टेशन करीब 3 साल पहले तैयार हो चुका था, लेकिन अब तक यहां से यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हो सका था।
1: बहुत सालों से जिस दिन का इंतजार था वो 28 जुलाई को पूरा हो रहा है और निषादपुरा का हमारा बहु प्रतीक्षित रेलवे स्टेशन अब ऑपरेशनल स्थिति में आएगा। 28 तारीख को, 28 जुलाई को शाम को 5:30 बजे मालवा एक्सप्रेस यहाँ पर ऑफिशियली रुकना शुरू होगी और 2 महीने तो वो भोपाल से चलेगी और आगे जो इंदौर की तरफ जाने वाली ट्रेन है वो निषादपुरा से ही शुरू होंगी। ये हमारे संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में 29 जुलाई को उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में 90% या इससे अधिक परिणाम देने वाले शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को सम्मानित करेंगे। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मिशन बुनियाद परियोजना का शुभारंभ भी करेंगे और स्कूल शिक्षा विभाग के नवनियुक्त प्राथमिक शाला शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी एक्सपो 2026 में प्रदेश को एग्री हॉर्टिकल्चर सेक्टर में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि 25 से 27 जुलाई तक भारत मंडपम में आयोजित इस एक्सपो में देश विदेश के कृषि और उद्यानिकी विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। उन्होंने जानकारी दी कि कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों के बीच मध्य प्रदेश की प्रदर्शनी को नवाचार और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रथम स्थान मिला है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कल उमरिया जिले के गांव मरदरी स्थित उमरार नदी के उद्गम स्थल पर आयोजित पूजन अर्चन एवं वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री श्री पटेल ने कहा कि नदियों का संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा आज के समय की सबसे बड़ी चिंता है। इसे एक व्यापक जन आंदोलन बनाना होगा। जल स्रोतों को सहेजने और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम सभी को मिलकर कदम उठाने होंगे।
3: प्रधानमंत्री ने 3 अभियान चलाए कि हर बूंद का आप संरक्षण करें, वर्षा जल को जमीन के भीतर डालें और जलगंगा अभियान की शुरुआत भी

0: इसलिए की थी कि हमारी नदी को जल स्रोत वो स्वच्छ भी होने चाहिए और वो जीवंत भी होने चाहिए। एक बड़ी गलती हमने की है कि नदियों को अपने प्रदूषित किया, इसलिए उन्हें स्वच्छता की बात की। दूसरा, हमने वृक्षों की कटाई की या नदियों के स्रोतों को की चिंता नहीं की, तो उनकी क्षमता में कमी आई है। उसके क्षमता वर्धन का एक ही रास्ता है कि हम वहाँ पौधे लगाए, और एक पौधा माँ के नाम अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया।
1: भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधि शामिल होंगे। कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी इस अवसर पर दी जाएंगी। ये जानकारी भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने कल कमिश्नर कार्यालय में तैयारियों की समीक्षा बैठक में दी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 5 और 6 अगस्त को मिंटो हॉल में तकनीकी समितियों की बैठकें होंगी, वहीं 6 अगस्त की शाम रविन्द्र भवन में सांस्कृतिक उत्सव आयोजित होगा। इसके बाद 7 और 8 अगस्त को भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के उन्नयन और विस्तार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को मास्टर प्लान के अनुरूप समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री शुक्ल ने कहा कि ये विस्तार पर्यटन के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता और जनजागरूकता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश के 68 शासकीय महाविद्यालयों में एआई और फिनटेक विद एआई के ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और 13 सुशासी महाविद्यालय शामिल हैं। ये कोर्स आईआईटी दिल्ली के सहयोग से संचालित होगा और विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में इस कोर्स के जरिए 2000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को कल संबोधित किया। उन्होंने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक बढ़ा पहुंचाने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की। भोपाल के राष्ट्रीय उद्यान वन विहार में चल रहे बाघ सप्ताह के तहत कल विद्यार्थियों के लिए बाघ विषय पर पाम पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर बाघों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 22 से 28 जुलाई तक बाघ सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत भोपाल के स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने ग्लासगो में महिला शॉटपुट 57 फाइनल जीतकर देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। 5वें दिन तक भारत के कुल पदकों की संख्या 10 हो गई है। शर्मिला ने 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ पैरा एथलेटिक्स में भारत की पहली राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण विजेता बनने का इतिहास रचा। वहीं इसी स्पर्धा में शिल्पा के शायला ने कांस्य पदक जीता और भारोत्तोलन में वल्लूरी अजय बाबू ने 79 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं ज्ञानेश्वरी यादव और विंध्या रानी ने भी क्रमशः रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून टर्फ समेत 2 सिस्टम सक्रिय होने से कल कई जिलों में तेज बारिश का दौर देखने को मिला। मौसम विभाग ने आज के लिए सतना, कटनी, उमरिया, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, रायसेन और बैतूल सहित 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां 4 इंच या इससे अधिक पानी गिर सकता है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के बाकी जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर के शासकीय जिला चिकित्सालय में नवनिर्मित MRI केंद्र का लोकार्पण किया। झाबुआ में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने समीक्षा बैठक लेकर लंबित कार्यों और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रस्तावित थानला प्रवास की तैयारियों का जायजा लिया। मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। कटनी में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान कलेक्टर आशीष तिवारी ने ओवरलोडेड वाहनों, स्कूल बसों और बिना नंबर वाले वाहनों के खिलाफ सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। डिंडौरी जिले में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और हाट बाजारों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और मंडला के नगरपालिका टाउन हॉल में आज युवाओं के लिए युवा संगम, रोजगार स्वरोजगार तथा अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्काई रूट एरोस्पेस के संस्थापकों से मुलाकात, विक्रम 1 मिशन की सफलता पर दी बधाई। भोपाल के 4th रेलवे स्टेशन निषादपुरा का आज शुभारंभ, मुख्यमंत्री दिखाएंगे मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 जुलाई को उज्जैन में करेंगे गुरु पूर्णिमा महोत्सव की अगुवाई, प्राचार्यों का करेंगे सम्मान और भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक होगी अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक मीटिंग, कई देशों के संस्कृति मंत्री होंगे शामिल। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत।

श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मन चाहे गीत में। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आपकी रेडियो साथी अदिति के साथ। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पहला गीत शामिल कर रहे हैं आप सभी की फरमाइश पर। आप सभी ने हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं। मीन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर, माँ महामाया चौक मेघापारा चिल्फी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यम वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह। आप सभी की फरमाइश है कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गीत जावेद अख्तर का लिखा हुआ, आर डी बर्मन ने संगीत तैयार किया है। ये गीत है फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: आया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
2: तो मिलेगी ना।
1: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
3: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
4: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
5: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
3: बात बन जाए।
5: 287 मेरी चाय।
6: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
7: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
6: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

श्रोताओं, ये फरमाइशी फिल्म है, ये तभी आपने सुना, फिल्म बरसात से लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को शैलेंद्र ने लिखा था और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का था। अब आपसे साझा कर रहे हैं फरमाइशकर्ताओं के नाम जिन्होंने इस गीत के लिए फरमाइश की थी और व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे। राजस्थान भोपालगढ़ से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। गांव लोहगढ़ ठकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, पोत्रे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और आराध्या कुमारी। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब अगली फरमाइश आपको सुनवा रहे हैं। फरमाइशकर्ताओं के नाम पहले साझा कर रहे हैं मुंगी पैठण महाराष्ट्र से बाबा साहेब कंगणकर, साखरबाई कंगणकर, परमेश्वर रोहिणी और कंगणकर परिवार ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजा है। साथ ही आप सभी ने भी व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं। जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभ प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। और पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। आप सभी की फरमाइश पर सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज़ में गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा है, संगीत निर्देशन मदन मोहन का है। फिल्म का नाम है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे।

श्रोता, ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। और कार्यक्रम में समय को ध्यान में रखते हुए एक और फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। आप सभी श्रोताओं ने हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक। मुंडा टोला डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंच

नेताम और कामेश नेताम और माहिर नेताम। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं जीने की राह फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत

और श्रोताओं, इसी फरमाइशी फिल्मी गीत के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत को अब हम कर रहे हैं संपन्न। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम में पहला गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में। गीतकार हैं अमीर मीनाई, संगीतकार जगजीत सिंह।

0: गीत और संगीत पर आधारित कार्यक्रम संगीत सरिता ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। FM बैंड 102.6 MHz पर सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
1: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारी, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम

0: और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग घाट फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
4: हम बहुत खुश है, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
1: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपने साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए कृष्ण भजन रज्जू राजा चौहान की आवाज़ में।

0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
1: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
1: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
4: तो मिलेगी ना।
3: पर कैसे?
4: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
5: तेंदू चरवा और बेर मकुइया जोने हाथन खा रहे हो, अरे वही हाथन ले कुलरिया मोए काट बे आ रहे हो।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं ये पर्यावरण लोकगीत। लोकगीत कलाकार हैं राम लखन सेन।

महुआ गुली को लेंदा हंस हंस बीन बीन के भर डारे के महुआ गुली को लेंदा हंस हंस बीन बीन के भर डारे और टोर मैन हर और भेड़ा रे सब्जी बन गई उजियारे। हाँ सब्जी बन गई उजियारे। रजमा कोर गुरसकरू खा खा रेंगत जा रे गेलारे कांदा और बिराए ल्यान दे खा रे सबरे घरवारे। हाँ खा रे सबरे घरवारे। हाँ खा रे सबरे घरवारे। अगर सिपाही तन को हट के अगर सिपाही तन को हट के सो उल्टी जाम बता रहे हो ओई हाथन ले कुलरिया मोय काट बे आ रहे हो। हाँ ओई हाथन ले कुलरिया

तो बड़ों का छूना देखो, बिरछा सबई मिटा रहे हो तुम, बिरछा सबई मिटा रहे हो, बिरछा सबई मिटा रहे हो। के खोद खोद के खूब दबाई अपनो काम चला रहे हो, छोटो बड़ों का छूना देखो, बिरछा सबई मिटा रहे हो, हाँ बिरछा सबई मिटा रहे हो। मन मन की तुम काट लकड़िया खुद घर द्वार बना रहे हो, और जंगल आए तुम्हारे लाने काए नहीं बचा रहे हो, हाँ काए नहीं बचा रहे हो।

रामुल्ला खानों ने खूब कही के काहे ना ध्यान लगा रहे हो। वही हाथन लय कुलरिया मोय काटो बे आ रहे हो। वही हाथन लय

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। विषय है आंखों को स्वस्थ रखने के उपाय। गेस्ट डॉक्टर अभिषेक जैन, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ। भेंट करता है जय शेखर।

नमस्कार श्रोताओ, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर के साथ। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर। और दोस्तों, हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं

0: डॉक्टर अभिषेक जैन जो वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: आंखें हैं तो सब कुछ है। इतनी खूबसूरत दुनिया जो प्रकृति ने हमें दी है उसको देख पाना तभी संभव होता है जब हमारे पास आंखें हों और आंखों में रोशनी हो। लेकिन प्रकृति ने हमें आंखें दी हैं, उनकी सुरक्षा करना, उन्हें अच्छे से जीवन पर्यंत तक ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें ये बताएं कि आंखों की देखभाल हर एक सामान्य आदमी को कैसे करनी चाहिए और अगर वो सुबह उठता है सोकर तो वहां से कितनी सावधानियां उसे बरतनी चाहिए।
1: देखिए, सुबह उठने के साथ ही हमें सबसे पहले ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। और आंखें हैं तो सब कुछ है
0: जी।
1: आजकल सबसे बड़ी समस्या है वो है डिजिटल डिवाइसेस।
0: अच्छा,
1: तो हमें बस मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा।
0: बिल्कुल
1: कि आपको एक्चुअली क्या करना है। जो हमारा टीवी है, मोबाइल है, स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो गया है। मेन जो आजकल समस्या है वो है इंक्रीज स्क्रीन टाइम। हम बहुत ज्यादा टाइम अपने डिजिटल डिवाइसेस को देते हैं।
0: हाँ, तो हमें बताइए कि हमें टाइम कैसे इसका कम करना है। सबसे पहले सुबह उठे आंखें धोते हैं ठंडे पानी से धोना, उसके बाद क्या है?
1: देखिए, इसके बाद एक्चुअली क्या है, हमने बुक्स को एक तरफ रख दिया है
0: जी, बिल्कुल,
1: और टैबलेट्स और मोबाइल को ही बुक्स मान लिया।
0: हाँ,
1: वो नहीं करना है। हमारा स्क्रीन टाइम, पहला तो हम स्क्रीन टाइम हमारा 2 घंटे से ज्यादा होना नहीं चाहिए पूरे दिन भर में।
0: अच्छा, चाहे वो टीवी पर हो,
1: चाहे वो आपका टीवी का हो, मोबाइल का हो, टैबलेट का हो, टैब का हो या लैपटॉप का हो, आपको मिला के टोटल स्क्रीन टाइम 2-2.5 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: ये बहुत सारी प्रॉब्लम करता है एक्चुअली कंटिन्यूअस स्क्रीन टाइम से। पहला तो हमारा आंखों में पलकें हम कम झपकाते हैं।
0: हाँ,
1: जब हम कंटिन्यूअसली सिस्टम पर देखते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो आंखों में जब पलकें कम झपकाते हैं तो हमारे आंसू फैल नहीं पाते
0: और
1: तो हमारे आंखों में ड्राइनेस आती
0: है जी।
1: सबसे पहला काम तो होता है हमारे आंखों में आई स्ट्रेन।
0: हाँ,
1: फिर हम लैपटॉप पर बैठते हैं।
0: हाँ,
1: तो हमारा पोस्चर अच्छा सही नहीं होता। कई लोगों को नहीं पता होता है कि प्रॉपर पोस्चर क्या होना चाहिए
0: जी।
1: कि स्क्रीन हमारे अपर आई पोर्शन के इक्वल लेवल पर होना चाहिए, उससे 2-3 सेंटीमीटर कम होना चाहिए। हमारा हमारे हाथों में मतलब अपना ये हैंड रेस्ट होना चाहिए। कंटिन्यूअसली आप झुके झुके अगर आंखों लैपटॉप पर देखते हैं, काम करते हैं
0: जी,
1: तो आपके नेक में स्ट्रेन हो जाता है।
0: अच्छा,
1: तो एक्चुअल पोस्चर ही नहीं पता होता है लोगों को कि
0: हाँ,
1: कितना डिस्टेंस होना चाहिए।
0: हाँ,
1: डिस्टेंस भी हमारा जो है 50-75 सेंटीमीटर होना चाहिए स्क्रीन से। टैब पे काम करते
0: हाँ,
1: हैं
0: हाँ,
1: या आप
0: लैपटॉप
1: पे काम करते हैं तो उसमें आपका जो डिस्टेंस होता
0: हाँ,
1: है वो हमारा 50-75 सेंटीमीटर होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: और साथ में चेयर ऐसी होनी चाहिए जो बैक सपोर्ट वाली हो।
0: हाँ,
1: और आपका हैंड रेस्ट जिसमें हो।
0: हाँ,
1: और आपको रूल ऑफ 20-20 आपको ध्यान रखना है।
0: वो कैसा हो?
1: एक्चुअली क्या है कि रूल ये है
0: जी,
1: कि हर 20 सेकेंड में आपको पलक ब्लिंक करना है।
0: अच्छा,
1: 2 घंटे में एक आपको रेस्ट रहना है, हर 2 घंटे में 20 सेकंड के लिए आंखों में रेस्ट देना।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं डॉक्टर साहब आप।
1: और थर्ड चीज है कि आप हर 20 मिनट्स में
0: हाँ,
1: आप जितना सीधा देख सकते हैं 20 सेकंड के लिए सीधा देखिए और फिर आप सिस्टम पर आप अपने आंख जमा लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
0: बिल्कुल,
1: ये आपकी आंखों को रेस्ट देगा, प्लस आपका जो ब्लिंक रेट है वो प्रॉपर रहेगा, और प्लस आपको जो सिस्टम पर लॉन्ग टर्म बैठने में जो ड्राइनेस होता है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। और 2 घंटे में 1-5 मिनट का ब्रेक लेना
0: जी।
1: तो ये जो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को अवॉइड करने में 3 चीजें याद रखनी।
0: हाँ,
1: कि आपको पहला तो बीच बीच में पलक ब्लिंक करनी है,
0: बिल्कुल
1: हर 20 मिनट्स में 20 सेकंड के लिए सीधा देखना, फिर आप सिस्टम पे आ जाइए।
0: हाँ,
1: 2 घंटे में 1-5 मिनट का ब्रेक।
0: बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब। सोते समय
1: हाँ जी,
0: हम कैसे रखें आंखों की पोजीशन?
1: देखिए, सोते समय तो कई लोग क्या है, कई लोगों को बिल्कुल भी लाइट नहीं होती बस।
0: हाँ,
1: तो कई लोग ब्लैक
0: वही पट्टी, हमारे पट्टी, जाने का कारण वही
1: ब्लैक पट्टी लगा लेते हैं
0: जी।
1: और कुछ लोगों को माइग्रेन भी होता है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमको हेडेक होने लगता है।
0: हाँ,
1: हमको रोशनी नहीं चाहिए
0: तो
1: ब्लैक पट्टी लगा लेते हैं, दैट इज ओके, लगा सकते हैं। देखिए, सोते समय पोस्चर आपका, आपको प्रॉपर पिलो यूज करनी है
0: जी।
1: कुछ लोग सर्वाइकल पिलोज यूज
0: हाँ,
1: करते हैं।
0: हाँ,
1: आंखों का एक्चुअली हम करवट लेके आंखों को दबा के सोते हैं।
0: अच्छा,
1: हमको आंखों को दबा के नहीं सोना।
0: हाँ,
1: कोशिश ये करनी है आपका पिलो इतना हो।
0: हाँ,
1: करवट तो आप ले पर आंख आपकी प्रेस ना हो,
0: बिल्कुल सही,
1: सीधे लेटे या करवट लें
0: जी,
1: उसमें
0: जी,
1: कोई प्रॉब्लम नहीं
0: जी,
1: है ना। तो ये है, और बाकी तो आपकी, आप अगर डिजिटल डिवाइसेस

0: का यूज कम करेंगे तो आपकी स्लीप साइकिल भी अच्छा रहेगा।
1: बहुत ही सही बात बताइए।
0: स्लीप साइकिल भी हमारा डिस्टर्ब होता है व्हेन आप चार घंटे से ज्यादा आप डिजिटल रात में ज्यादा देर तक आप डिजिटल डिवाइसेस का यूज करते हैं आपकी नींद नहीं आएगी प्रॉपर। स्लीप साइकिल हमारा डिस्टर्ब होता है। स्लीप साइकिल इज रिलेटेड विद द ब्रेन। हमारे ब्रेन के फंक्शन भी अफेक्ट होते हैं डिजिटल डिवाइसेस।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग कहते हैं कि सोते वक्त अगर कमरे में लाल लाइट जलाई जाए तो उससे कुछ प्रभाव पड़ता है क्या आंखों पर?
0: नहीं, कुछ लोग नाइट बल्ब में रेड यूज करते हैं बट मुझे नहीं लगता मतलब कुछ खास इफेक्ट इससे पड़ता।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की अपनी
0: मानसिकता है। मानसिकता है,
1: क्या बात है, बहुत।
0: हाँ ये जरूर है कि जो एक्चुअली ना इफेक्ट पड़ता है ब्लू लाइट का।
1: अच्छा,
0: तो टीवी से आपके सिस्टम से आपके कंप्यूटर से जो ब्लू लाइट निकलती है वो आंख के पर्दे में जो मैकुला जिस पर आपका फोटो बनता है इमेज का उस पर बुरा इफेक्ट करती है।
1: अच्छा।
0: तो आपको इसीलिए ब्लू, हम कहते हैं ना कि हमें लेंस लगाना ब्लू लाइट, आजकल ब्लू लाइट एंटी रिफ्लेक्टिव कोटेड ग्लास है, ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस आने।
1: अच्छा अच्छा,
0: ताकि वो ब्लू लाइट को कट
1: कम कर दे।
0: हाँ वो कम से कम हमारे आंख के अंदर उसका इफेक्ट जो पड़ता है।
1: अच्छा अच्छा, हम अपनी आंखों की देखभाल कैसे करें और आंखों में होने वाले सामान्य रोग क्या हैं? अब कितनी छोटी सी बात लगती है आपको कि सोते वक्त हमने टीवी या मोबाइल चला लिया और वही सो गए, नहीं, इससे आपकी जो सोने की पूरी प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही आसानी से हमें बताया कि 2020 का जो सिस्टम है अगर उसे हम फॉलो करते हैं तो आंखों की समस्या भी दूर हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मी के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां आंखों को परेशान करती है?
0: समस्या के मौसम में पहला तो मैंने आपको बताया ड्राई आई, क्योंकि क्या होता है कि वार्म एयर या वार्म ह्यूमिड एयर जो कि मानसून में आपको मिलेगी, अभी वार्म एयर है तो वार्म एयर से भी ड्राइनेस बढ़ती है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो पहला तो है कि भाई ड्राइनेस है, आप डिजिटल डिवाइसेस का ज्यादा यूज करते तब भी ड्राइनेस बढ़ेगी, सीजनल में गर्मी में भी ड्राइनेस बढ़ेगी। तो हमें आंखों में चुभन होना, आंखों में जलन होना और आंखों में रूखापन होना, ये इसके सिम्टम है। इसके लिए हम लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स देते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: और हम ये कहते हैं कि भाई आप पौष्टिक आहार लीजिए, विटामिन ए और सी युक्त, जैसे कि आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पीले फल हैं, गाजर है, टमाटर है, आंवला है और खट्टे फल हैं जैसे कि विटामिन सी युक्त, जैसे कि आपका नींबू है, मौसमी है, संतरा है, आप सेवन करिए, पानी प्रचुर मात्रा में पीजिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा जो कॉमन प्रॉब्लम आती है दैट इज एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, हमें एलर्जी होती है गर्मी में, एलर्जी बहुत कॉमन है।
1: अच्छा,
0: ये गर्मी से रिलेटेड है। इसका एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो बच्चों में यूजुअली हम देखते हैं, बच्चों में ये 18 साल तक बीमारी परेशान करती है, जिसको हम बर्नल क्रेटो कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, बीकेसी। इसमें क्या है, बहुत परेशान रहते हैं बच्चे, क्योंकि उनको आपका खुजली बहुत ज्यादा होगी, आंखों में लालपन होगा, आंखों में चिपचिपा सफेद कीचड़ आएगा
1: जी।
0: तो ये इसमें हम फिर उसके लिए एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स, प्लस हम उससे कहते हैं कि भाई इनके प्रिकॉशंस आपको लेना, आपको मतलब बचाव करना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको कैप लगा के धूप में निकलना है, बच्चे को निकालना है, आपको सन ग्लासेस देने हैं बच्चे को। बच्चा जैसे ही धूप से घर में आता है आपको मटके के ठंडे पानी से आंख धोनी है, वॉश करना है, हैंड वॉश करने के बाद उसके बाद अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आपको कोल्ड कंप्रेशन करना है, बर्फ से इसकी सिकाई करनी है
1: जी।
0: इसके बाद आपको आई ड्रॉप्स डालनी है नेत्र रोग विशेषज्ञ के परामर्श के साथ
1: जी।
0: हाँ, तीसरी जो प्रॉब्लम है जो कि उतनी कॉमन नहीं है, मानसून में ज्यादा कॉमन है, वो है आपका वायरल कंजंक्टिवाइटिस या बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, जो कि इन्फेक्शियस होता है।
1: अच्छा,
0: जिसमें जो कीचड़ है वो पीला आएगा, आंखों में दर्द रहेगा, जिसको हम पिंक आई भी कहते हैं, गुलाबी आंखें कहते हैं, हम कहते हैं आंख आ गई
1: बिल्कुल।
0: तो उसको आंखों का संक्रमण है, जो वो भी होता है।
1: अच्छा, ये संक्रमणकारी होता है
0: एक्चुअली। इसमें क्या है, हमें हमारा क्या होता है, जैसे कि डिसीज पर्सन है उसका आपको ना तो रूमाल, ना तौलिया, ना आप चादर वगैरह यूज नहीं करनी।
1: अच्छा, और आई कॉन्टेक्ट करने से,
0: आई कॉन्टेक्ट करने से, ये मिथ है।
1: अच्छा अच्छा,
0: ये एक्चुअली मिथ है
1: जी।
0: एक्चुअली मिथ है
1: जी।
0: हाथ मिलाने से हो सकता है, क्योंकि आप उसने वही हाथ कीचड़ वाली आंख को रगड़ने के लिए उसने अपने हैंड का यूज किया, उसमें जर्म्स आ गए, बैक्टीरिया आ गए, तो उसको आपने फिर उन्हीं हाथों को बिना धोए आपने अपने हाथों में आपने मल लिया। तो उससे हाथ मिलाने से हो सकता है, उसके आपका रुमाल यूज करने से या लिनेंस यूज करने से या टॉवल यूज करने से हो सकता है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस है, या तो बैक्टीरियल होगा या वायरल होगा
1: जी।
0: इसके सिम्टम में क्या रहेगा कि भाई पीला, इसमें कीचड़ पीला हो जाएगा, आंखों में सूजन रहेगी, दर्द रहेगा, चुभन रहेगी और बार बार पानी आएगी और आंख बहुत ज्यादा लाल रहेगी। पहले एक आंख में होगा, फिर धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली वो दूसरी आंख में भी हो जाता है, क्योंकि हम एक

0: का हाथ दूसरी आंख में भी लगा लेते,
1: हाँ,
0: तो वो फिर दूसरी में भी आ जाता
1: जी।
0: ये कम कॉमन है, पर दो जो ड्राई आई है और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस से, ये गर्मियों में बहुत कॉमन।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे बहुत ज्यादा श्रोता गाँव में निवास करते हैं, अब

0: तो वो जो पतली झिल्ली का इन्फेक्शन है वो सामने जो पारदर्शी पोर्शन जिसको हम कॉर्निया कहते हैं उसको केराटाइटिस हो जाता है, कॉर्नियल अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है और आंख की रोशनी हमेशा के लिए जाने का खतरा रहता है।
1: इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है
0: अगर आपने इन्फेक्शियस हाईली इन्फेक्शियस जो पीरियड है जिसमें सबसे ज्यादा कीचड़ आ रहा है, सूजन है, उसमें आपने स्टीरॉइड दे दिया तो हमें उसको ऐसा नहीं करना है। उसको क्या करना है एक्चुअली, करना तो उसको ये चाहिए कायदे से कि भाई आप, कई लोग क्या करते हैं पानी में बोरिक पाउडर डाल के आंख धो लेते हैं, वो वहां तक ठीक है, कीचड़ साफ करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना, कुनकुने पानी से आप कीचड़ साफ कर सकते हैं, बर्फ की ठंडी सिकाई भी कर सकते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप कोई पेन कलर भी ले सकते हैं, आप क्लोरम फेनिकॉल के जो कैप्सूल्स आते हैं छोटे छोटे कई बार गाँव में मिलते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप वो डाल सकते हैं।
1: अच्छा, वो भी
0: वो डाल सकते हैं, वो नुकसानदायक नहीं है, वो सेफ है, आप उनको डाल सकते हैं, बट आपको आई ड्रॉप नहीं लेनी है मेडिकल स्टोर वाले से लेके, क्योंकि वो ज्यादातर आपको स्टेरॉइड दे देगा। पाइरिमोन जो कॉमन है 10-12 रुपए का आता है, वो कॉमन यूज करते हैं और हमने देखा है कि 10 पेशेंट मरीज में एक मरीज की आंख खराब हो जाती है उसमें,
1: बहुत ही भयावह स्थिति है,
0: बहुत भयावह स्थिति। तो आपको तुरंत फिर नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना है। एक उपाय घरेलू लोग ये भी करते कि भाई हल्दी के पानी में आपने रुमाल धोके सुखा लिया और फिर वो हल्दी वाला हो गया, तो हल्दी से एंटीसेप्टिक का काम करता है, उससे आप आंख साफ करते हैं, वहां तक भी ओके
1: जी,
0: बट पाइरिमोन नहीं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं ये बातचीत, और इस बातचीत का अगर हम कहें सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपकी आंखें आई हैं और आंखें आने पर आप मेडिकल स्टोर जाते हैं और एक जो सामान्य आई ड्रॉप लिया आपने और आंखों में डाल लिया, तो उससे आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। डॉक्टर साहब, अब बरसात आ रही है तो मानसून अपने साथ बहुत सारी समस्याएं लेकर आता है आंखों के लिए, तो कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए?
0: देखिए, समस्याएं तो सबसे ज्यादा तो यही है आपका कि आपका कंजंक्टिवाइटिस सब बारिश में होगा, बारिश में इन्फेक्शन होगा, संक्रमण होगा, संक्रमण को आपको अवॉइड करना है। तो पहली बात तो बारिश में बिल्कुल ख्याल रखना है, क्योंकि बारिश में जो नमी होती है वो बैक्टीरिया वायरस को पनपने का मौका देती है। नमी एनवायरमेंट होता है, तो आप अगर भींग गए हैं, मान लो पानी से भींग गए हैं बारिश में, तो गर्म पानी से आके नहाइए, कुनकुने पानी से, आंख को बिल्कुल साफ कपड़े से साफ रखिए, आंख को आपको गीला नहीं रहने देना, सूखा रखना है, गंदा जो पानी इकट्ठा है उससे कभी भी आंखें नहीं धोनी है। अगर आप बारिश में बहुत मन करता है भैया आप आंखों को मलिए, है ना,
1: क्योंकि
0: मलने का, पर मलना है तो भाई आपको हाथ से साबुन से हाथ धोना है,
1: अच्छा,
0: डिटॉल हैंड सोप से, किसी सोप से, इसके बाद ही आंख पे हाथ लगाना है। दूसरी चीज है, गंदे पानी का कहीं भी किसी भी हाल में उपयोग नहीं करना। कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग करते हैं तो कॉन्टेक्ट लेंस को नॉर्मल पानी से साफ नहीं करना, उसका सॉल्यूशन है, उसके सॉल्यूशन में आप डिप करें प्रॉपर, उसको प्रॉपरली यूज करें,
1: अच्छा अच्छा,
0: है ना। तीसरी जो चीज है कि भाई आपको ये याद रखना है कि संक्रमित व्यक्ति कंजंक्टिवाइटिस वाला व्यक्ति है, उससे आपको हैंड मिलाना तो भी आप अगर मिला लिया है तो हाथ धोना है, और उसके कपड़ों का बिल्कुल यूज नहीं करना, रुमाल या आपके परिवार में भी किसी को हुआ है तो उनके कपड़ों का यूज नहीं करना है, हैंकीज का, रुमाल का, चादर का किसी का उपयोग नहीं करना है, सनग्लासेस लगाना है
1: जी,
0: है ना, और क्योंकि क्या होता है या हमारे फ्लावर से जो पोलन ग्रेन्स आते हैं वो उड़ के आते हैं आंखों में, आते हैं, एलर्जी पैदा करते हैं,
1: जी जी जी,
0: तो आपको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए सनग्लासेस का भी उपयोग करना,
1: अच्छा अच्छा,
0: तो आपका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
1: बिल्कुल 100%
0: आपको प्रिवेंट करना है
1: जी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। चलते चलते कोई और ऐसी बात जो आपके मन में आती है और श्रोताओं को आप संदेश देना चाहते हो अपनी आंखों के लिए, तो जरूर बताएं।
0: देखिए भाई, आंखें हैं अनमोल रत्न
1: जी,
0: और साल में एक बार नहीं, आपको रोज करना है इनका जतन।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, आंखें हैं अनमोल रतन, साल में एक बार नहीं, इनका रोज करना है जतन, बहुत ही अच्छा। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए और हमें आंखों से संबंधित सामान्य बातें जिनको हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वही अनदेखा करना कहीं ना कहीं हमारी आंखों की रोशनी के लिए भी घातक हो जाता है। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:47 हुए हैं। श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं गैर फिल्मी गीत और संगीत पर आधारित कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवा रहे हैं महक एल्बम से पंकज उदास की आवाज में गीत। जमील मुजाहिद ने इस गीत को लिखा है, संगीत निर्देशन अली घनी का है।

श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना महक एल्बम से। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं एल्बम परछाई से गुलाम अली की आवाज में गीत। मोहसिन नकवी ने इस गैर फिल्मी गीत को लिखा है और संगीत निर्देशन गुलाम अली का है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत गैर फिल्मी गीत और संगीत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 9 बजने को है, बस कुछ पलों का इंतजार और आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत।

0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में गुलाम फिल्म का गीत। समीर ने इस गीत को लिखा है, जतिन ललित ने संगीत से सजाया है।

श्रोताओं, आज है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, जो कि 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। किसी भी दिवस को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य बहुत ही क्लियर होता है दोस्तों, जागरूकता फैलाना, ताकि हम सभी नागरिक जागरूक बन सकें और अपना सहयोग इन कार्यों को दे सकें। हम सभी जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, वायु, मिट्टी, हर एक का अपना महत्व है जो पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करता है। इनको बचाना, इनकी रक्षा करना, इनका उचित उपयोग करना हमारा, हम सबका परम कर्तव्य बनता है और यही वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे को मनाया जाने का उद्देश्य है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें नेचर की रक्षा करनी ही होगी और उन्हें भी आगे यही सत्कर्म करने का वचन देना होगा। प्रकृति से जुड़िए, क्योंकि सुकून की सबसे खूबसूरत भाषा प्रकृति ही बोलती है। हर सुबह धरती को, सूर्य को, आसमान को, हवाओं को, पानी को, सबको धन्यवाद दीजिए। हर शाम इनसे दोस्ती कीजिए। पेड़ों, नदियों और हवाओं से प्रेम कीजिए, क्योंकि यही जीवन की असली दौलत है। आइए प्रकृति का सम्मान करें, उसे सवारें, ताकि आने वाली हर सुबह और भी हरी भरी, खुशहाल और मुस्कुराती रहे। इसी उद्देश्य के साथ हम मनाएंगे वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म खेल खेल में से, दिलजीत दोसांझ की आवाज है, जानी का लिखा गीत, बी प्राक और तनिष्क बागची का संगीत।

बस इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। हमेशा मुस्कुराते रहिए और प्रकृति से प्यार करते रहिए और आज्ञा दीजिए पूजा नारानिया को। नमस्कार।

0: ये पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

1946 के शुरुआती दिन रहे होंगे। उर्दू के जाने माने साहित्यकार सादात हसन मंटो ने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में कार्यरत अपने एक मित्र को बुलावा भेजा बतौर लेखक हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। मंटो मित्र मुंबई पहुंचे, संवाद लेखन आरंभ हुआ। इतना ही नहीं, अशोक कुमार की फिल्म 8 डेज में अभिनय भी किया, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि एक्टिंग या डायलॉग राइटिंग उनके बस की बात नहीं है। उन्हें तो बचपन से शायरी का शौक रहा है। उसी वर्ष फिल्मिस्तान स्टूडियो के निर्देशक एस मुखर्जी ने उन्हें गीत लेखन का अवसर दिया। फिल्म थी दो भाई, संगीतकार थे एस डी बर्मन। दो भाई के ये गीत अत्यधिक पसंद किए गए और ये गीत उस शायर को स्थापित कर गए जिसका नाम था राजा मेहदी अली खान।

1928 में अखंड भारत के कर्माबाद में जन्मे राजा मेहदी के सर से 4 वर्ष की कच्ची उम्र में पिता का साया उठ चुका था। उस परिवार के करीबी मित्र मशहूर शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल के अनुसार राजा मेहदी की वालिदा हिबे साहिबा एक जहीन महिला थीं और उस जमाने की एक मानी हुई शायरा भी। मतलब शायरी की घुट्टी तो राजा मेहदी को बचपन से ही मिल रही थी। डॉक्टर अल्लामा इकबाल के साथ उनका शायरी का शौक बढ़ता ही गया। 1946 का वाकया तो हमने आपको बताया। 1947 में आजादी के बाद उभरी विभाजन की कठिन परिस्थितियों में राजा मेहदी अली खान ने अपनी पत्नी ताहिरा के साथ भारत में ही रहने का निर्णय लिया। और यही नहीं, 1948 में शहीद फिल्म के लिए गाने लिखकर उन्होंने अपनी देशभक्ति का परिचय भी दिया। शहीद के अलावा उस वर्ष उन्होंने एक्ट्रेस, विद्या और जिद्दी फिल्म के लिए भी गीत लिखे। लेकिन एक सफल गीतकार के रूप में पहचान बनाने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ा 1950 का, जब उन्हें मिली फिल्म आंखें। संगीतकार थे मदन मोहन। मदन मोहन साहब के साथ राजा मेहदी अली खान ने जोड़ी बनाई और फिर सिलसिला शुरू हुआ कामयाब और मशहूर गीतों का। अदा, मदहोश, जागीर, अनपढ़, आपकी परछाइयां।

जब याद किसी की आती है और नवाब सिराजुद्दौला, ये तो केवल कुछ नाम हैं उन फिल्मों के जिनके गाने सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए और इन गीतों ने इस जोड़ी को अमर बना दिया और बनाया राजा मेहदी अली खां को सफलतम गीतकार।

राजा मेहदी अली खान संभवतः पहले ऐसे गीतकार थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में प्रियतम के लिए आप शब्द का उपयोग किया। आपकी नजरों ने समझा फिल्म अनपढ़, आप क्यों रोए फिल्म वह कौन थी, आपने अपना बनाया फिल्म दुल्हन एक रात की, ये कुछ उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है कि राजा मेहदी अली खान केवल संजीदा किस्म के ही गाने लिखते थे, उनकी शायरी का व्यंग्य पक्ष भी अत्यधिक मजबूत था और उनके द्वारा रचे गए कुछ हास्य गीत भी सुनने वालों को भा गए। इन मजाहिया गानों में सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो गीत जो उन्होंने मेरा साया के लिए लिखा।

राजा मेहदी अली खान वास्तव में अपनी शायरी की दुनिया के राजा थे, क्योंकि बनी बनाई धुन पर उन्होंने कभी भी शब्द नहीं पिरोए। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मदन मोहन के अलावा दूसरे संगीतकारों के साथ कभी काम नहीं किया। अन्य संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है, खेमचंद प्रकाश, बुलोसी रानी, एस एन त्रिपाठी, श्याम सुंदर, गुलाम हैदर, एस डी बर्मन, रवि, रोशन, सी रामचंद्र, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और ओ पी

0: ही हूं।
1: राजा मेहदी अली खां की कलम से ज्यादातर खुशबूदार फूल ही झरते रहे हैं, अर्थात उन्होंने सबसे ज्यादा रचना की प्रेम गीतों की, जिनमें से वह कौन थी फिल्म के लता जी के गाए इस गीत ने दुनिया के सभी संगीत प्रेमियों के दिल में जगह बनाई।

29 जुलाई को राजा मेहदी अली खां इस संसार से विदा हुए और जाकर बस गए अपने चाहने वालों के, फिल्म संगीत प्रेमियों के।

0: हमारे आज के फनकार थे राजा मेहदी अली खां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब जयंत पात्रीकर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी या किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको

0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, ये आकाशवाणी है। आप सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है पन्ना जिले की चिट्ठी। आलेख दिलीप कुमार शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। पन्ना जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात श्री जुगल किशोर महोत्सव की। श्री जुगल किशोर मंदिर में आयोजित इस महोत्सव में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वृंदावन से आए संत राजेंद्र दास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा और रसिकाचार्य महंत स्वामी किशोर दास जी महाराज ने भक्तमाल कथा का वाचन इस अवसर पर किया। इस महोत्सव में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और रावतपुरा सरकार भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना पहुंचकर भगवान जुगल किशोर के दर्शन किए और संतों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस महोत्सव को हर साल आयोजित किया जाएगा ताकि पन्ना को देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल किया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पन्ना दौरे के दौरान 184 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने घोषणा की कि अगले साल से पन्ना में शासकीय मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने श्री जुगल किशोर मंदिर परिसर के विकास के लिए पर्याप्त बजट देने का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और धार्मिक पर्यटन दोनों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। पन्ना जिले में गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए चलाए गए गौ सम्मान आह्वान अभियान को लोगों का बड़ा समर्थन मिला है। इस अभियान के तहत 271,000 से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दिया। इन हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। इसमें गौवंश की सुरक्षा और गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई। पन्ना शहर में अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उषा परमार ने यह आदेश यातायात व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जारी किया है। अस्पताल, स्कूल और बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। हालांकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और अन्य जरूरी सेवाओं के वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। पन्ना जिले में दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार जांच अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में मुख्य डाकघर तिराहे पर बीते दिनों बाहर से आने वाले दुग्ध विक्रेताओं के दूध के नमूने लिए गए। इन नमूनों को जाँच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। पन्ना जिला न्यायालय में पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बीते दिनों आयोजित किया गया, जिसमें साइबर सुरक्षा, ई कोर्ट सेवाओं और डिजिटल न्याय प्रणाली की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने वॉलंटियर्स से गांव-गांव जाकर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की अपील की। पन्ना जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीते दिनों सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, आयुष विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने योगासन किए। दक्षिण पन्ना वन मंडल ने 100 साल से ज्यादा पुराने 1353 पेड़ों का रिकॉर्ड तैयार किया है। इनक्रेडिबल ट्रीज ऑफ साउथ पन्ना नाम की एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है। सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने इसका विमोचन बीते दिनों किया। सभी पुराने पेड़ों की जियो टैगिंग और फोटोग्राफी भी की गई है। इसका उद्देश्य जिले की प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखना और आने वाली पीढ़ियों तक उसकी जानकारी को पहुंचाना है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पन्ना की शाहनगर ग्राम पंचायत ने कचरे से कंचन मॉडल अपनाकर नई मिसाल कायम की है। इस पंचायत में घर घर से कचरा इकट्ठा किया जा रहा है और उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा रहा है। जैविक खाद बनाकर पंचायत ने सबसे ज्यादा आय अर्जित की है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरपंच मनोज जैन को सम्मानित किया। पंचायत का ये मॉडल अब दूसरे क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। पन्ना जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्राम पंचायतों में रैली, शपथ और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। पोस्टर, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को नशे के नुकसान बताए जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध पन्ना टाइगर रिजर्व में पिछले महीने 3 बाघों की मौत के बाद वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। विशेषज्ञों की टीम मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। लगातार हुई इन घटनाओं ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व देश में बाघ संरक्षण के लिए खास पहचान रखता है। पन्ना जिले के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। जिला प्रशासन और खेल विभाग खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। अलग अलग खेलों के लिए नियमित अभ्यास कराया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जिले की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पन्ना जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
0: पन्ना जिले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था दिलीप कुमार शर्मा का और वाचन किया था अभिषेक कटियार ने। ये आकाशवाणी है।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागिनी। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए तबला वादन उस्ताद जाकिर हुसैन द्वारा चार ताल की सवारी।
1: धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धि

0: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम राग रागिनी के अंतर्गत अब आपको सुनवा रही है राग देश, वायलिन वादन है वीजी जोग का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागिनी के अंतर्गत वायलिन वादन वीजी जोग द्वारा। और इसी के साथ कार्यक्रम राग रागिनी को अब हम कर रहे हैं संपन्न। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आपकी रेडियो साथी अदिति के साथ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, पहला फरमाइशी फिल्मी गीत शामिल कर रहे हैं आप सभी की फरमाइश पर। व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी और हिना कौसर। कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। सूर्यवाड़ी छत्रपति सांभाजी नगर से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज अंशुमन और ओवी। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं बंदिश फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
1: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
1: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद के अंतर्गत अब अगली फरमाइश आप सभी श्रोताओं ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं। राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। हरियाणा झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में शकील बदायूनी का लिखा हुआ गीत। इस गीत का संगीत निर्देशन किया है नौशाद ने और ये गीत हमने लिया है फिल्म अनोखी अदा से।

0: Rafael, pô.
1: अनोखी अदा इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना मुकेश की आवाज़ में। कार्यक्रम में अब अगले गीत की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। आप सभी ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं। बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद।

सूरज जी, प्राची और एकलव्य लोंढे, आप सभी की फरमाइश पर सुनिए फिल्म पेइंग गेस्ट से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत, जिसे लिखा है मजरूह ने और संगीत है एस डी बर्मन का।

पेइंग गेस्ट इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। कार्यक्रम में अब अगली फरमाइश आप सभी के द्वारा भेजी गई है तो वो सुनवाने जा रहे हैं। पहले फरमाइशकर्ताओं के नाम आपसे साझा कर लेते हैं। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरव और SK। गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी।

डे और बेबी किट्टू। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं फिल्म चुपके चुपके से लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत। आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत है एस डी बर्मन का।

चुपके चुपके इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे और कार्यक्रम आपकी पसंद के अंतर्गत समय के अनुसार एक और फरमाइश शामिल कर रहे हैं। आप सभी श्रोताओं ने पत्र भेजे हैं। लक्ष्मीपुरा वार्ड सागर शहर से एन आर शिवात्री, केशर, हेमंत, योगेश, निशा, सुनीता, विनीता, अभय, आभा, अनिमेश और आयुष। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत तैयार किया है, शब्द रचना आनंद बख्शी की है, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

और श्रोताओं, इसी फिल्मी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद को अब हम कर रहे हैं संपन्न। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
0: और राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
0: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में आपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
2: सुंदर प्यारा गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
0: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं, जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
2: जी।
0: इस क्रम में श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग, जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
2: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
0: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
2: बिल्कुल।
0: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
2: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
0: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है, तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं।
2: जी।
0: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
2: श्रोताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
0: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं, कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मित व्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है
2: जी। श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
0: आज के युग में श्रोताओं, सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है
2: जी।
0: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मित व्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं
0: जी। श्रोताओं, मित व्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना, और अनावश्यक खर्च से बचना ही मित व्ययिता कहलाती है।
2: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना
0: जी। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
0: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT Books PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
2: एनसीईआरटी की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: और श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया

0: हाँ तो बच्चों बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता, तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता, तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
2: दीदी, ये तो एकदम बुद्धू है।
4: दीदी दीदी, ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब, मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता, बताओ बेटा, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो...
0: हाँ बोलो।
3: दीदी
0: बोलो लता, क्या बात है?
5: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती? उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
6: नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते दीदी।
7: नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते दीदी।
7: नमस्ते दीदी।
6: नमस्ते बहन जी।
8: नमस्ते शिखा।
0: अरे दीदी जी, आप
8: आइए आइए।
0: नमस्ते बहन जी।
8: नमस्ते, यहाँ बैठिए
0: जी,
8: यहाँ। आज कैसे गरीबों के घर आपने।
0: अरे बहन जी, कैसी बात कहती हैं आप, मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
8: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
0: हाँ ये तो है।
8: अरे लो, लता के बापू भी आ गए।
0: राम राम दादा।
9: हाँ,
0: कैसे हैं आप?
9: राम राम। अरे आप यहाँ? लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला। इतनी बड़ी ढींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
0: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
9: अरे बहन जी, ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
0: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
9: अच्छी? और ये छोरी, मुँह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
0: अरे लता, आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो, यहाँ यहाँ बैठो मेरे पास।
3: जी, दी, दी।
9: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी, आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
0: जी।
5: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी माँ भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
0: अच्छा बच्चों, ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है?
1: दीदी लता।
0: लता
2: जी। दीदी।
0: क्या ये लता?
1: जी दीदी।
0: अरे नहीं।
2: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
0: अच्छा,
2: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था। हम सब उसे पकड़ने दौड़े, पर बछड़ा दौड़ता गया, सारे थक गए, पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
0: अच्छा
2: जी दीदी।
0: लता, ये सच है क्या? अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भरी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वारी पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने।
2: बापू, मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो? मैं पगली नहीं हूँ।
1: देखा, इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है, ठीक?
3: नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही है बेटी से?
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
3: हाँ दादा, और खास कर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा, आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं, इसमें हमने क्या ध्यान देना है? आपने ध्यान देना है, वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
3: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं क्यों ना हूँ, कर सकता है भला?
1: नहीं जी नहीं।
3: तो दादा, अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी मैं क्या करूं? देखो इसकी किताबें, वर्दी,
3: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी।
3: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा?
1: वो
3: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है?
3: दादा, कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: हैं?
3: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुल मिल भी नहीं पाती।
1: हो।
3: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
3: पर अब तो आपको मालूम।

0: हो गया ना दादा?
1: जी
0: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
1: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े हूँ, बाप हूँ बाप।
0: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।
2: उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी ना रखें।

0: क्या मतलब है लता, तुम तो हर बार मुझे ही सबसे पहले चोर बना देते हो।
1: मैं क्या करूं, तू डरते इतना धीरे है। अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
2: हाँ हाँ,
1: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
2: अच्छा,
1: उसके सचमुच के बाल है।
2: ओहो,
1: और एक कंघी भी है।
2: अरे सच, फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
1: ठीक है।
3: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूँ।
1: ठीक है आ जाना।
3: अच्छा
1: मैं भी आ जाऊँ लता।
2: हाँ हाँ,
0: मैं भी आ जाऊँ लता।
1: हाँ हाँ, तुम भी आ जाना।
4: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:30 होने को है, बस कुछ ही समय के बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण।

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग, और इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल गम बड़े आते हैं। इस एल्बम से संगीत दिया था जगजीत सिंह ने, और अब सुनते हैं रंग तरंग की अगली पेशकश।

अनूप जलोटा की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे, मूड्स ऑफ अनूप जलोटा एल्बम का नाम था, संगीत अनूप जलोटा ने दिया। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: विविध भारती से, इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: तन्हा दिल, ये था एल्बम का नाम। शान की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। राम संपत ने संगीत दिया था।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

भूपिंदर और मिताली की आवाजों में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। भूपिंदर सिंह ने संगीत दिया था, सईद राही ने इसे लिखा। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सर्वेश कुशारे, वल्लूरी अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक जीतने तथा शिल्पा शायला और बिंदा रानी देवी को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 जीतने पर अनाहत सिंह की भी सराहना की। अध्यक्ष ने देश का नाम रोशन करने वाले सभी एथलीटों के साथ साथ कोच और उनके परिवार के सदस्यों को भी बधाई दी। बाद में श्री बिरला के प्रश्नकाल शुरू करने के प्रयास पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया ताकि सार्थक संवाद हो।
2: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
1: राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। दिन में 11 बजे सदन के शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने विधेयक सदन के पटल पर रखे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन के शून्यकाल शुरू करने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हैं। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संसद सत्र के दौरान ये बैठकें पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि हब एंड स्पोक मॉडल से वर्ष 2030 तक लगभग 4 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। श्री नायडू ने कहा कि सेवा के शुरू होने से अमृतसर से यात्री अब दिल्ली के रास्ते दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक और पेरिस सहित लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेंगे। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने हब एंड स्पोक उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि मॉडल भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नव विकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। आंध्र प्रदेश के चेल्लूरू में कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 8 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। चेल्लूरू के पास रुके हुए वाहन पर विशाखापट्टनम से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 63 अंक बढ़कर 76,899 जबकि निफ्टी 24 अंक बढ़कर 24,020 पर कारोबार कर रहा था। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

जो जीता वही सिकंदर, इस फिल्म से अभी ये गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत।

खिलाड़ी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत अलका याग्निक की आवाजों में। अनवर सागर ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: कयामत से कयामत तक, ये था फिल्म का नाम। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद मिलन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत, फिल्म दिल से।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
2: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल, जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
4: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

जब प्यार किसी से होता है, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जतिन ललित ने संगीत दिया था, आनंद बख्शी के लिखे बोल।

0: टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कुमार सानू की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे 1942 अ लव स्टोरी से, जावेद अख्तर ने इसे लिखा, आरडी बर्मन का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा, आज आपके संग। मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गीत हम सुरीला सफर में आज शामिल करते हैं। तो जल्दी से वो शब्द चुनकर आप अपने पसंदीदा गीत या जो आपको लगता है कि आज इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले गीत हैं कमेंट में लिख सकते हैं। देखते हैं आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट से कितनी मिलती है। और अगर आपकी लिस्ट हमसे मेल नहीं खाती तब भी आप अपने पसंदीदा गीत उन शब्दों से चुनकर लिख सकते हैं, हो सकता है हम उन्हें आज के इस प्रोग्राम में शामिल कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की जल्दी से, लेकिन हमारे उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने इबारत नहीं पढ़ी है अब तक या फिर जिन्होंने बहुत लेट ट्यून इन किया है, उनके लिए ये इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, पूछो ना उस दिल से जिसने बस एक ही वादा निभाया है, मेरी हंसिनी की मुस्कान को हर दुआ में सजाया है, ये मन आज भी उसी पहले प्यार की मुलाकात में ठहरा है और कोरा कागज अब तक उसी अधूरी दास्तां का चेहरा है, कहीं ना जा यूं मेरी यादों की गलियों से गुजर कर, कुछ पल तो ठहर इन धड़कनों की सदा सुनकर, बस एक बात कहनी है वादा करो, चाहे बदल जाए मौसम बदल जाए रास्ते हजार, जहां भी रहो मुझे तुम याद करना। तो बताइए कौन कौन से शब्द हो सकते हैं और कौन से गीत हम आज शामिल करेंगे। बिना देरी किए आज इस प्रोग्राम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं।

हमराज फिल्म से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया महेंद्र कपूर की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत, और बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ आज इस सफ़र की शुरुआत हुई है। आप बस यूं ही हमारा साथ देते रहें और हम आपको खूबसूरत नगमे सुनवाते रहेंगे। और एक और गीत जो इसके बाद मैं आपको सुनवाने वाली हूं, वो बहुत ही जल्दी पहचान लिया गया वो शब्द, क्योंकि बहुत आसान था, और इसीलिए वो शब्द से जो गीत है आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके प्यार भरे संदेश आपको सुनवाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रेमी प्रेमिका के प्यार की दास्तान और विरह को दर्शाया है। गुजरे वक्त के सुनहरे पल को याद करते हुए यही दुआ करते हैं कि कितने ही बदलाव आए, मुझे तुम हमेशा याद रखना। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर संदेश। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कविता के माध्यम से खूबसूरत और भावनात्मक सच्चे प्रेम, निश्चल समर्पण और विरह की तड़प को दर्शाया गया है और अपने पहले प्यार के प्रति उस अटूट निष्ठा को अभिव्यक्त किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल उसे ही अभिव्यक्त किया गया है यहाँ पर। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पहला प्यार शायद कभी जाता नहीं है, बस अपने नाम की नेम प्लेट उतार कर दिल के किसी पुराने कमरे में चुपचाप रहने लगता है। पहला प्यार मिल जाए तो जिंदगी का गीत बन जाता है और बिछड़ जाए तो रूह की खामोश जुबान। वो शोर नहीं करता, कोई शिकवा भी नहीं करता, बस कभी बारिश की किसी बूंद में, किसी शाम की ढलती धूप में, तो कभी किसी पुराने गीत की धुन में आकर हल्के से कंधे पर हाथ रख देता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है संदेश को। हमारे एक और श्रोतागण लिखते हैं कि पहला प्यार जीवन की किताब का वो खूबसूरत पन्ना है जिसे चाहकर भी कभी पलटा नहीं जा सकता। ये हृदय की वो पहली भावनात्मक जागृति है जो इंसान को खुद से परे देखना सिखाती है, जब वक्त की बेरहम लहरें दो राहों को अलग कर देती है। बिल्कुल। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीले सफर में यादों में खो जाएं और सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो अकेले इस दिल को सुकून देते हैं। बिल्कुल, आज के जो गीत है आपको सुकून जरूर देंगे, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में विरह श्रृंगार की अनुभूति को बहुत गहराई से लिए हुए हैं और कोरे कागज पर प्रियतम की यादें उसी का चेहरा लिए हुए है, एक अधूरी दास्तान। और काफी सारे इन्होंने भाव लिखे हैं, जैसे विरह, मिलन, मुलाकात की यादों में ठहरा। बहुत ही सुंदर शब्द चुने हैं इन्होंने अपना संदेश लिखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे संदेशों में वादे शब्द का उपयोग हुआ है, हमारे आज की इबारत में भी है, और यादों से न जाने यादों का कारवां चला आता है। तो आज क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज यादों पर ही कुछ सवाल किए जाएं। हम याद भी करते हैं और वादे भी करते हैं, दोनों शब्द बहुत मिलते जुलते हैं, यादें और वादे। तो हम वादे दूसरों से करते हैं, अपने प्रियजनों से करते हैं, और उन्हें पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो वादे हम अपने आप से करते हैं अपने लिए, क्या उन्हें पूरा करते हैं? तो आप मुझे बताइए कि अभी हाल फिलहाल कौन से वादे आपने अपने आप से किए हैं, और कौन से अच्छे वादे जिन्हें अपनाकर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी बदल गई है? तो उन वादों की बातें करते हैं। लिखिए मुझे संदेशों पर और हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ।

कहाँ उड़ चली, किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जहरीला इंसान फिल्म का नाम था, मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा, आर डी बर्मन का संगीत। ओ हंसिनी, एक ऐसा शब्द जो आप सबने एकदम पहचान लिया और ये गीत हमने आपको सुनवा दिया। लेकिन आगे बातें हो रही है यादों की और वादों की। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर दिल्ली में बरसात हो रही है बहुत जोरों से, और मैंने आपको एक कविता भेजी है, एक गीत, एक प्रीत सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से मैंने लिखी है दास्तां। मैं लिखी हुई दास्तां हूँ, ऐसा इन्होंने लिखा है। मैं वो गुजरे ज़माने की एक राह हूँ, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूँ, सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तां हूँ। बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हम इस वक्त ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं अजमेर से जम्मू कटड़ा की तरफ। बाहर एसी कोच के कांच से बहुत ही सुहाने मौसम के दर्शन हो रहे हैं, बारिश हो रही है, हरियाणा और पंजाब के हरे भरे लहराते हुए खेतों को देखकर आंखों को सुकून मिल रहा है और कानों को विविध भारती सुनते हुए सुकून मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, महेंद्र कपूर की आवाज़ में जो जादू है वो आज भी महसूस होता है। साहिर लुधियानवी के शब्दों ने इस गीत को अमर बना

बना दिया है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम नागपुर में झमाझम बारिश का जो माहौल है उससे आनंदित हो रहे हैं, और हमराज फिल्म का ये खूबसूरत गीत जिससे शुरुआत हुई इस प्रोग्राम की, वो एकदम मौसम के अनुकूल है। जी हाँ, शहर दिल्ली में भी बारिश हो रही है इस वक्त, ऐसा लिखते हैं हमारे श्रोता। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब दिल पहली बार किसी के लिए धड़कता है तो दुनिया की हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी शर्त के, किसी को बस देखते रहने की चाहत, यही पहले प्यार की असली पहचान होती है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। और ज़्यादातर श्रोताओं ने ये लिखा है कि बारिश हो रही है तो बारिश का आनंद भी लीजिए, और साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर गीतों की बारिश में भिगो देते हैं। साथ ही जो मैंने आपसे सवाल किया था कि बहुत से वादे हम दूसरों से करते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं अपने जीवन के अंत तक, ऐसे कौन से वादे जो आपने अपने लिए किए हैं और आप उन्हें निभा रहे हैं, वो हमें बताइए, हमें अच्छा लगेगा, हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करेंगे वो वादे वो बातें।

0: लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे मशाल फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग। वादों पर, यादों पर बहुत से मैसेजेस, संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। तो जब हमने पूछा आपसे कि कौन से ऐसे वादे हैं जो आपने अपने आप से किए हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि वादा वो भी खुद से किया हुआ बहुत कम पूरा होता है। बचपन में सोचते थे सुबह उठकर पढ़ाई करूंगा, जो हो नहीं सका, और जवानी वादों पर ही निकल गई, अब तो बुढ़ापा है, रोज का वादा फिर वादा। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रेडियो जॉकी बनने का बचपन से इंटरेस्ट था, पर बैंकिंग सर्विस में आ गया और खुद से वादा किया था कि एक दिन अपना ये हॉबी जरूर पूरा करूंगा। सो रिटायरमेंट के बाद वो एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपने आप से वादा किए अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखूंगा, और रख रहे हैं बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि बिना उद्देश्य के इस जीवन काल में एक वादा खुद से किया है कि अड़िग रहता हूँ इस वादे पर, हर हाल में सुबह 5 किलोमीटर और शाम को 3 किलोमीटर की वॉक करता हूँ, बारिश में छाता भी संग होता है, और साथ ही हमारे 5 साथी जो साथ में होते हैं, लेकिन हर हाल में वॉक जरूर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली का वादा खुद से किया है और उसे निभाया भी है अब तक, बहुत बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन संगिनी का जीवन भर साथ ना छोड़ेंगे हम, ये वादा हमने किया है अपने आप से। ऐसे में हमारे श्रोता एक ये भी लिखते हैं कि दूसरों को दिए गए वादे तो अक्सर टूट जाते हैं जिनके लिए हमारा उत्तरदायित्व होता है, तो फिर अपने आप से किए हुए वादों का क्या भरोसा। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है आपकी, लेकिन वहीं पर तो बात आती है सेल्फ डिसिप्लिन की, वहीं पर बात आती है अड़िग होकर अपना ख्याल रखने की, क्योंकि सबसे पहले आप अपना ख्याल रखेंगे तभी तो दूसरों का ख्याल रख पाएंगे, है ना। और हम आपका ख्याल रखते हुए अब यहाँ पर आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे मंजिल फिल्म से। योगेश ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी। और मेरे नयन जो है इस वक्त ढूंढ रहे हैं आपके संदेशों को। बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश आपने भेजे हैं, लिख भेजे हैं यहाँ पर। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैंने भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है, जो अभी तक ठीक ठाक निभा रहा हूँ। और एक वादा विविध भारती के साथ किया है, सदा साथ रहने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खंडवा में रिमझिम बारिश की फुहारों के साथ भक्ति में डूबा है पूरा खंडवा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा तो बस यही स्वयं से करते हैं कि सदा सत्यनिष्ठ ईमानदार बने रहें, और वैसे ही अकेले हैं सभी के सामने भी रहें। जी हाँ, बिल्कुल ईमानदार बने रहना ही सबसे बड़ा चुनौती भी है, और देखा जाए तो आसान भी है, बहुत ही सिंपल भी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यादें और वादों के मुताबिक मौसम ने दस्तक दे दी है। जी एक और श्रोता लिखते हैं कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वो आज सुरीला सफर में 25 मिनट लेट हो गए, लेकिन 2 बजे तक विविध भारती के साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक और श्रोता लिखते हैं, जहां भी रहेंगे विविध भारती के साथ रहेंगे, ये वादा किया है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पढ़ाई के समय का पहला प्यार असफल रहा, दूसरी बार सगाई हुई तो वो भी साल भर बाद टूट गई। मन टूट गया था, पर तीसरी बार हुआ प्यार, 2 महीने के अंदर चट मंगनी और पट ब्याह में तब्दील हो गया, जो आज तक मैं अच्छे से निभा रहा हूँ। जी हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, निभाते रहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा टूटने के लिए तो होता है, क्योंकि टूटने पर ही जुड़ने की लालसा लगती है। जी हाँ, अब ये सबके अपने अपने विचार हैं, बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि अपने आप से एक बड़ा वादा किया है कि समय का सदुपयोग करूँगा, नहीं टेंशन दूंगा और ना ही टेंशन लूंगा। ये तो सबसे अच्छा मंत्र है देखा जाए तो खुश रहने का। और एक बहुत ही खूबसूरत वादा जो हम अपने आप से कर सकते हैं वो है खुश रहने का, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, किसी के ऊपर नहीं है ना। तो चलते हैं, इसी खुशी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और ये अगला गीत।

जमाने को दिखाना, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का म्यूजिक था। इसके साथ ही आपके बहुत से सुंदर मैसेजेस, संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ वादे शब्दों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निभाए जाते हैं। आज की सुंदर सी इबारत ऐसे ही एक सच्चे वादे की कहानी कहती है, जिसमें पहला प्यार, मीठी यादें और अटूट विश्वास आज भी जीवित है। जी हाँ, आज की धुनों के बारे में बताया हमारे एक श्रोता ने, और बहुत ही खूबसूरत ढंग से पूरे डिटेलिंग के साथ उन्होंने तीनों धुन, यानी कि आने वाला पल, आगे भी जाने ना तू और लेकर हम दीवाना दिल के बारे में बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बड़ी खास है, पहला प्यार हर किसी को होता है। कोई कोई होगा जिसने कभी प्यार नहीं किया होगा और पहला प्यार कभी भूलता नहीं है। रजनीगंधा सा महकता है। हालांकि ये संदेश बहुत लंबा है, लेकिन मैं कुछ ही पंक्तियों में इसे पढ़ दे रही हूँ। अगले श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज के इबारत के शब्द भी लाजवाब है और गीत भी लाजवाब है। बनारस में बैठकर वो इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता का कहना है कि आज के ज़माने में ईमानदारी, यानी कि ईमानदार इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, जो हमारे साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाएं जैसे कि हम उनके साथ रहते हैं। हम आजकल दूसरों पर भरोसा ही नहीं कर पाते हैं और बहुत कम करना चाहिए कि कौन कहां तक साथ देगा, क्या पता। जी हाँ, सतर्क तो ज़रूर रहना चाहिए, लेकिन इस तरह की बातें सोचना कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, सतर्क रहें और सोच समझकर ही अपने रिश्ते निभाएं, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे एक और श्रोता बनारस से लिखते हैं कि बारिश कहाँ गायब हो गई है। हम लोग यहाँ गर्मी में धूप और बारिश के मौसम में चिचिल अति धूप का सामना कर रहे हैं, यानी कि कभी बारिश भी आ रही है, कभी धूप भी आ रही है, और दोनों मौसमों का ये बारी बारी से सामना कर रहे हैं, तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है, शायद ये ऐसा लिखना चाह रहे हैं। हमारे एक श्रोता कोलकाता से जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत धूप है आज और उमस भी हो गई है काफ़ी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जवानी में कमाने में बिजी रहे, प्राइवेट नौकरी में थे तो कहीं जाने की फुर्सत ही नहीं मिली, और अब देश के तमाम उन शहरों को घूमने का मन बनाया है जो समंदर के किनारे हैं। देखिए बुढ़ापे में ये वादा पूरा होता है या फिर नहीं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है और इन गीतों के साथ वो चाय और पकौड़े के साथ इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। छोटे छोटे वादे करते हैं, ज़्यादा बड़ा वाला वादा हम अपने आप से नहीं करते हैं। जी हाँ, कोई बात नहीं, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर ही मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। फिलहाल हमारी मंजिल अगला ये गीत, सफ़र में जोड़ते हैं इसे, है ना।

0: शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत तराना फिल्म से, रविंद्र रावल ने इसे लिखा, राम लक्ष्मण का संगीत।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वादा होता ही है ना निभाने के लिए, क्योंकि जिनको निभाना होता है वो लोग वादा नहीं करते, केवल निभाते हैं। जी हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, आपका विचार हो सकता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर में इस वक्त सुरीला सफर कार्यक्रम के दौरान बारिश शुरू हो गई है, तो जी हाँ आनंद लीजिए गीतों का और बारिश का, दोनों का। एक और श्रोता लिखते हैं कि उनके चयनित 3 गीतों को कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। इस बात का वादा जरूर कर सकते हैं लेकिन वादा निभाया जाएगा इसका दावा नहीं कर सकते। दावा और वादा दोनों शब्द को आप उल्टा कर पढ़ोगे तब भी यही मतलब निकलेगा। बहुत डिटेलिंग से उन्होंने मैसेज लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि एक वादा अपने आप से ये किया है कि कोई भी समय हो, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, लेकिन मुस्कुराते रहना है, अपनों के लिए यही सबसे बड़ा वादा होगा। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा एक उम्मीद है और उसे पूरा करना संकल्प,

और ये ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा तो ये कहना है कि वादा करना बड़ा आसान है, लेकिन उसे निभाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। वादा करने के लिए सिर्फ शब्द खर्च करने होते हैं, लेकिन वादों को निभाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और खोखले वादे करने के बजाय हम कोशिश को तवज्जो दें तो बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, बहुत अच्छा विचार है। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ, और ये रहा अगला गीत।

बड़े दिल वाला इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में आर डी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। और आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। जयपुर से जुड़े हमारे श्रोता और लिखते हैं कि एक घंटे से बारिश हो रही है, मौसम सुहावना है और सुरीले सफर के साथ मौसम के चार चांद लग चुके हैं, लेकिन ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव बारिश और सुरीले सफर का जो गीत है उनका मजा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि किसी से भी वादा इतना ही करना चाहिए जिसे हम पूरा कर सकते हो, उतना बड़ा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा ना कर पाए। और इस पर ये गाना फिट बैठता है कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। क्या बात है। एक और श्रोता लिखते हैं गुंचे लगे हैं खिलने, ये जो गीत है काफ़ी दिनों के बाद इन्होंने सुना है और ये सुनकर इन्हें लगता है इन्हें याद आती है अपने बचपन के वो दिनों की जब अंताक्षरी में ये गीत गाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युगांडा अफ्रीका से भी जुड़े हैं लोग, एक श्रोता जुड़े हैं जो सुरीला सफर का मजा ले रहे हैं इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर शहर में बरखा रानी रूठी हुई है, कल रात में थोड़ी रिमझिम बारिश हुई पर उसके बाद पता नहीं कहाँ रूठ कर चली गई। चलिए गीत सुनिए, उन्हें मनाइए और वो आ जाएंगी फिर से। ट्रेन के सफर में जो है इंटरनेट महाराज आंख मिचोली खेल रहे हैं और इंटरनेट महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ठीक से चले। जी हाँ बिल्कुल, वादा इन्होंने VBS के साथ किया है कि इसका दामन कभी नहीं छोड़ेंगे और हम भी आपका दामन कभी ना छोड़ेंगे। फरीदाबाद से भी हम तक मैसेज पहुंचा है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बादलों ने अपना वादा बखूबी निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे संदेशों के लिए। और अब ये गीत

0: तुझे न क्या कर डालू हाल मोहे समा।
1: कारवां फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज। और हमने शुरुआत की थी इस सुरीला सफर की वादा से, और अब खत्म कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं वादा गीत के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म गीत का कार्यक्रम, जिसमें आपको सुनवाएंगे पहला गीत अरिजीत सिंह और रूपाली मुगे की आवाज में फिल्म बधाई दो से।

अमित त्रिवेदी का संगीत, वरुण ग्रोवर के लिखे बोल, अरिजीत सिंह और रूपाली मोगी की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म बधाई दो से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में। फिल्म का नाम है लाल

प्रीतम का संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल, अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म लाल सिंह चड्ढा से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सभी की सुरक्षा की भी कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने और सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए शर्मिला को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पदक ने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक के लिए 2 दशक लंबे इंतजार को समाप्त किया। उन्होंने पुरुषों के 79 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतने पर वल्लूरी अजय बाबू को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारोत्तोलक ने स्नेच स्पर्धा में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। श्री मोदी ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने के लिए सर्वेश अनिल कुशारे को भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि प्रदेश में कल गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में परीक्षा और युवाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का, मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी आज घोषणा हो गई है। ये भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में स्थापित होने वाले हैं, जिनमें पेपर लीक और परीक्षा जैसे अन्य सभी मामलों का 3 माह के भीतर निराकरण किया जाएगा। और साथ में ये भी सुनिश्चित होगा कि जो युवा है उनके सपने साकार होने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए। इसके लिए साथ में सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, उसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो भी तैयार किया जाएगा।
0: मंत्री ने यह भी बताया कि आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट का राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागरिकों से स्वच्छता अपनाने और शुद्ध पेयजल, भोजन और पानी का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हेपेटाइटिस से बचाव के लिए दूषित भोजन और पानी से बचना तथा समय पर उपचार कराना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने लोगों से इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने और दूसरों को भी आवश्यक सावधानियां अपनाने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन का संकल्प लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रकृति का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की मजबूत नींव है। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज सतना, कटनी, उमरिया, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, रायसेन और बैतूल सहित 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 28 से 30 जुलाई के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। नागरिकों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की गई है। आपको समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से जिले के किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान देने के लिए 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। नीमच में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 28वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिंडौरी में वर्षा ऋतु के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिलेवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट

0: वन स्पोक मॉडल शुरू किया है। इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा।
1: में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और बी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, PCR लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज FIR की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीच मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: And for whatever interest. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले सदन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि NDA संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
3: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं।

0: कसम में भाग ले उसको पास कर।
1: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
2: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
1: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
3: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
1: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
4: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार हमारे NewsOn AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू रामोह नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
5: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
1: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
6: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन

0: के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए दो महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में एक रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रुपए का इनामी रीजनल कमांडर संतोष वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण 86 इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसाबांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरिया के सागर और यासुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशू रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशू शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो हो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, तीन देवियां फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
1: विविध भारती से, इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल।

0: हर मौसम है प्यार का मौसम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, हर बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं
1: नहीं, नहीं।

मुकेश की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे संगम फिल्म से। शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। वक्त फिल्म का नाम था। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, रवि का संगीत।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मंत्र फेरू कोमल काया छोड़ के डारे

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बंदनी फिल्म से। गुलजार ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: की सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं आरती श्रीवास्तव। तो आरती, तुम्हें भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और मंच पर स्वागत है।
2: मंजरी जी, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
1: कैसा लग रहा है आज तुम्हें?
2: अच्छा लग रहा है आज तो
1: क्योंकि आज मौसम भी बदला सा है ना। प्रकृति पूरी हरी भरी दिख रही है और बारिश की तो फुहार आई चुकी है, तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है जब
2: बारिश
1: देखते
2: का
1: हैं।
2: बारिश का एक यही जादू होता है ना कि वो चारों तरफ हरियाली बिखेर देता है। परेशानियां भी, नुकसान भी होते हैं, लेकिन ये जो चीज है ना, ये भी बहुत जरूरी है।
1: क्योंकि आज देखो, हम अपने विषयों में भी लेकर आए हैं ना कि हम बात करने वाले हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि मुहावरों की दुनिया जिसमें पेट में चूहे दौड़ना है ना, और इसके साथ साथ हल्की फुल्की बातों में भाई बहन की लड़ाई में किसकी हुई पिटाई इस पर भी बड़ा अच्छा सा मजेदार सा विषय है जिसमें बचपन की यादें सभी की ताजा हो जाएंगी। तो सभी हमारे श्रोता भाई लोगों ने बहुत सारे कमेंट लिख भेजे हैं, सखियों ने भेजे हैं।
2: तो अपने जो भी आपके आपके अनुभव हैं, जैसा भी आपके बचपन में अनुभव रहा कि किसकी पिटाई हुई थी भाई बहन दोनों में से, तो आप लिखकर भेजिए हमें। और साथ ही पेट में चूहे कूदना आपके लिए क्या मायने रखता है, आप किस तरह से इसको परिभाषित करते हैं, इसके बारे में भी आप अपने विचार लिखकर भेजिए। हाँ, और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत डॉक्टर गीता मंजुनाथ के बारे में, जो कि निर्मय हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक भी हैं और उसकी सीईओ भी हैं।
1: बिल्कुल। और इसके साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के ऊपर भी बात करने वाले हैं आरती। तो जो ये जो दिवस है हमारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस, मानव शरीर में कब कौन सी बीमारी लग जाए कह नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति कितना भी संतुलित अनुशासित जीवन नियम संयम से जी ले आरती, चाहे वो ध्यान कर ले, योग व्यायाम कर ले, या चाहे खान पान की बात हो या दैनिक दिनचर्या हो, कभी कभी मानसिक तनाव शारीरिक थकान से भी समस्या पैदा हो जाती है।
2: बिल्कुल। और कभी कभी भी जो ऐसा होता है ना, किसी रोग के लक्षण उत्पन्न होने पर अगर हमने जरा सी भी चूक कर दी या हमने लापरवाही बरत दी, तो समझो कि बीमारी जो है वो हमारे शरीर में अपना घर बनाने में देर नहीं लगाती है। फिर हम कितना भी सफाई दे दें कि अरे मुझे कैसे हो गया, हम तो बहुत ध्यान रखते थे, बहुत ताजुब होता है कि हमें कैसे ऐसा हो गया, तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि एक छोटी सी लापरवाही जो है वो हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है।
1: बिल्कुल। और इसीलिए सभी बीमारियों से बचने के लिए दिवस मनाए जाते हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता अवेयरनेस हो और समय रहते ही बीमारी का इलाज किया जा सके। जैसे कि आज हम हेपेटाइटिस जैसे रोग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज 28 जुलाई है और इस दिन को हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है।
2: और हेपेटाइटिस में होता क्या है, इसके बारे में आपको बता दें कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर या जिसको हम यकृत कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। ये मुख्य रूप से एक वायरस के कारण होता है और इसके प्रमुख प्रकार हेपेटाइटिस A, B, C, D और E हैं। और साथ ही जब ये बीमारी होती है तो इसके लक्षण इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे कि बार बार थकान महसूस होने लगती है, भूख कम लगने लगती है और उल्टी जैसी आने लगती है, हमेशा ऐसा होता रहता है, और पेट में बहुत दर्द होता है, आंखों और त्वचा का रंग जो है वो पीला पड़ने लगता है, साथ ही गहरे रंग के पेशाब होना जैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसलिए अगर इस तरह के लक्षण, थोड़े से भी इनमें से लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए और चिकित्सक से अपने परामर्श करके इलाज शुरू करवाना चाहिए।
1: बिल्कुल। और इसके लिए हेपेटाइटिस बी का टीका अवश्य लगवाएं, हमेशा साफ और सुरक्षित भोजन व पानी का सेवन करें, हाथों की नियमित सफाई रखें, केवल नई या पूरी तरह से स्टरलाइज्ड की गई सुई का ही उपयोग करें, और जब रक्त चढ़ाने की बात आती है तो ये भी देखें कि रक्त किस तरह से स्वच्छ है और आपके शरीर के हिसाब से है कि नहीं, ये आप डॉक्टर से जानकारी ले सकते हैं और तभी आप रक्त चढ़वाएं, और समय समय पर स्वास्थ्य जाँच अवश्य करवाएं।
2: तो हर किसी को करवानी चाहिए। और साथ ही आप कोई भी दवाई ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर से परामर्श करिए, अपने मन से या कहीं देखकर आप उस दवाई को मत लीजिए, वो नुकसान भी कर सकती है। और साथ ही हेपेटाइटिस का समय पर पर पता चल जाता है तो इसका इलाज भी संभव है, लेकिन लापरवाही करने पर ये लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए समय पर जांच, टीकाकरण और सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे साथी भी लिखते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए अपने लीवर की सेहत का ध्यान रखना और बीमारी के प्रति जागरूक रहना बेहद जरूरी है। सही जानकारी, समय पर जांच, टीकाकरण और उचित उपचार के माध्यम से हेपेटाइटिस से बचाव और इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए इस दिन हम स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें।
2: बिल्कुल। और एक और हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस दोनों ही प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाए जाते हैं। ये दोनों दिवस वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। साथ ही ये कहते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्म दिवस पर वायरल जो होता है हेपेटाइटिस लीवर की सूजन जिसको कहते हैं उसके प्रति जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देना इसके लिए मनाया जाता है। और साथ ही हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई के खतरों से बचाना और समय पर जाँच और टीकाकरण कराना और बहुत जरूरी है।
1: कि आज के दिन या हर दिन अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और जब भी कुछ लगे तो आप डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर इलाज कराएं, दवा लें। और चलते हम लोग गीत की ओर, थोड़ा मौसम गीत की ओर चलते हैं।

0: तो आरती, आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष में।
1: जी, तो पहले तो मैं उनकी कुछ एक बात कहना चाहती हूँ, उसके बारे में बताऊंगी वो कौन है। मैं प्रतिदिन कुछ नया सीखने और खुले विचारों वाला होने में विश्वास रखती हूँ। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही ऐसे मित्र भी मिलते हैं जो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये कहना है गीता मंजुनाथ जी का। गीता मंजुनाथ एक भारतीय उद्यमी, कंप्यूटर वैज्ञानिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI विशेषज्ञ और निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक, साथ ही CEO और CTO भी हैं।
0: और उन्होंने AI और मशीन लर्निंग की सहायता से स्तन कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए एक अभिनव तकनीकी भी विकसित की है। गीता मंजुनाथ का जन्म और पालन पोषण बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में स्नातक और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा प्राप्त की। साथ ही IISc से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग में PhD भी आपने की।
1: बिल्कुल, सोचिए कितनी उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के एक बड़े विद्यालय से प्रबंधन शिक्षा भी प्राप्त की। परिवार के 2 सदस्यों को स्तन कैंसर के अंतिम चरण में खोने के बाद गीता मंजुनाथ जी ने IT में अपना करियर छोड़कर एक ऐसा उत्पाद विकसित करने का फैसला किया जो इस बीमारी का जल्दी पता लगा सके, जिससे अनगिनत जानें बचाई जा सके। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक होने के नाते उन्हें अनुसंधान और नवाचार से बेहद लगाव है।
0: गीता मंजुनाथ इस बात पर विचार करने लगी कि स्तन कैंसर से इतनी सारी महिलाओं की जान बचाने के लिए वे क्या कर सकती हैं। वे अपने करीबी लोगों के साथ थर्मल इमेजिंग को पढ़ रही थी और उन्हें एक संभावित समाधान सूझा और इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। दूसरों की मदद करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मंजुनाथ ने 2016 में बेंगलुरु स्थित अपनी कंपनी निरामयी की स्थापना की।
1: और इसका संक्षिप्त रूप है नॉन इन्वेसिव रिस्क असेसमेंट विद मशीन इंटेलिजेंस। ये एक संस्कृत वाक्यांश से भी लिया गया है जिसका मोटे तौर पर अनुवाद है सभी स्वस्थ रहें। निरामयी में थर्मोलिटिक्स नामक एक सॉफ्टवेयर तकनीक है जो छाती पर तापमान के वितरण को स्तन कैंसर रिपोर्ट में परिवर्तित करती है। ये कई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम होती हैं उनका उपयोग करके किए गए विश्लेषण के माध्यम से ऐसा करती हैं, जिसे गीता मंजुनाथ ने थर्मल इमेजिंग पर आधारित उनको AI कहती हैं।
0: और आरती, अब हम लोग इनके ऊपर और चर्चा करेंगे, लेकिन देखो धीरे धीरे समय हो चला है एक अंतराल का, तो अंतराल के बाद एक बार फिर हम सबसे मिलेंगे, है ना। तो इसके साथ ही हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, इन्होंने क्या किया है, इनको पुरस्कार भी बहुत सारे मिले हैं।
1: जी,
0: तो उसके बारे में
1: अंतराल ले लेते हैं।
0: पहले एक अंतराल ले लेते हैं।

तो आरती अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं, और हम लोग बात कर रहे थे गीता मंजुनाथ जी के बारे में। तो इन्हें जो है इससे हाल में ही FDA की मंजूरी मिली, जिससे निरामयी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा उपकरण के लिए अमेरिकी FDA से मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। अब तक निरामयी को 28

0: इस पेटेंट मिल चुके हैं और इसने कई पुरस्कार जीते हैं। भारत और कई अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मैमोग्राम नियमित स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा नहीं है। गीता मंजुनाथ कहती हैं कि अक्सर महिलाओं को ये भी पता नहीं होता कि उन्हें मैमोग्राम की आवश्यकता है या नहीं है।
1: बिल्कुल, और गीता मंजुनाथ के अत्याधुनिक नवाचार से इन्वेंशन किया जो उसका, उससे घने स्तन ऊतकों वाली महिलाओं के लिए भी एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैमोग्राम में ट्यूमर और घने ऊतक दोनों सफेद दिखाई देते हैं, जबकि थर्मोग्राम में असमानताएं अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसके माध्यम से बिना दर्द, बिना स्पर्श, बिना रेडिएशन और कम लागत में शुरुआती चरण में स्तन कैंसर की पहचान करने में बहुत सहायता मिलती है, जिसकी वजह से उनका इलाज भी जल्दी संभव हो जाता है। और गीता मंजुनाथ को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि CSI से गोल्ड मेडल और BIRAC से विनर अवार्ड 2018 में और फोर्ब्स इंडिया की टॉप सेल्फ मेड विमेन सूची में स्थान भी मिला हुआ है। इसके अलावा अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। AI और हेल्थ केयर के क्षेत्र में 15 से अधिक अमेरिकी पेटेंट उनको हासिल हैं।
0: बिल्कुल, और इतनी अच्छी सी जानकारी तुमने दी आरती, और इसका कहने का मतलब यह है कि हम महिलाएं जो है वो अपने बारे में बहुत लापरवाही कर देते हैं। तो अगर आपको कुछ कभी ऐसी कोई समस्या लग रही है, थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, तो आप अपना इलाज प्रॉपर कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, सारे टेस्ट होंगे, फिर आपको दवाएं इलाज शुरू होगा, दवाएं चलेंगी। तो कहना चाहिए कि आप परिवार का ध्यान रखती, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखें।
1: और मंजरी जी, मैं तो कहूंगी हमेशा आप रेगुलर थोड़े थोड़े समय पे अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए कि कोई परेशानी है तो नहीं, ताकि अगर कोई परेशानी है तो जल्दी उसका पता चल सके।
0: और हम लोग सुन लेते हैं गीत।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो आरती देखो, हम लोग बात करने वाले हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर। प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सोचो कल्पना करो क्या होगा, है ना।
5: इंसान तो नहीं रह सकता,
4: बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरत की चीज है। और प्रकृति में हम हैं, हम में प्रकृति है, ये केवल एक सुंदर वाक्य नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। धरती को भूमाता, नदियों को जीवनदायिनी, वृक्षों को देवतुल्य और सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ऋषि मुनियों ने जंगलों में रहकर प्रकृति के बीच ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि वे जानते थे कि प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आरती, तो मनुष्य का शरीर भी प्रकृति का ही एक रूप है। कहते हैं पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, तो उसमें एक हमारी प्रकृति भी है।
5: और हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल है, सांसों में वायु है, शरीर में ऊर्जा अग्नि से संचालित होती है, और पृथ्वी के अन्न से हमारा पोषण होता है। पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना जो ये हमारा शरीर है वो प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी का विस्तार है। इसलिए जब प्रकृति बीमार होती है तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, जीवन पर और भविष्य पर भी पड़ता है।
4: बिल्कुल, और आज के समय की बात करें तो हम इंसान प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक धुआं और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, जिसका भयंकर परिणाम हमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और बढ़ते तापमान जैसी समस्याएं के रूप में हमें ये देखना पड़ रहा है।
5: बिल्कुल, और प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के सब कुछ देती है। शुद्ध हवा देती है, पानी है, फल फूल, औषधियां हैं, जीवन के लिए हर जरूरी चीज, हर संसाधन। बदले में वो केवल संरक्षण और संवेदनशीलता की अपेक्षा करती है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो बदले में वो भी हमें स्वस्थ जीवन, संतुलित जलवायु और समृद्ध भविष्य देगी।
4: बिल्कुल, और प्रकृति के संरक्षण के लिए बड़े अभियानों के साथ साथ छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधे लगाना, जल की बचत करना, बिजली का समझदारी से

0: उपयोग करना, प्लास्टिक से दूरी बनाना, वर्षा के पानी का संचयन करना और जैव विविधता की रक्षा करना ऐसे कदम हैं जो आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, और प्रकृति इंसान, जीव जंतु, पक्षी, ये अलग अलग अस्तित्व नहीं है बल्कि एक ही जीवन धारा के रूप है। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो वास्तव में हम अपने आप को बचाएंगे। प्रकृति का सम्मान करना भविष्य का सम्मान करना है, क्योंकि प्रकृति में हम है और हम में ही प्रकृति है। यही विचार हमें पर्यावरण संरक्षण, संवेदनशील जीवन और सतत विकास की दिशा में प्रेरित करता है। और मंजरी, पता है पूरे इतने सारे, हमारी इतनी बड़ी जो अंतरिक्ष है, इतनी उसमें चीजें, इतने प्लैनेट्स हैं, है ना, इतने ग्रह हैं, लेकिन सिर्फ एक पृथ्वी ही है। चाहे वो छोटा सा हमें दिखता हो, वो एक पृथ्वी है जिस पर लकड़ी यानी कि पेड़ पौधे हैं, पानी है और जीवन है, है ना। तो उस जीवन को हमें बचा के रखना है, अपनी एक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों को, अपने जंगलों को बचाना बहुत जरूरी
0: बिल्कुल
1: है।
0: और इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर हम हर दिन कुछ ना कुछ सोचें कि पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो सोचो कितने सारे वृक्ष हो जाएंगे। और पेड़ पौधे बहुत तेजी से भी बढ़ते हैं, तो अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीजें बचेंगी, सलामत रहेंगी।
1: और ये मौसम भी पेड़ पौधे लगाने,
0: बिल्कुल वर्षा का जो मौसम होता है इसमें आप अनगिनत वृक्ष लगा सकते, पौधे बीजों का रोपण कर सकते हैं जिनसे पौधे तैयार होंगे, फिर आप लगा दें इधर उधर तो वो बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। और जब भी कोई फल खाए ना, तो उसको एक बार आप मिट्टी में दबा के देखिए, एक नन्ना सा पौधा तैयार होगा
1: जो बहुत खुशी मिलती है,
0: बहुत खुशी मिलती है जब वो निकलता है। छोटा सा पहले बीज का आकार का रहेगा, फिर उसमें पत्ती कुछ दिन बाद खिलेगी, तो मन को बहुत भाती है वो चीजें। तो अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो वहां पर, वहां की हरियाली देखने तो जाते हैं ना, कि पहाड़ों पर चले गए चलो यहाँ की हरियाली देख लेते हैं, तो हमें रोज इसके बारे में सोचना है। और एक और ध्यान रखना है कि जब हम पौधे लगाते हैं तो ये देखें कि उनको, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, उन्हें जल देना, उन्हें खाद पानी देना, इसका भी ध्यान रखें, तभी वो बढ़ पाएंगे। अगर हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और हम चले आए, हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा परिणाम,
1: सूख जाएगा वो जो हमने लगाया है, बीज पता भी नहीं कहाँ अंदर, वैसा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है उसकी देखभाल, सिर्फ लगाना जरूरी नहीं है, उसकी देखभाल भी जरूरी है। और जो हमारे जो साथी हैं, जो हमारे सुनने वाले सखा हैं, सखियां हैं, वो सब भी लिख रहे हैं इसके बारे में, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं। तो एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि प्रकृति और पुरुष का एक साम्य विशेष है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक से दूसरे की उत्पत्ति है, किंतु जब दोनों में विभिन्न कारणों से असंतुलन होता है तब उनके पारस्परिक संरक्षण की बात सामने आती है। वैसे तो एक वृक्ष को 100 पुत्र के बराबर कहा गया है, किंतु हम मनुष्य ही केवल अपने हित में विभिन्न कारणों से उनका दोहन किया करते हैं, तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। और ऐसे ही बिगड़े हुए असंतुलन को ही संतुलित करने हेतु आज का ये वैश्विक दिवस है, जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज के दिन मनाया जाता है।
0: कितनी अच्छी सी बात हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है।
1: ये तो सही है कि एक जो वृक्ष होता है वो 100 पुत्रों के बराबर होता है।
0: बिल्कुल, और भाई बच्चों से भी तो आप वृक्षारोपण करवा सकते हैं, पौधे लगवा सकते हैं। आप छोटे छोटे गमले बनाइए और उसमें बच्चों को बोलिए कि तुम ये बीजा इसमें बो दो, ये इसमें बो दो, तो उससे भी क्या होगा कि बच्चों को ये चीज समझ में आएगी कि हमने लगाया है, और वो रोज आकर के देखेंगे कि अरे ये पौधा बना कि नहीं बना। तो इससे बच्चों के अंदर भी एक उत्साह रहेगा और वो प्रकृति से प्रेम करने के बारे में सोचने और समझने लग जाएंगे।
1: और ये जो प्रकृति का प्रेम होता है ना, वो एक मतलब बहुत लोगों के साथ में ना होने से भी अकेलेपन को भी दूर करता है।
0: और आरती, इसी के साथ अंतराल का समय हो चुका है, तो मिलते हैं अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है और हम बात कर रहे थे प्रकृति की।
1: तो एक हमारे और साथी हैं जो लिखकर भेज रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में भी लिखा है उन्होंने कि इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन और वन्य जीव की रक्षा करना और पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। प्रकृति का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। संरक्षण के बिना जल, वन और वन्य जीव जैसे संसाधन लुप्त हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को रोकता है, जैव विविधता को बनाए रखता है।
0: तो आओ चलो पहले सुन लेते हैं गीत।

0: भाई मन कहे मैं झूमू मैं गाऊं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे संदेश आ गए आरती
1: उनको देख के
0: झूम रहे हैं। तो चलो एक संदेश हम लेते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि प्रकृति जीवन का आधार है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है और सभी जीवों को स्वच्छ जल वायु व भोजन प्रदान करती है। प्रकृति का संरक्षण इसलिए ही अनिवार्य है क्योंकि मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग और प्रदूषण से हमारी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। वनों की कटाई, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक कचरा और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा, पानी और जमीन को दूषित कर रहे हैं, जिससे जीव जंतुओं का जीवन खतरे में है और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रकृति को बचाएंगे तो वो भी हमें बचाएगी, यही समझदारी है। बहुत खूबसूरत सी बात लिखकर भेजी है आपने। और हमारे कौर साथी लिखते हैं कि जो प्रकृति से करते हैं प्यार वो इसके संरक्षण के लिए कैसे करें इनकार। जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं तो फिर हम भी जिस प्रकृति या कुदरत के सानिध्य में रहते हैं तब हमें उनकी संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी बनती है। इसका मुख्य उद्देश्य जल, जंगल, जमीन, खनिज के साथ सभी वन्य जीवों से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हमारे सौराष्ट्र के गिर जंगल में बस रहे वन्य जीव जैसे कि गिर के सिंह अपने खुराक पानी की शोध में मानव बस्ती में आ जाया करने लगे हैं, जान माल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो भाई इस तरह की चीजों को भी ध्यान रखना है कि उनकी देखभाल भी हम कैसे करें।
1: बिल्कुल, और वैसे भी जो प्रकृति का संरक्षण है उसको हमें पूरी सजगता के साथ अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं जैसे कि अभी उन्होंने बताया, तो हमें अपने प्रकृति के लिए भी उतना ही सजग रहना चाहिए, है ना। तो
0: बिल्कुल।
1: और बात करते हैं प्रकृति संरक्षण के हमारे कौर साथी हैं जो हमें वही चीज बता रहे हैं भी, जैसे कि 28 जुलाई है तो प्राकृतिक संसाधनों यानी जल, जंगल और वन्य जीव के संरक्षण और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रकृति का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: और इसके साथ साथ लिखते हैं कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यह हमें संदेश देता है कि प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों की अमूल धरोहर भी है। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, जंगल और वन्य जीव प्रकृति के हर रूप में अपना महत्व है। आज विकास की दौड़ में पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जल और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, प्रदूषण कम करेंगे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी धरती सदैव हरी भरी, सुंदर और जीवनदायिनी बनी रहे।
1: बिल्कुल बनी रहेगी जगह अगर हम लोग जागरूक रहेंगे तो। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ भाई बहनों की कुटाई पिटाई की।
0: बिल्कुल, हमारे साथी देखो लिखते हैं कि एक उन्होंने कविता लिखी है और ये तो वो ही बता सकते हैं कि कविता किसकी लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने लिखा है तो मैं पढ़ती हूँ। भाई बहन की, भाई बहन में हुई लड़ाई घर में मची खुद दुहाई, किसने किसकी बात न मानी, किसने अपनी बात मनानी, दोनों ने फिर शोर मचाया, मम्मी ने आकर डांट लगाया, लड़ते लड़ते दोनों घबराए, आखिर किसकी हुई पिटाई। भाई बोला बहन ने मारा, बहन बोली भैया ने मारा, मम्मी बोली चुप हो जाओ, दोनों आकर गले लग जाओ, लड़ाई पल में प्यार बनी, हंसी खुशी फिर बात बनी, भाई बहन का रिश्ता न्यारा, लड़ते हैं फिर भी सबसे प्यारा।
1: सच में। और हमारे एक और साथी हैं जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई, मेरी तो कभी अपने भाई से लड़ाई नहीं हुई, हाँ मेरी बहन की भाई से बहुत लड़ाई होती थी, हम दो बहनों से, भाई छोटा था उन दिनों और उन दोनों में लड़ाई तो बहुत होती थी, पर बेचारा मेरा भाई बहन के हाथों खूब पिटता था। मेरी बहन थोड़ी सी लड़ाकू टाइप की थी तो ना तो कोई उसे जीत सकता था और अभी भी उनका नेचर ऐसा ही है, वो कहती है। तो यानी कि आपकी पिटाई होने हो सकती है आज। आपने लिखा है उनके बारे में बताया। हाँ। तो इस वजह पे।
0: और हमारे साथी लिखते हैं बचपन में हर भाई बहन की तरह हम भी छोटी छोटी बातों पर बहुत लड़ते थे। मैं बड़ी थी, भाई छोटा था, लेकिन बचपन में हम दोनों बहुत लड़ते थे। मैं जब भी रोटी बनाती तो मेरी चोटी पकड़ लेता, कहता तूने रोटी कच्ची रख दी है और सेक मतलब। मैं कहती सही सीखी है, टेबल एक ही हुआ करती थी, पढ़ने का टाइम दोनों का एक, तो टेबल के लिए लड़ाई कभी अपनी सहेली के जाती मम्मी से पूछकर, तो आते ही कहता जरूर पिक्चर देखने गई थी, शोर ऐसा मचाता कि पूछो मत बस, लेकिन मम्मी पापा के सामने दोनों एकदम चुप सीधे सादे बन जाते। लेकिन हमारी कभी पिटाई नहीं हुई, हाँ प्यार से समझाया जरूर गया, कभी हल्की सी डांट मिली कि भाई छोटा है।
1: ये अक्सर होता है, जो छोटा होता है ना उसको ये एक फायदा मिलता है ना कि सब कहते हैं ये छोटा है इससे तुम मत करो। और एक और मेरे साथी जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई तो बहुत कम हुई बचपन में, छोटी छोटी सी बातों पर

0: लड़ लेते थे। वैसे मैं बचपन से ही दीदी के साथ खेलता था, तो बहुत कम ऐसा होता था कि लड़ाई हो, और अगर होती भी थी तो दीदी के हाथों की लगती भी नहीं थी मार।
1: तो चलो एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो देखो आरती, कितना प्यारा सा ये गीत था। और हमारे साथी भी देखो एक संदेश में लिख रहे हैं कि भाई बहन की लड़ाई में किसकी कुटाई हुई। इस पर इतना ही कहूंगा कि मेरी तीन बहनें जो मुझसे बड़ी हैं, वो तो माता पिता के साथ साथ वो भी हमेशा मेरे अभिभावकों की भूमिका में रहती थी, और आज भी जब माता पिता नहीं है तो अब और ज्यादा उसी रूप में साथ निभा रही है। लेकिन मुझसे एक बहन छोटी जिसके साथ बहुत खेला हूँ, चाहे कांच की गुड्डे गुड़िया के खेल हो या काना गोटी चपेटा वगैरह, पतंगबाजी हो, हर खेल में साथ रहे हर, और झगड़े भी, लेकिन झगड़ा मुंह जबानी होता था, झूमा झटकी या कुटाई की नौबत तक नहीं पहुंचा, खेल जरूर बिगड़ जाता था और फिर माँ की डांट खानी पड़ती थी।
1: एक और हमारे साथी हैं मंजरी, जो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में मेरी ही कुटाई ज्यादा हुई है, क्योंकि मेरी दीदी बड़ी है और हमारे खानदान में बड़ी ही है, और सभी का स्नेह जैसे कि चाचा चाची दादी पापा और मामा और माँ, सभी का प्रेम जो न्योछावर था। मुझे याद है बचपन में जब माँ मुझे कहती कि दीदी को उठा दे, तो मैं दौड़ते हुए उसके ऊपर कूद जाया करता था और जोर जोर से कहता था माँ दीदी मर गई। और जब माँ आकर के जो कुटाई करती थी, ऐसे नहीं बोलते, और कभी अगर पापा के सामने हाथ उठता था तो दीदी पर तो पापा की तरफ से कुटाई होती थी, लेकिन मेरी दीदी अभी तक हमें बहुत प्रेम करती है।
0: क्या बात है। और आपस में भाई बहन में जब लड़ाई होती थी तो तुरंत

से ही वो सुधर भी जाती थी, और फिर तो हम एक दूसरे को आपस में ब्लैकमेलिंग बहुत चलती थी, और अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम्हारी बात बोल दूंगी, ऐसा हमारे संदेश ने साथी ने लिखा है।

0: ये सब याद आ गए हैं, है ना?
1: बिल्कुल, यही चीज़ तो, ये थी खूबसूरती भी ऐसी चीज़ के लिए पाए पहनी। और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखती हैं कि घर में एक सार्वभौमिक नियम होता है, जो बड़ा है वही दोषी है। लड़ाई चाहे छोटे ने शुरू की हो या बड़े ने, डांट हमेशा बड़े को ही पड़ती है। मम्मी का एक पेटेंट डायलॉग होता है, तुम बड़े हो तुम्हें समझ होनी चाहिए। नतीजा क्या होता है कि बड़ा भाई या बहन बिना गलती के भी सूद दिए जाते हैं, या कम से कम डांट के भागीदार तो बनते ही हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं, ये तो सबको पता है कि भाई बहनों की लड़ाई कोई किले जीतने के लिए नहीं होती, बस मिनट या दो मिनट मामूली सा विवाद, फिर कुछ देर बाद सुलह। अक्सर हम करके हम भाई बहनों की लड़ाई में भी मेरी ही हार होती थी, क्योंकि मेरी दोनों बहनें एक टीम बना लिया करती, उनकी एकजुटता के आगे मैं बिल्कुल भी टिक नहीं पाता था और कुछ ही देर में सरेंडर कर देता था। कुल मिलाकर बहुत मजेदार सुनहरी यादें हैं बचपन की, जो भुलाए नहीं भूलती हैं।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में पिटाई तो भाई की ही होती थी। एक तो हम लड़कियां रोने धोने में माहिर होती हैं, दूसरा मेरे सब भाई मुझसे बड़े थे तो इसका फायदा उठाकर हम विक्टिम कार्ड खेलते थे कि उसके हाथ कितने बड़े हैं, मुझे यहां लग गई, उसने धक्का मुक्की में उसकी धक्का मुक्की में मैं गिर पड़ी क्योंकि मैं तो छोटी हूं, उससे कमजोर हूं। पर बड़े होने के बाद उसी भाई से पक्की वाली ऐसी दोस्ती हुई कि आज भी हमेशा उसके साथ में खड़ी रहती हूं।
0: क्या बात है। चलो एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: हूँ तो भाई आरती देखो पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। जब बहुत भूख लगती है तो कहते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इसमें हमारे साथी क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं कि चूहे दौड़ना मुहावरे का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब हमें बहुत तेज भूख लगी हो। यदि कोई, जैसे यदि कोई व्यक्ति सुबह से बिना कुछ खाए काम कर रहा है और दोपहर तक उसे बहुत जोर की भूख लग जाए तो वो कह सकता है सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है।
1: बिल्कुल।

0: एक हमारी साथी जो लिखती हैं कि पेट में चूहे दौड़ने यानी कि बहुत ज्यादा भूख लगना, हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोलकर खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई, मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई। उस समय हमने जाना कि सच में पेट में चूहे कूदना किसे कहते हैं।
1: बिल्कुल, और ये अक्सर ये चीजें हो ही जाती है ना।
0: बिल्कुल, और एक और हमारे जो साथी लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना, भाई पेट है तो फिर चूहे तो दौड़ेंगे ही ना, अरे भाई उसे राशन पानी चाहिए ना चलने के लिए। इसलिए पेट में भूख का आकलन इस मुहावरे से किया जाता है जिसका अर्थ है कि भूख की तीव्रता को प्रदर्शित करना। और भाई साहब अब तो वास्तव में ही पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसलिए अब तो बस हाँ लीजिए भोजन आ गया, यानी कि वो भोजन कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम सुनते सुनते।
1: बिल्कुल, और हमारे एक साथी लिखते हैं ऐसा तो होता नहीं, ऐसा हो जाए अगर घड़ी भर सोच लो, अगर वास्तव में पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो हमारा क्या हाल होता। वैसे तो ये मुहावरा अत्यधिक भूख लगने पर ही प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा यानी भूख लगने या किसी खास चीज़ का इंतज़ार करने पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि सकी सहेली सुनने के लिए कान में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या बात।
0: जी, तो एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि हम अभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, दिन का समय है और सकी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से मैं बार बार दो तीन बार गुजारिश कर चुका हूं कि घर का खाना बना दें, बना हुआ कुछ खाना खाने को दे दें मुझे, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, परंतु धर्म पत्नी जी मस्त कंबल डालकर एसी कोच में सो रही हैं। और आप ही मेरी धर्म पत्नी से आप सिफारिश कर दीजिए कि मेरे पेट के चूहे थोड़े शांत हो जाए, तो बिल्कुल प्लीज कल उनको खाना दीजिए।
1: हम लोग कह रहे हैं यहाँ से कि आप खाना खिला दीजिए। बिल्कुल, और एक साथी लिखते हैं पेट में चूहे दौड़ना बेहद भूख लगना, हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोले खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई, मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई, और उस समय हमने सच में जाना कि पेट में चूहे कैसे दौड़ते हैं। तो आरती ने इशारा किया कि मैं तो इसको पढ़ चुकी हूँ। चूहे, और एक साथी लिखते हैं कि चूहे के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इस कारण उनकी मजबूरी होती कुछ ना कुछ चबाते रहना। हमारी पेट की अग्नि भी कुछ इसी तरह से होती है, लगातार कुछ ना कुछ हम खाते ही रहते हैं, इसलिए इसे जोड़कर ये मुहावरा बन गया है पेट में चूहे दौड़ना, है ना।
0: और जो एक और मैं श्रोता जो लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना यानी कि बड़ी जोर से भूख लगना, इसके लिए गुजराती मुहावरा भी है कि कड़कड़ी भूख लगी है, भूख न जाने लिखूं पाखूं, ऊंघ न जाने ऊंघ न गने उकरणों। जब भूख लगती तो बनाए हुआ कुछ भी खा लेते हैं और जब नींद आती तो कहीं भी सो जाते हैं।
1: तो चलो एक किसी बात पर एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो आरती देखो, बातें करते करते समय तेजी से आगे बढ़ चला है और समाप्त की ओर हम लोग आ गए हैं। बहुत सारी हमने बातें करी, तो इसमें खास बात यह है कि भाई पेट में चूहे दौड़ने तो समय पर आप खाना खाएं, और प्रकृति की बात करें तो आप पेड़ पौधे लगाएं, जीवन सुखमय बनाएं। और क्या पढ़ना चाहती हो तुम?
1: एक है जो साथी, उन्होंने लिखा है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर विविध भारती ने जो अकेलेपन में साथ दिया है, दिल से आभार प्रकट करती हूँ। पहले रेडियो पर सुनती थी, अब तो मोबाइल में ही डाल दिया है मेरे नाती ने। जब उनकी फीस ज्यादा थी, मैं अब मतलब अब मैं खुश हूँ और सखी सहेली सुनकर घर बैठे अपडेट रहते हैं।
0: क्या बात है, विविध भारती सुनते रहिए और हम लोगों को दीजिए अनुमति। तो आरती श्रीवास्तव और
1: मंजरी वर्मा का प्यार भरा
0: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

पिछले हफ्ते आज ही के दिन आपने सुनी थी आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। चलिए आज इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।

0: नहीं।
1: पत्नी को फिर छोड़ के लखनऊ और बंबई जाना
2: पड़ा। खूब बाली पड़ी।
1: अच्छा,
2: दिमाग खराब हो गया आपका, क्योंकि तू बीवी को छोड़ के जा रहा है। बुरी बात थी कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या मिलता है? सेफ्टी फॉर द फैमिली, पेंशन वाली नौकरी, आर्मी की नौकरी छोड़ के जा रहा है।

0: वो भी दूसरी बार
1: उनको हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक बार हार के आता ना आदमी तो हिम्मत नहीं होती। किसने हिम्मत दी? मेरी सिस्टर पैदा हुई सुमन, पप्पी,
2: उनकी पहली संतान, यानी आप लोगों की सबसे बड़ी बहन।
1: बड़ी बहन सुमन जब पैदा हुई तो 1956, उनको ये था कि मुझे बंबई जाना है, वो उनको आदत थी डायरी लिखने की, तो उन्होंने लिखा था कि मैं बंबई जाना चाहता हूँ, लेकिन बंसी वाले का इशारा नहीं आया। बंसी वाला इशारा करेगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही। इस बार अगर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी तो ये वापस भी नहीं लेंगे, और शादी भी हो गई अभी तो जिम्मेदारी आ गई है, तो बंसी वाले का इशारा होगा मैं तब जाऊंगा।
2: ये इशारा कब हुआ?
1: ये इशारा हुआ 15 मई 1956 व्हेन सुमन वाज बॉर्न। उनको याद आया कि दादी कहती थी, क्योंकि दादी ने बड़ा किया ना, उनको याद आया कि दादी कहती थी कि कुड़ियां पियो के लिए गुड़ लग लांदी है।
2: वाह वाह,
1: मतलब एक जो लड़की आती है ना घर में,
2: पिताजी के लिए नसीब लाती,
1: पिताजी के लिए नसीब लाती है, क्योंकि वो दुर्गा होती है, दुर्गा इज द फाइनल पावर।
2: ये
1: उनको याद आया, उन्होंने कहा ये इशारा मिल गया, अब तू वापस नहीं आएगा।
2: इस बार नौकरी पूरी छोड़ दी। द ईयर वॉज 1956,
1: फिर मुड़ के नहीं देखा पीछे।
2: गजब।
1: मैंने एक बार डैडी को पूछा कि डैड हम लोग चार हैं, दो भाई दो बहन, आपका फेवरेट चाइल्ड कौन सा है? ही सेड पप्पी,
2: सबसे बड़ी बेटी।
1: सबसे बड़ी बेटी। तो आई सेड क्यों, क्यों वो क्यों फेवरेट है, उसने क्या किया जो हमने नहीं किया? ही सेड उसने मेरी गरीबी देखी है। तुम तीनों मेरी अमीरी के बाद पैदा हुए थे, तुम्हें पता ही नहीं गुर्बत क्या होती है।
2: कमाल की बात कही है।
1: ही सेड मैं इसके लिए कंपस बॉक्स भी नहीं ले सकता था।
2: ये नौबत उस लड़की ने देखी है।
1: 13 साल 14 साल।
2: जी जी।
1: तो तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी सेवा करो जिंदगी भर, कुछ भी करो, लेकिन वो जो उसने जिंदगी देखी है तुम ख्वाब में नहीं देख सकते।
2: इतना प्यार था बड़ी बेटी से।
1: आप जिसको डिनाय करोगे ना उसको आप कभी भूलोगे नहीं।
2: बंबई में क्या हुआ जब वो यहाँ आए, कहाँ रहे? और वो
1: अलग अलग गेस्ट हाउस में, अलग अलग,
2: बल्कि एक बार तो रेलवे वेटिंग रूम में लंबे समय तक रहे।
1: हाँ, वो वेटिंग, जब वो पहली बार बंबई आए थे उन्होंने कृष्ण भगवान को एक चिट्ठी लिखी थी, मेरे प्यारे बंसी वाले, उसमें उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा था कि आप देखिए ये बहुत जरूरी है सुनना, आप जानते हो दादागिरी क्या होती है, चाहिए अपने को भाई।
2: हाँ।
1: उन्होंने उस चिट्ठी में क्या लिखा है?
2: जी जी,
1: तो हमने छापी है, आपने ट्रांसलेट किया उसको?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लिखा है मेरे प्यारे बंसी वाले, ये जो सपना है ना, गीत लिखूं, गीत गाऊं, गीत को परफॉर्म करूं, गीत की धुन बनाऊं, ये तूने मेरे आंखों में डाले, अब तू इसको पूरा करेगा।
2: क्या प्यारी बात है यार। वाह वाह वाह वाह वाह।
1: मांगा नहीं है, आप सोचो पूरी दुनिया मांग रही है। अरे मेरे को ये दे दे भाई, मैं इतने ये दे दे तो मैं ये फास्टिंग करूंगा, ये दे दे तो मैं यहाँ चढ़ा। अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात, वो भी चलता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर। लेकिन यहाँ एक आदमी है जो कृष्ण भगवान को बोल रहा है, तूने ये सपना डाला ना मेरे आंख में, अब तू पूरा कर इसको।
2: तो कृष्ण पर उनका इतना ज्यादा विश्वास था, इतनी भक्ति थी कि पर्स में भी कृष्ण होते थे, और कई बार उन्होंने बंसी वाले को चिट्ठियां लिखी।
1: बड़ा नटखट है तू
2: कृष्ण के, नहीं क्या बात है, ये गाना भी बख्शी साहब का।
1: सर वो गाने में एक जो मेरा जो फेवरेट वर्स है ना,
2: हाँ,
1: मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे सोचे समझे वो अपना।
2: वाह,
1: लाइन है, आप सोचो।
2: वाह वाह,
1: क्या क्या नहीं चाहते लोगों से कि मुझे गाड़ी मिल जाए ऐसे, या मुझे ऐसे धंधा मिल जाए, लेकिन यहाँ ये बोल रही है कि मेरा बच्चे का एक, मेरे लिए मेरे बच्चे के लिए एक ही सपना है, इसको जो मिले ना, सोचे यार इसका आज मेरा होता।
2: क्या
1: इससे बड़ी दुआ है क्या दुनिया में?
2: नहीं, नहीं। क्या गजब का ख्याल है।
1: वो गाने में कहीं लिखा कि मेरा बेटा राजा बन जाए, या मेरा बेटा गाड़ी ले ले बड़ी, जो देखे समझे अपना, यार तो मेरे जैसा है, अपना ही जैसा यार।
2: वाह वाह वाह वाह।

0: Joshi saab ko my senior, he was my senior in my job. I was an assistant director. He was the chief assistant director. Shakir Khan. Shakir Khan ne Bakshi saab ka interview liya Subhash ji ke liye. Question Subhash ji ne pucha tha Bakshi saab ko ki Bakshi ji aapko kab lagta hai ki aap fail ho gaye ho as a writer? He said mujhe jabhi bhi mujhe koi bolta hai na ki ye gana maine suna mujhe laga ye Bakshi saab ne likha hai, mujhe laga main fail ho gaya hu.
1: Gazab.
0: Kyunki as a lyricist my voice has to be hidden. Agar meri awaaz lag rahi hai aapko is gaane mein ki ye lafz Bakshi saab ke hain, तो ये वो मेरा फेलियर है
1: क्योंकि वो कैरेक्टर का गाना नहीं लग रहा है.
0: कैरेक्टर गाना नहीं लग रहा.
1: बहुत गहरी बात है.
0: इसलिए वो मिलन फिल्म में वो गाना डिलीट करवाया बख्शी साहब ने. मिलन फिल्म में गाना है नूतन का जो डिलीट किया, लता जी का गाना है. यूट्यूब में आपको उसका वीडियो नहीं मिलेगा कहीं भी. तो मिलन फिल्म लगी, देखी उन्होंने, आज दिल पे कोई जोर
1: जोर चलता नहीं, मुस्कुराने चले थे मगर रो
0: पड़े. तो जब फिल्म देखी प्रीमियर में, बख्शी साहब घबरा गए. गिवन टोल्ड द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को बोला कि ये गाना निकाल दो फिल्म से, फिल्म रिलीज हो गई है, क्यों निकालूं, ये गाना मैंने गलत लिख दिया. कैसे गलत लिख दिया, कितना अच्छा गाना है सर, दैट कैरेक्टर इज अनएजुकेटेड, शी कैन नॉट स्पीक सच हाई लिटरेचर वर्ड्स. प्रोड्यूसर को बोला है सर लिसन टू हिम, ही इज टॉकिंग सेंस.

0: वो सब इंग्लिश में बात करते थे साउथ वाले,
1: साउथ की फिल्म थी।
0: ही वांट्स टू रिमूव द सॉन्ग, ही इज द राइटर ऑफ द फिल्म, व्हाई यू वांट टू रिमूव द सॉन्ग, ही थिंक दिस इज नॉट माय वर्ड्स, दिस आर माय वर्ड्स, दे नॉट द वर्ड्स ऑफ द कैरेक्टर। उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है उस, ये वर्ड्स बोल ही नहीं सकती वो।
1: क्या
0: आज दिल पे कोई
1: जोर चलता नहीं,
0: मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े।

0: एक बार हमारे घर में पार्टी हुई थी, डैडी के दोस्त का बर्थडे था, मिस्टर वीके मेहता, तो बख्शी साहब ने गाना गाना शुरू किया, तो एक लाइन गाए और वीके मेहता साहब ने बोला बख्शी साहब ये बहुत सैड गाना है, इसको मत बजाइए, खुशी का माहौल है। तो बख्शी साहब ने रविंद्र टैगोर को कोट किया, और हमारे घर में डैडी जब तक थे रविंद्र टैगोर की फोटो
1: जी
0: हमारे हॉल में थी, रविंद्र टैगोर की फोटो, ही सेड टैगोर ने कहा है द हैप्पीएस्ट सॉन्ग्स आर द सैड सॉन्ग्स, क्योंकि जब तक आपके आंख से आंसू नहीं निकलेगा यू विल नॉट स्माइल, टियर कम्स फॉर यू टू स्माइल,
1: आंसू जो है वो मुस्कानों के लिए रास्ता बनाते हैं,
0: आंसू मुस्कान के लिए रास्ता बनाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि आंसू मुस्कान का रास्ता है।
1: जब बंबई आए और अलग अलग जगह स्ट्रगल कर रहे थे तो एक टिकट चेकर ने उन्हें पकड़ लिया,
0: अरे कमाल है वो, तो
1: वो कहानी बताइए।
0: जय हो, मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं भूमि अग्नि वायु आकाश जल ईश्वर का नाम लेता हूँ, साथ में चित्रमल जी का नाम लेता हूँ, हमारे पितरों का नाम लेता हूँ, एंसेस्टर्स और चित्रमल जी का। चित्रमल जी कौन है? वेस्टर्न रेलवे टिकट कलेक्टर थे। जब 6 महीने में वो हार गए सेकंड टाइम, पैसे खत्म हो गए, तो वापस उन्होंने सोचा अभी तो वापस जाना पड़ेगा, तो वो मरीन ड्राइव स्टेशन में जाके बैठ गए कि यहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा, दादर जाऊंगा, फिर दादर से सीधा डायरेक्ट फ्रंटियर मेल या पंजाब मेल पकड़ के वापस लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में मैके छोड़ के आए थे मम्मी को और बेटी को, तो वहाँ पर एक टिकट कलेक्टर आया, उन्होंने पकड़ा बख्शी साहब को, बोला टिकट दिखाओ, बोला टिकट नहीं है, फाइन भरो, तो बोला फाइन के लिए पैसे नहीं है, बोले भाई टिकट के पैसे नहीं है, फाइन के भी पैसे नहीं है, कौन हो तुम, क्या करते हो, क्या लिख रहे हो इधर बैठ के, मैं देख रहा हूँ तुमको, मैं 4-5 चक्कर लगाया तुम इधर बैठ के कुछ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बस सुनाओ, बोले मैं कविता लिख रहा हूँ। अच्छा कविता लिख रहे हो, वो कविता का शौकीन था, फिल्मों का शौकीन था, हर गाना मालूम था, आप देखो क्या चमत्कार ईश्वर का, अपना आगरे के रहने वाले, क्या कर रहे हो, बोले मैं गीतकार बनने आया था, वापस जा रहा हूँ, क्यों वापस जा रहे हो, काम नहीं मिला, अच्छा क्या लिख रहे हो उधर, आज क्या लिखा है, सुनाओ, सुनाया, अच्छा कुछ और सुनाओ, वो सुनाया, 3-4 उसने कविता सुनी बख्शी आपकी, बोले तुम वापस मत जाओ, तो बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है रहने के लिए बम्बई में, तुमने जो लिखा है वो जो आज के बड़े बड़े गीतकार है उसके लेवल का है, मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ गाने, मुझे पता है कि आप तुमने ये तुम्हारी बहुत अच्छी लिखा है, मेरे को लगता है कि तुम्हारा हो जाएगा इस शहर में, लेकिन मैं रहूँगा कहाँ, ये तुम मेरे साथ रहो, घर ले गया उनको, 3 साल रखा उसने घर पे
1: बुरीवली में,
0: हाँ पैसे भी नहीं लिए, तो जिंदगी भर मरने तक दम तक पैसे नहीं मांगे बख्शी साहब से।
1: चित्रमल स्वरूप जी बख्शी साहब को अपने घर लेके आए, अब एक आसरा हो गया, यहाँ से स्ट्रगल किया जा सकता था। मैंने सुना है कि वो उनको जेब खर्च भी दिया करते थे,
0: हाँ कभी कभी कुछ 5-10 पैसे या 50 पैसे 25 पैसे दे देते, आज स्ट्रगल करके आके इधर नौकरी काम ढूंढ के आया वो हिसाब से। तो उनका एक बड़ा अच्छी पॉलिसी थी, उनको था कि मैं रोज जब तक 5 लोगों को नहीं मिलूंगा घर नहीं जाऊंगा वापस। एक बार वो फिल्मिस्तान स्टूडियो में उनको मिले, रोशन साहब को, बहुत कोशिश की, रोशन साहब को नहीं, रोशन साहब नहीं मिलते थे, यू वेरी बिग स्टार एट दैट टाइम रोशन,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: 1956। रोशन साहब ने ऐसे ही बोला अच्छा अच्छा ठीक है तुम कल सुबह आ जाओ मेरे घर पे, बोले साहब आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने लिख के दिया लिंकिंग रोड सेंटा क्रूज, लिख के एड्रेस लिख के दिया, तुम कल सुबह 10 बजे आ जाओ, जो तुमने कविता लिखी मैं सुन लूँगा। तो चले गए वापस बोरीवली और ज्वालानगर, तो वहाँ चले गए और जबरदस्त बारिश हुई, जैसे बम्बई में बारिश हुई 2 दिन वैसे, और पूरा पानी भर गया, इतना पानी भर गया कि ट्रेन तो बंद हो जाती थी तब बहुत जल्दी, ट्रेन बंद हो गई और BST बस भी बंद हो गई। अब बोले यार ये तो 10 बजे का टाइम दिया इसने, अभी आर्मी में थे तो उनको आर्मी में जब सुबह ले जाते थे ना मार्चिंग या रनिंग, तुमको पता रहता था कि इतने हमको इतने किलोमीटर इतने टाइम में कवर करने के लिए हमको इतने स्टेप लेने पड़ेंगे, तो उन्होंने कैलकुलेट किया अगर मैं बोरीवली से सेंटा क्रूज लिंकिंग रोड वेस्ट चल के जाऊं तो कितने घंटे लगेंगे, तो वो हिसाब से उन्होंने चलना शुरू किया बरसात में, और रास्ते में छतरी भी टूट गई, बिल्कुल 10 बजे उन्होंने घंटी बजाई, उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो बोले भाई कौन हो तुम, पूरे अजीब सा आदमी, पूरा गीला, कपड़े गीले, किताब गीली, ऐसे खड़ा है, बोला मुझे साहब ने, सर ने बुलाया, रोशन सर ने बुलाया। अच्छा ठीक है, रोशन साहब आए, बोला अरे भाई क्या हो गया, आपने मुझे बुलाया था,
1: पागल हो गया,
0: बरसात में क्यों आए तुम, इसे आपने मुझे बोला था ना आने के लिए, आप मेरा गाना सुनेंगे, इसे हाँ लेकिन इतना जरूरी नहीं था।
1: हाँ उन्होंने कहा बख्शी तुम पागल हो क्या,
0: हाँ तुम पागल हो क्या तुम, इसे सर आपके लिए जरूरी नहीं था, मेरे लिए जरूरी था,
1: क्या बात है,
0: एकदम चौंक गया हुआ आदमी, उसको लगा के सारे ये तो अलग ही आदमी है, उसने टोलिया दिया, पहले सुखा किया, चाय पिलाई, बोला अच्छा सुनाओ, उन्होंने उनको बेदाग फिल्म में गाने दिए।
1: वाह वाह वाह वाह, यहाँ से शुरू होता है
0: कि गाने क्यों जरूरी हैं।
1: जी
0: ये जो किस्सा है क्यों जरूरी है उनकी जिंदगी के लिए, क्योंकि उनकी भला आदमी फिल्म फ्लॉप हो गई थी, फ्लॉप आदमी को काम नहीं मिलता। हमारी इंडस्ट्री में चढ़ते सूरज को सलाम है, रोशन साहब ने उनको जो लिया ना फिल्म में, सबको पता चल गया इंडस्ट्री में कि यार ये कौन है, तो उनको काम मिलना शुरू हुआ।
1: सोचिए कि शकील के नगमे थे तो उसमें बख्शी साहब को बीच में
0: मौका मिला। राजेश रोशन हमारे घर आए 1970 में जूली फिल्म के गाने लिखवाने, तो राजेश रोशन की ये लफ्ज है, कभी आप उनको मिलेंगे तो पूछना कि तुम्हारे डैडी ने मुझे बोला था कि तेरे लिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तू रोशन का बेटा है, तेरे फादर ने मुझे सेकंड चांस दिया था इंडस्ट्री में।
1: वाह वाह।
0: और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने भूल गया सब कुछ, कुछ दो तीन हफ्ते लिए गाना लिखने में, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते। बोला मैं पक गया, मेरे को लगा बख्शी साहब गाना लिखना भूल गए, लेकिन जब बख्शी साहब ने मुझे गाने दिए, अनफॉरगेटेबल सॉन्ग दिए मुझे जूली में, और इतनी मेहनत की बख्शी साहब ने मेरे लिए कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, कि बिकॉज आई वॉज रोशन सन,
1: कितनी
0: इतना बड़ा काम किया होगा रोशन साहब ने ये आदमी के लिए कि ये 15-15 दिन ले रहा है गाना लिखने के लिए, जो तो आधे घंटे में लिख देता है।
1: रोशन साहब के लिए बख्शी साहब ने लिखा, आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का।
0: दे वर द लास्ट फिल्म टुगेदर
1: जी।

0: वो अलग ही मिट्टी के लोग थे।
1: बिल्कुल,
0: ये वो मिट्टी है जो बाढ़ में बहती नहीं है, नदी को पकड़ के रखती है, ये वो मिट्टी के लोग हैं।
1: जो पहला गाना था भला आदमी का, वो कैसे मिला था?
0: आई टोल्ड यू नो बख्शी आपका क्या था, मैं जब तक 5 लोगों को अपना ऑफर नहीं दूंगा, मैं कौन हूँ क्या हूँ, इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, काम नहीं मांगूंगा, मैं अब घर नहीं जाऊंगा, तो वो रंजीत स्टूडियो चले गए। उस दिनों में सारी फिल्में स्टूडियो में बनती थी, आउटडोर बहुत कम लोग जाते थे, वो गए गाने के लिए आउटडोर जाते थे, महाबलेश्वर चले गए या किधर इधर नेशनल पार्क चले गए, बोरीवली नेशनल पार्क, रंजीत स्टूडियो गए और वहां पर उनका जो चौकीदार था ना बख्शी साहब वॉज वेरी क्लेवर। अच्छा, उनको पता था कि फिल्म स्थान में ऐसे जाओ तो भगा देते हैं, तो क्या करते थे, फिल्म स्थान के बाहर जाते थे और वहां से टैक्सी लेते थे
1: साहब की तरह।
0: तो सीधा अगर पैदल जाओ सारा स्ट्रगल आ गया, स्ट्रगल निकाल साले स्ट्रगलर को। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता चला कि अंदर साहब बैठे हैं और बहुत परेशान है क्योंकि उनका लिरिसिस्ट नहीं आया। तो बोला अच्छा नहीं आया, घुस गए अंदर, भगवंत दादा के रूम में चले गए, कौन है भाई तुम, क्या कर रहा है इधर तुम? इसे मैं फौजी हूँ और मैं गाने लिखता हूँ। फौजी की बहुत इज्जत थी, फौजी हो गाने लिखते हो, अच्छा क्या लिखते हो बताओ, सुनाओ कुछ। कुछ सुनाया तो बोला अच्छा ठीक है, मेरे को 4 गाने चाहिए, कहानी सुन लो और तुम 8-10 दिन में वापस आ जाओ, एक गाना लिख के ले आओ, चाहिए मुझे 4 गाने, एक गाना लिख के ले आओ। बख्शी साहब अगले दिन पहुंच गए वापस, बोला क्या हुआ भाई, बोला सब रेडी है, आपने बोला था ना गाना लिखने के लिए, हाँ लिख के ले, हाँ लिख के ले, सुनाओ। सुनाया धरती के लाल ना कर इतना मलाल, पता ऐसे कोई जो लव वर्ड्स हैं उसके गाने के, को बहुत पसंद आया, बड़े वाह तो बाकी कितने गाने लिखो, इसी से लिख के लाया,
1: अरे कैसे लाया,
0: तीनों का चारों गाने लिख के लाया, चारों गाने लिख दिए तुमने
1: जी,
0: हाँ सुनाओ, सुने रिकॉर्डिंग होगी उसकी,
1: वाह वाह,
0: 1 महीने में 4 गानों की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वो मिट्टी है जो बाढ़ भी आया ना तो नदी को बाहर ही निकल लेने देंगे, ये वो मिट्टी के लोग।
1: इस तरह उनको पहला चांस मिला था।
0: हम क्यों करें चिंता, उनको चिंता हमारी है।

0: और यही हुआ कि उन्होंने भला आदमी के गाने लिखे, फिर रोशन साहब से मिले, बेदाग के गाने लिखे, और उसके बाद कल्याण जी आनंद जी से उनकी मुलाकात हुई और मेहंदी लगी मेरे हाथ फिल्म मिली,
1: पहली हिट थी
0: जी,
1: पहली हिट फिल्म जिसमें सारे गाने उनके थे। उससे पहले एक और हिट थी चांद सी महबूबा,
0: हाँ,
1: सारे गाने बख्शी आपके नहीं थे लेकिन
0: एक दो गाने थे,
1: हाँ,
0: हिमालय की गोद में,
1: हाँ, लेकिन ये गाना बहुत चला था
0: जी,
1: जबरदस्त चला था ये गाना। मनोज कुमार जी टोल्ड मी ये मेरा फेवरेट गाना है मेरी जिंदगी का।

0: लेकिन जो पहली फिल्म जिसमें सारे गाने अनंत बख्शी के थे जो चली थी वो थी मेहंदी लगी मेरे हाथ,
1: और वो भी कल्याण जी आनंद जी भाई ने उनको मौका दिया था।
0: और उसके बाद उनकी एक फिल्म चली थी जब जब फूल खिले, सुपर हिट। उसके बाद मिलन आई
1: जी,
0: सुपर डुपर हिट। के बाद आराधना आई, आराधना ने बख्शी साहब को ब्रह्म लोक में पहुंचा दिया जिसमें वो 2002 से उतरे।
2: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू।

0: 6 बजे 7 बजे उठ जाते थे लिखते लिखते। हम स्कूल जाते थे और गाने लिख रहे हैं, वापस आओ गाने लिख रहे हैं
1: सोफे के सामने जमीन पे बैठ के।
0: जमीन पे बैठ के कोई नखरा नहीं।
1: कहीं कभी कोई होटल में गोवा भेज दो, रिजॉर्ट में भेज दो।
0: मेरे प्रोड्यूसर मेरे से बहुत खुश हैं। ऐसा क्यों खुश हैं? आपकी फिल्में चलती है नहीं, उनका पैसा बचता है। ऐसा क्यों पैसा बचता है? इसे क्योंकि मैं होटल रूम नहीं मांगता ना, तो मैं बोलता हूँ मुझे लोनावला ले चलो। तुम लोग सब लड़ रहे हो, मैं तू इस लड़ाई के बीच में बैठ के
1: गाने लिख रहा
0: हूँ। लेकर कुकर की सीटी बज रही है, पोस्टमैन आ गया है उसका पैसा देना है, बनिया आ गया है उसका सामान लेना है, उसके बीच में मैं गाने लिख रहा हूँ, प्रोड्यूसर का पैसा बचता है। आई एम वेरी एफिशिएंट फॉर माय प्रोड्यूसर, क्योंकि उनका एक बहुत सिंपल फिलॉसफी था कि बेटा ये धंधा है, मेरे लिए मेरा शौक है और मेरा घर चलता है इससे, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए धंधा है। इफ आई डू नॉट सेटिस्फाई द बायर ऑफ माई गुड्स, वाई विल ही बाय माई गुड्स अगेन? मैं 50 अंतर लिख के देता हूँ क्योंकि कोई और नहीं करता ये सब। तो वो जब मेरे पास आते हैं, उनको पता है कि पैसे उतने ही लेगा लेकिन बाकी उनसे ज्यादा लिख के देता है, इतने पैसों में इतना ही मिलेगा नहीं बोलता है। सो ही वॉज अ फैंटास्टिक मार्केटिंग एजेंट फॉर हिमसेल्फ, बट नॉट मार्केटिंग बाय सेइंग आई एम ग्रेट, बाय गिविंग यू मोर देन यू आस्क्ड फॉर।
1: बहुत काम करते थे।
0: हाँ,
1: मेहनत बहुत।
0: तुमने 3 मांगा ना, 31 लेके जा भाई।
1: मेरी बहुत सारे संगीतकारों से बात हुई जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि बख्शी साहब को कोई गाना लिखने को कहा जाए तो जहां दूसरे गीतकार 3-4-5 अंतरे लिखते थे वहां बख्शी साहब 30-30 अंतरे लिख के देते थे।
0: जब हम जवान होंगे जाने कहां होंगे 59 अंतरस।
1: अरे बाप रे, 59।
0: इसे कि ये सरस्वती है, ये बहर ही है, इसको बहने दो, रुको मत, क्योंकि इसके पैसे इतने मिलेंगे तो नाराज हो जाएगी कि तुमने मुझे बहने नहीं दिया। हम सोचते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, उसको दबा के रख देते हैं कबर के अंदर, वो घूमने आई है, उसको निकालना पड़ेगा, घुमाने लेकर जाना पड़ेगा आपको। धरती से जुड़ा हुआ कॉमन सेंस जो आपको हार्वर्ड में नहीं सिखाया गया है।
1: जी जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात की जाए कि उनसे बहुत लंबा रिश्ता रहा।
0: मुझे के नैयर साहब ने बताया था
1: जी,
0: जर्नलिस्ट, कि उन्होंने इंटरव्यू लिया था बख्शी साहब का और उसमें कहा था कि मेरे ख्याल में लक्ष्मी जी का इंटरव्यू लिया था, तो लक्ष्मी ने कहा था कि बख्शी साहब मुझे काफी बार फोन करते थे कि सुन मैंने क्या लिखा है मुखड़ा, तो मुझे जब भी मुखड़ा पसंद आता था मैं कहता था बख्शी जी अच्छा लिखा है, लॉन्ग ड्राइव पे चले? बोला आ जाओ। लॉन्ग ड्राइव क्या था? वो जू से निकलते थे पारसवाणी से, 10th रोड बैंटर आते थे पेरी क्रॉस रोड, अपनी गाड़ी में बख्शी साहब को पेरी क्रॉस रोड से लेते थे और ये लोग जाते थे बर्ली सी फेस।
1: अच्छा, और आगे निकल जाते थे?
0: हाँ, बर्ली सी फेस में जाके वहां बैठ के गाना पूरा कंप्लीट करके वापस आते थे।
1: अरे,
0: उसका कोड वर्ड था लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव फॉर आन बख्शी वॉज, इसको मेरा मुखड़ा पसंद आ गया है और इसको धुन दिख रही है इसमें।
1: हाँ, तो सब लोग समंदर के किनारे बैठेंगे और उस गाने पर काम करेंगे
0: गाड़ी के अंदर ही बैठ के।
1: जी,
0: वो अपना पान खाएंगे और गाना कंप्लीट करके आ जाते, उसको कहते थे लॉन्ग ड्राइव।
1: ये बड़ी पुरानी दोस्ती रही लक्ष्मी प्यारे और आनंद बख्शी की।
0: यस यस,
1: जब वो स्ट्रगल कर रहे थे,
0: जब उन्होंने मिलन की कहानी सुनी, साउथ इंडियन फिल्म की कहानी सुनी, तो एक पान वाले के बाहर खड़े थे फिल्म सेंटर, बहुत एकदम सीरियस हो गए थे बख्शी साहब। प्यारे जी ने पूछा, प्यारे जी ने मुझे एक कहानी बताई थी कि बख्शी जी क्या हो गया आपको, इतना सीरियस हो गए आप? बोले हाँ यार, एकदम इमोशनल हो गया हूँ कहानी सुन के। और उन्होंने ये लाइन कही थी प्यारे जी को, समा ये सुहाना मैं खुश हूं मेरे पास, क्या वो गाना मिलन का,
1: मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे ना जाना, मुबारक हो तुमको समा ये सुहाना।
0: ही सेड मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी इमोशनल फिल्म में हम तीनों साथ काम कर रहे हैं। आई एम ग्लैड दैट माई पार्टनर्स इन द सॉन्ग्स आर यू बोथ, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड द इमोशन दैट वी हैव जस्ट

0: एक्सपीरियंस एंड कम। तो उन्होंने ये लाइन कही थी कि मुबारक हो सबको, समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसू पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। और ये इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट टू एलपी, ये मुझे प्यारी जी ने बताया था कि हमारे लिए बख्शी साहब ने हमको कॉम्प्लीमेंट दिया था कि देखो ये इतनी ज़रूरी फिल्म, इतनी इमोशनल फिल्म में तुम दोनों मेरे साथ हो, कमाल करेंगे हम साथ में।
1: मुबारक हो सबको, समाए सुहाना।

0: क्यों बख्शी साहब के जबान से उन्होंने कहा है, उनकी मेरे पास कोट्स हैं मैगजीन के, कि मैंने जिंदगी में काम हमेशा मांगा, जिसको भी मिला मैंने काम मांगा, आराधना तक। आराधना के बाद मुझे ईश्वर ने ऐसी जगह पहुंचा दिया, मैंने कभी किसी से काम मांगा नहीं, क्योंकि जब मुझे मौका मिला काम मांगने का, मुझे लगा अगर मैं किसी से काम मांगूंगा वो मेरे नाम पे काम दे देगा तो मैं किसी और का काम छीन लूंगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मैं एक 70 रुपये का सिपाही था, आज एक फिल्म के 70,000 मिलते हैं मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक फिल्म का 70,000 रुपये मिलेगा, तो मैं क्यों मांगू किसी से काम, किसी और के घर की लक्ष्मी मैं कितनी छीनना नहीं चाहता, मुझे जो है बहुत दिया मुझे ईश्वर ने।
1: मिलन फिल्म के गानों की बात हो रही है, एक रेल यात्रा वाला किस्सा है जिसमें हाँ। बख्शी साहब दिल्ली जा रहे हैं और
0: हाँ, तो उनको लोग बोलते थे अरे बख्शी साहब क्या फैंटास्टिक, आप तो ये अराइव्ड है, नो जो इंग्लिश में बोलते हैं ये अराइव्ड, हिंदी में क्या उसका मुहावरा है
1: कि कामयाब हो गए भाई आपका,
0: तो बड़े कामयाब हो गए आप तो यार, फिल्म पे फिल्म मिल रही है, गानों पे गाने मिल रहे हैं, तो मिस्टर रमेश शेट्टी नो के नहीं, क्योंकि क्या है कि एक बार वो सिर में चढ़ जाए ना तो आप गीत लिखना भूल जाएंगे, क्योंकि अभी आपको है कि अभी मैं तो बड़ा कामयाब हो गया हूँ यार, मुझे क्या मेहनत करने की क्या जरूरत है, तो वो हमेशा हर तारीफ को डिफ्लेक्ट करते थे कि साला ये मेरे को, ये अगर तारीफ चिटक गई तो मैं गया खत्म हो जाऊंगा, उनको उनको ये था सरस्वती नाराज हो जाएगी, अगर मैंने ये सब क्रेडिट लेना शुरू कर लिया ना तो ये भाग जाएगी सरस्वती, चुप बैठो रिफ्लेक्ट करो, RD पे डाल दो, LP पे डाल दो, राजेश खन्ना पे डाल दो, राजेश खन्ना ने गाया इसलिए हुआ, हमेशा करते थे वो, डायरेक्टर पर डाल दो, राइटर पर डाल दो, अच्छी कहानी सुनाई तो हुआ, तो वो ही वॉज ट्रैवलिंग बाय फ्रंटियर मेल और पंजाब मेल, वो रात का वक्त था और एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप में गाड़ी रुक गई क्योंकि सिग्नल नहीं था रेड का, तो बड़ा अजीब सा एक स्टॉप था जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, पूरा स्टेशन काला था, और एक फकीर लेट राइट उसने आग जलाई हुई थी छोटी सी आग, और उस आग के रोशनी से अपना वो तानपुरा बजा रहा था और ये गाना गा रहा था, ये मिलन फिल्म का आई थिंक सावन का महीना पवन करे सोर, वो फकीर गा रहा था
1: जी,
0: और तब बख्शी आपको लगा यार ये ऐसा जगह है, ये ऐसी जगह ट्रेन रुकी है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब यहाँ गाना सुनने के लिए आपको बैटरी खरीदनी पड़ेगी, लाइट नहीं है, आपको बाहर जाके दुकान से बैटरी खरीदनी पड़ेगी, आप उसको डालोगे तब वो चलेगा, और इस गांव में अगर मेरा गाना एक गरीब से गरीब फकीर गा रहा है, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां भी मेरा गाना पहुंच गया है,
1: वाह
0: बख्शी, बस जो लोग कह रहे ना वो सच है,
1: इसको कहते हैं कामयाबी,
0: तो कामयाब हो गया है।
2: सावन का महीना पवन करे सो

0: जरूर।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जिया।

बख्शी साहब की सक्सेस है ना, अरे यार सिंपल वर्ड्स में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, इसका जो क्रेडिट है ना इट गोज टू शैलेंद्र, क्योंकि शैलेंद्र ने जब बख्शी साहब को सुना, शुरू से सुनते रहे थे,

0: और लोग आपके गानों को सिर्फ पसंद ना करें, उसको गाएं भी। तुम उर्दू में मत लिखा करो, तुम सरल हिंदुस्तानी में लिखा करो जैसे मैं लिखता हूं।
1: ये
0: एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज फर्ज। मस्त बहारों का मैं आशिक, जो मैं चाहे या करूं।
2: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से

का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

0: और फर्जी इतनी बड़ी हिट थी, इतनी बड़ी हिट थी वो फिल्म अक्रॉस इंडिया कि सर यार शैलेंद्र ने सही बोला था, अब तो मैं ये स्टाइल से लिखूंगा। उसके बाद गाने आए, अच्छा तो हम चलते हैं। वो गाने कहां से आए? शैलेंद्र की एडवाइस थी कि सरल हिंदुस्तानी में बातचीत की भाषा में लिखो। सो लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर आनंद बख्शी सक्सेस गोज टू शैलेंद्र जी।
1: कामयाबी का एक पक्का रास्ता।

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और यादें आपने बांटी, शुक्रिया।
2: थैंक यू।
1: गीतकार आनंद बख्शी की याद में उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो।
4: मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
5: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जन कल्याण को गति देने के लिए लगभग 2,480 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए चर्चा जारी की। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष जांच और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय के कई अंतरिम निर्देश जारी किए। तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद सयानी घोष ने पहली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की बैठक मंगल मिशन में भाग लिया। बैठक के बाद संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में सयानी घोष ने इस बैठक को ज्ञानवर्धक बताया और सरकार ने 10 और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट लाने के रिजर्व बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दी और सरकार ने 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युवाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

श्रोताओं, घड़ी में बज गए हैं शाम के 5:02 और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त महिमा सक्सेना। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाओं की वाणी युववाणी में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारी सेहत से जुड़ा है और जिसके बारे में जागरूक होना बेहद जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस की, जो हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस

ने लीवर से जुड़ी एक गंभीर बीमारी। दोस्तों, हम लोगों में से ज्यादातर लोग तब तक डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं जब तक कोई परेशानी बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। थोड़ी थकान हो, कमजोरी लगे या भूख कम लगे तो हम अक्सर इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार शरीर के ये छोटे छोटे संकेत हमें किसी बड़ी परेशानी के बारे में बता रहे होते हैं। इसीलिए किसी भी बीमारी के बारे में सही जानकारी होना और समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस मुख्य रूप से हमारे लीवर को प्रभावित करता है। हमारा लीवर शरीर के बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, इसीलिए उसका स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है। हेपेटाइटिस के कई प्रकार होते हैं और इसके लक्षण हर व्यक्ति में एक जैसे नहीं होते। कई बार तो शुरुआत में कोई खास लक्षण दिखाई भी नहीं देता, इसीलिए जागरूकता और समय पर जांच करवाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वच्छता का ध्यान रखना, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करना और किसी भी स्वास्थ्य समस्या को लंबे समय तक नजरअंदाज ना करना, ये छोटी छोटी सावधानियां हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अपनी सेहत के लिए जागरूक होना डरने की बात नहीं बल्कि समझदारी की बात है, इसलिए खुद भी जागरूक रहें और अपने परिवार को भी जागरूक करें, क्योंकि सेहत को लेकर की गई थोड़ी सी सावधानी आने वाली बड़ी परेशानी से बच सकती है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, जागरूक रहिए और स्वस्थ रहिए। दोस्तों, अब बातों का यह सिलसिला यहीं थामते हैं और अब कुछ पल संगीत के नाम करते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का पहला खूबसूरत फिल्मी गीत, फिल्म मौसम से राहत फतेह अली खान की आवाज में।

धरती की गोद में पलते हैं हम, हवा से सांसें लेते हैं हम, प्रकृति ने दिया है जीवन हमें, क्या उसके लिए कुछ कर सकते हैं हम? दोस्तों जरा सोचिए, अगर हमारे आसपास पेड़ ना हो, हवा में ताजगी ना हो, पानी साफ ना हो और गर्मी हर साल पहले से ज्यादा पड़ती जाए तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? शायद इस सवाल का जवाब सोचकर ही हमें समझ आ जाए कि प्रकृति हमारे लिए कितनी जरूरी है। हम रोज प्रकृति से कुछ ना कुछ लेते हैं, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और जीवन के लिए जरूरी संसाधन, लेकिन बदले में हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं? ये सवाल आज हम सभी को खुद से पूछने की जरूरत है। इसी जिम्मेदारी और जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आज पेड़ों की कटाई, प्रदूषण, पानी की बर्बादी और प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल प्रकृति के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं, लेकिन बदलाव की शुरुआत हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से कर सकते हैं। पानी को बेवजह बर्बाद ना करें, पेड़ पौधों की देखभाल करें, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। ये काम छोटे जरूर लगते हैं, लेकिन जब बहुत से लोग मिलकर इन्हें अपनाते हैं तो बड़ा बदलाव आता है। और युवाओं की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि युवा सिर्फ बदलाव की बात नहीं करते बल्कि बदलाव की शुरुआत भी कर सकते हैं। दोस्तों प्रकृति हमें सिर्फ आज के लिए नहीं मिली है, इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रकृति सुरक्षित होगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। श्रोताओं आप सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फिल्मी गीत, फिल्म एक था टाइगर से। इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है तरन्नुम मलिक ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं विरासत का संरक्षण, समृद्धि के सृजन विषय पर। भारत अपनी समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा और कुशल कारीगरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हथकरघा बुनाई और लकड़ी की नक्काशी से लेकर कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन, चमड़े का काम, धातु शिल्प और पारंपरिक चित्रकला तक, ये शिल्प मात्र उत्पाद नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। पीढ़ियों से अनगिनत परिवार अपनी आजीविका के लिए इन पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर रहे हैं। हालांकि किफायती ऋण की सीमित उपलब्धता, पुराने उपकरणों और संस्थागत समर्थन के अभाव के कारण कई कारीगरों को आज भी वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने कई कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम NMDFC की विरासत योजना है। विरासत योजना अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, ताकि वे अपनी पारंपरिक कलाओं को संरक्षित कर सके और साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके। विरासत नाम ही इस योजना के उद्देश्य को दर्शाता है, जो भारत की समृद्ध कलात्मक परंपराओं की रक्षा करने के साथ साथ कारीगरों को बेहतर भविष्य बनाने में मदद करना है। आर्थिक तंगी के कारण इन बहुमूल्य कौशलों को लुप्त होने देने के बजाय ये योजना कारीगरों को अपने काम को आधुनिक बनाने, उत्पादन बढ़ाने और आज के बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये योजना मुख्य रूप से भारत के 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी कारीगरों को लक्षित करती है। ये उन व्यक्तियों और परिवारों के लिए है जो पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए हैं और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय NMDFC द्वारा निर्धारित पात्रता सीमा के भीतर आती है। इस पहल के माध्यम से वित्तीय सहायता उन लोगों तक पहुंचती है जिन्हें अपनी आजीविका को बढ़ाने या मजबूत करने के लिए वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। विरासत योजना की सबसे बड़ी खूबियों में से ये एक है कि ये रियायती ब्याज दरों पर किफायती ऋण प्रदान करती है। पात्र कारीगर अपनी आवश्यकताओं और पात्रता के आधार पर 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस वित्तीय सहायता का उपयोग विभिन्न उत्पादक कार्यों के लिए किया जा सकता है। कारीगर कच्चे माल, आधुनिक औजार, मशीनरी या अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक उपकरण खरीद सकते हैं। वे ऋण का उपयोग अपनी कार्यशालाओं का विस्तार करने, कार्य परिस्थितियों में सुधार करने, दैनिक व्यावसायिक खर्चों को पूरा करने या बेहतर उत्पादन तकनीकों को अपनाने के लिए भी कर सकते हैं। इस तरह के निवेश कारीगरों को महंगे निजी साहूकारों पर निर्भर हुए बिना उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर आय अर्जित करने में मदद करते हैं। इस योजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी सरल और उधारकर्ता के अनुकूल पुनर्भुगतान संरचना है। कई छोटे कारीगर ऋण लेने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि वे ऋण तुरंत चुकाने में सक्षम नहीं होंगे। इन चिंताओं को समझते हुए NMDFC ने लचीली पुनर्भुगतान व्यवस्थाओं के साथ विरासत योजना तैयार की है। लाभार्थियों को पुनर्भुगतान शुरू होने से पहले 6 महीने की मोहलत मिलती है, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने या विस्तार करने और आय अर्जित करना शुरू करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इस अवधि के बाद ऋण को 5 वर्षों की अवधि में आसान किस्तों में चुकाया जा सकता है, क्योंकि ऋण पर साधारण ब्याज की रियायती दरें लागू होती है। इसीलिए कुल वित्तीय बोझ कई अन्य व्यावसायिक ऋणों की तुलना में काफी कम रहता है। ऋण विकल्प हैं, इससे ये योजना व्यावहारिक और सुलभ बन जाती है। यहाँ तक कि सीमित वित्तीय संसाधनों वाले छोटे कारीगरों के लिए भी विरासत योजना का विशेष ध्यान महिला कारीगरों को सशक्त बनाने और प्रोत्साहित करने पर है। पूरे भारत में हजारों महिलाएं कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, हथकरघा उत्पादन, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण जैसे पारंपरिक शिल्पों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। फिर भी उनमें से कई को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की उद्यमिता

और वित्तीय स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए एनएमडीएफसी महिला लाभार्थियों को 1% की अतिरिक्त ब्याज छूट प्रदान करता है। इस योजना के तहत महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है, जिससे उनके लिए अपना व्यवसाय स्थापित करना या उसका विस्तार करना आसान हो जाता है। ये विशेष प्रावधान भारत के पारंपरिक शिल्पों को संरक्षित करने और साथ ही उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। विरासत योजना का एक और महत्वपूर्ण योगदान वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। कई कारीगर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं और अक्सर वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करते हैं, क्योंकि उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता या औपचारिक वित्तीय रिकॉर्ड नहीं होते। एनएमडीएफसी के माध्यम से इन कारीगरों को किफायती दरों पर संस्थागत ऋण प्राप्त होता है। इससे अनौपचारिक साहूकारों पर उनकी निर्भरता कम होती है और परिवार दीर्घकालिक ऋण के जाल में फंसने से बचते हैं। ये योजना भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी योगदान देती है। हर पारंपरिक शिल्प में पीढ़ियों का ज्ञान, रचनात्मकता और सांस्कृतिक पहचान समाहित होती है। जब कारीगरों को वित्तीय सहायता मिलती है तो ये आजीविका के अन्य साधनों की तलाश में इसे छोड़ने के बजाय अपने शिल्प को जारी रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होते हैं। बेहतर विकल्प, बेहतर उपकरण, बढ़ी हुई कार्यशैली, संस्थागत वित्त तक पहुंच, उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन बढ़ाने और नए बाजारों में प्रवेश करने में सक्षम बनाती है। जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ता है, वे अक्सर अपने समुदाय के परिवार के सदस्यों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम होते हैं, जिससे पारंपरिक कौशल पीढ़ियों तक जीवित रहने में मदद मिलती है। ये योजना समावेशी विकास के प्रति भारत सरकार के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि आर्थिक विकास हाशिए पर पड़े समुदायों तक पहुंचे और उनके पारंपरिक व्यवसायों पर कोई असर न पड़े। सदियों पुरानी शिल्प कलाओं को आधुनिक उद्योगों से प्रतिस्थापित करने के बजाय विरासत योजना कारीगरों को उनके पारंपरिक कौशल को समकालीन बाजारों के अनुकूल ढालने में सहायता करती है। ये न केवल व्यक्तिगत आजीविका को मजबूत करती है, बल्कि भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा भी करती है। विरासत योजना महज वित्त सहायता कार्यक्रम से कहीं अधिक है। ये एक ऐसा पहल है जो आर्थिक सशक्तिकरण को सांस्कृतिक संरक्षण के साथ जोड़ती है। किफायती ऋण, लचीले पुनर्भुगतान विकल्प और महिला कारीगरों के लिए विशेष रियायतें प्रदान करके ये योजना हजारों अल्पसंख्यक शिल्पकारों को अपनी आय बढ़ाने और साथ ही सम्मानपूर्वक अपने पारंपरिक कौशल का अभ्यास जारी रखने में सक्षम बनाती है। भारत जैसे जैसे समावेशी और सतत विकास की ओर बढ़ रहा है, विरासत योजना जैसे पहले यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश की समृद्ध कलात्मक विरासत फलती फूलती रहे और इन परंपराओं को जीवित रखने वाले कारीगरों का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो। श्रोताओं, सुनते हैं अगला फिल्मी गीत फिल्म टशन से उदित नारायण की आवाज में।

उंगलियों पर सिमट गई है आज दुनिया सारी, स्क्रीन की रोशनी में खो गई है शाम हमारी। तकनीक ने जिंदगी को आसान तो बना दिया, बस खुद के लिए वक्त निकालना है अभी बाकी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम मोबाइल को सिर्फ कुछ मिनट देखने के लिए उठाते हैं, लेकिन जब उसे नीचे रखते हैं तो एक घंटा बीत चुका होता है। कभी किसी नोटिफिकेशन के लिए, कभी किसी वीडियो के लिए, और कभी बिना किसी खास वजह के हमारा काफी समय स्क्रीन पर बीत जाता है। तकनीक हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सुविधा धीरे धीरे हमारी आदत बनती जा रही है? जब जरूरत से ज्यादा समय डिजिटल दुनिया में बीतने लगे तो थोड़ा रुक कर सोचना जरूरी है कि तकनीक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं या तकनीक हमारे समय का इस्तेमाल कर रही है। इसी सोच के साथ डिजिटल मिनिमलिज्म हमें तकनीक का इस्तेमाल समझदारी से करने की बात करता है। इसका मतलब मोबाइल और इंटरनेट को छोड़ देना नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल उतना ही करना है जितना हमारे लिए जरूरी हो। अगर हम गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद करें, मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत के समय करें और कुछ समय स्क्रीन से दूर रहें, तो वही समय परिवार, दोस्तों, अपने शौक और खुद के लिए दिया जा सकता है। खासकर युवाओं के लिए ये संतुलन बहुत जरूरी है। डिजिटल दुनिया सीखने और आगे बढ़ने का शानदार माध्यम है, लेकिन हमारी असली जिंदगी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है। तो दोस्तों, याद रखिए, तकनीक से दूर भागने की जरूरत नहीं है, बस इतना जरूरी है कि तकनीक हमारी जिंदगी को आसान बनाए, हमारी जिंदगी को अपने हिसाब से ना चलाए, मोबाइल हमारे हाथ में रहे, हमारी जिंदगी मोबाइल के हाथ में ना रहे। तो चलिए फिर डिजिटल दुनिया से थोड़ा सा ब्रेक लेकर चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा फिल्म 30 मार खां से अभिजीत सावंत और प्रजक्ता शुक्रे की आवाज में।

श्रोताओं, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बातों का सिलसिला अब यहीं थामते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नई बातें और नए विचार लेकर। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त यानी मुझे महिमा सक्सेना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी भोपाल के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी
1: का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहली गजल।

0: चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे। कलाम था डॉक्टर बशीर बद्र का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: चलती हूँ मम्मा पापा।
4: जा बेटी, पर इस सर्दी में तेरा ख्याल कौन रखेगा?
3: सर्दी में इसका ख्याल रखेगी ये
5: 287 मेरी चाय। थैंक यू मम्मा, एक पैकेट और रख दो।
3: 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गजल।

0: परवेज मेहंदी की आवाज़ में ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे। कलाम था इफ्तिखार आरिफ का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये अगली और अंतिम गजल।

फैज़ अहमद फैज़ का लिखा हुआ कलाम अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ थी मेहंदी हसन की। इसी गज़ल के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 MHz पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार और उसके पश्चात सुनिएगा वेद भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हाल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 70 अंक गिरकर 76,766 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंक कम होकर 23,985 पर आ गया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। चीन के हांगझोउ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए, जिसे आवाज दे रहे हैं किशोर कुमार, आशा भोसले और साथी। फिल्म का नाम प्रेम नगर।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
5: मुकेश के गानों में है सादगी।
4: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
5: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
4: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
5: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
4: जाऊं कहां बताए दिल।
5: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
4: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
5: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

नाराज ये नाम है फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाज कुमार सानू की, गीत कतील शफाई का और संगीत अनु मलिक का।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
7: देखो जी बहार आई,
6: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
8: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
6: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
9: तुम्हारी याद सताती है।
6: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
10: आनंद मिलन के संगीत निर्देशन में अब सुनिए समीर का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की फिल्म का नाम वंश।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। अब सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सदाबहार गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला नगमा।

0: सुना है ना इस फिल्म से, यह गीत अभी आपने सुना। स्वर था हेमलता का, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770-43-22-97।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गीत।

प्यासा सावन, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। गीत के बोल लिखे थे संतोष आनंद ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम सदाबहार गीत अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हुए हैं, अब सुनिए लोकरंग। आइए सबसे पहले सुनते हैं मालती सेन से ये गणेश वंदना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है?

0: केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
4: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
5: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
3: बात बन जाए।
5: 287 मेरी चाय।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
7: तो मिलेगी ना।
6: पर कैसे?
7: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर।
8: और अब सुनिए देवकी नंदन सकवार से ये लोक भजन।

इस लोक भजन के साथ लोक रंग कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता न होने देने के संकल्प की पुष्टि करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुनिश्चित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सरकार ने इस साल 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर हर सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इस रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य को असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की वृद्धि हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। चीन में ISF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आपसे कुछ ही समय पश्चात शाम 7:10 पर आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी, समय याद रखिएगा शाम 7:20। संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे रात्रि 8:15 पर आप सुनिएगा चित्रपट संगीत संगीत सरिता। यह कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:30 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या हम रिले करेंगे रात्रि 8:45 पर। रात्रि 9:00 सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे दें हमारी कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हिंदी में समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 6 बजे से। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुनिएगा प्रातः 6:05 पर। श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ होगा प्रातः 6:30 पर। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 6:40 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार हम अनुप्रसारित करेंगे सुबह 6:55 पर। सुबह सुबह आप सुन सकेंगे प्रातः 7 बजे से।

सुबह 7:05 पर सुनिएगा कृषि संकेत आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे सुबह 7:10 पर। मन चाहे गीत ये कार्यक्रम होगा प्रातः 7:20 पर। सुबह 7:45 पर सुनिएगा संगीत सरिता।

0: समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। समय होगा सुबह के 8 बजे। लोक संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 8:15 पर। चित्रपट संगीत इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा प्रातः 8:45 पर। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनिएगा सुबह 10 बजे से। प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:05 पर। फोन करें गीत सुने इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुनिएगा सुबह 10:10 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम आपको सुनवाएंगे सुबह 11 बजे से। प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। समय होगा दोपहर के 2:10। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार सुनिएगा दोपहर 2:15 पर। इस घंटे की सुर्खियां आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनिएगा शाम 5 बजे से। युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनिएगा शाम 5:02 पर। शाम 5:30 पर सुनिएगा संगीत सरिता। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। शाम के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट ने आज लगभग 2480 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शन से जुड़े गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले नाबालिग छात्रों की रिहाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के नवनिर्मित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। नियमित रेल सेवाएं शुरू। और प्रदेश भर में कल गुरु पूर्णिमा पर महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों के लिए लगभग 2480 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि अक्टूबर 2026 में भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के लिए 18,74,00,000 रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।
1: महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन भी भोपाल में अक्टूबर नवंबर में होने जा रहा है। इसमें एशिया की 6 प्रमुख महिला टीमें जिनमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड, इनके 200 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और ये नाथू बरखेड़ा में जो नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें ये होने जा रहा है। इसमें लगभग 18 करोड़ रुपए के आसपास की

0: राशि खर्च होगी, वित्त विभाग के द्वारा इसके लिए सहमति भी दे दी गई है।
1: श्री सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने आईटी पार्क स्थापना योजना के लिए 595 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिससे 8000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। साथ ही कैबिनेट ने रिहंद और मलारगढ़ सिंचाई परियोजनाओं, आईटी पार्कों की निरंतरता, महिला सशक्तिकरण, ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस भुगतान योजना सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 साल से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करता है। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान, 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में 9 विकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही स्टेशन से नियमित यात्री रेल सेवाएं शुरू हो गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया।
2: 12 साल में जो हुआ वो भूतों न भविष्य थी। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय चल रहा है, अब रेल के अंदर जिस गति से काम चल रहा है, दिल्ली तरफ से उज्जैन इंदौर जाने के लिए अगर कोई ट्रेन आएगी तो उसको इंजन बदलने की जरूरत नहीं, वो सीधे सीधे जा सकेगी। आज से जो सौगात मिल रही है, सोमनाथ वेरावल एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस
1: और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस का ठहराव अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। इससे भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव कम होगा और करोन, निषादपुरा, छोला, भानपुर, अयोध्या, बाईपास और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को आधुनिक और अधिक सुविधा मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अपने 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष पुस्तक विमोचन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में उनका आगमन उनके व्यक्तिगत सपनों से भी कहीं अधिक था। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में उन्होंने युवाओं को नैतिक मूल्यों में दृढ़ रखने और राष्ट्र और तथा समाज की प्रगति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में राज्य पर्यटन विकास निगम की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में होमस्टे को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन, वन और संस्कृति विभाग के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने भगोरिया उत्सव का राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर मार्ग सुविधा केंद्रों के साथ अस्पताल, पेट्रोल पंप और चार्जिंग स्टेशन विकसित करने तथा कांवड़ यात्रा मार्ग पर प्रत्येक 15 से 20 किलोमीटर पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन, प्रसादी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कल पूरे प्रदेश में महर्षि सांदीपनी गुरु पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गुरु पूजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारतीय गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी ने बताया कि इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना की भी शुरुआत होगी, जिसके तहत 102 मेधावी छात्र छात्राओं को 1-1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

0: जाएगी। खंडवा में श्री धूनी वाले दादाजी दरबार में तीन दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज से प्रारंभ हो गया है। पहले दिन से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 30 जुलाई तक लगभग 4 लाख श्रद्धालुओं के खंडवा पहुंचने का अनुमान है। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया,
1: इस वर्ष हमारे गुरु पूर्णिमा का अवसर और विशेष है क्योंकि इस बार दादाजी के मार्बल के मंदिर का नव निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। वही व्यवस्था जो हर साल होती है इस साल भी रखी गई है। साथ में पुलिस प्रशासन मजिस्ट्रेट सबके सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार की ट्रैफिक की अव्यवस्था ना हो, क्राउड का कोई इश्यू ना आए और जो भी हमारे भंडारे हैं वो स्मूथली पूरे शहर भर में चलते रहें।
0: और अब बात मौसम की। प्रदेश में कल भी मॉनसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर और सागर संभाग सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद परिवार सम्मान समारोह का गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। नीमच में संचालित दस्तक अभियान के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की समीक्षा की गई। देवास जिले के सोनकच्छ में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कटनी में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार 31 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। और शिवपुरी जिले के शासकीय अनुदान प्राप्त तथा अशासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने बारे हमारे सभी बिन्ना भैयारों के लाने सैलू साहू और
1: नीरज सोनी की
0: राम राम राम राम नीरज भैया।
1: सैलू बिन्ना आपको भी राम राम पहुंचे।
0: बिल्कुल पहुंच गई भैया, और जैसे ही हमारे भैया हमारे इंतजार कर रहे थे कि किसान वाणी कब शुरू हुए, तो उनको इंतजार पूरा होगा और लेके आ गए उनको अपनों कार्यक्रम किसान वाणी। और भैया देखो, जैसे हमारे किसान भैया सब जानते हैं रोज की तरह, जैसे अपन विशेष जो दिन विशेष रहते हैं उसकी चर्चा लेके आते हैं, और अपनी जो कृषि चर्चा रहते हैं बाकी बाबी लेके आते हैं, तो आज बाबी ले आए हैं और मनोरंजन करवाए हैं लोकगीत के माध्यम से, और अच्छी सी एक भेंट वार्ता लेके आए हैं सोयाबीन और उड़द में खरपतवार प्रबंधन। तो जो भेंट वार्ता भी आपको सुनवा है, और जैसे कि मंडी के भाव और मौसम की जानकारी आप और कार्यक्रम के माध्यम से सुनते ही हो, सुबह भी हम आपको दे हैं। तो भैया सबसे पहले अपनी चर्चा हो जाए दिन दिवस की।
1: सैलू बिन्ना, अपने कार्यक्रम की परंपरा रही है कि जो दिन दिवस पड़ा थे ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे, निश्चित रूप से इस चर्चा को मुख्य उद्देश्य रहा थे कि हम वो दिन दिवस में जो भी है उखो समझे, उके प्रति जागरूक हो।
0: बिल्कुल भैया।
1: तो भैया हरो, आज 28 जुलाई है और आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस हम मना रहे हैं। भैया हरो, पूरी दुनिया भर में 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाओ जाते हैं। वायरल हेपेटाइटिस लीवर की एक सूजन है, जो भैया हरो गंभीर लीवर रोग और लीवर की कैंसर तक को कारण बनत है। हेपेटाइटिस पैदा कर्बी के बारे में 5 मुख्य प्रकार के वायरस जो है जिम्मेदार रहते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। तो भैया रो, ए दिवस पे हम सभी जने हेपेटाइटिस को खत्म करबी के लाने एकजुट हुई है। संगे संगे ई दिवस को मुख्य उद्देश्य भी जो ही है कि हम ए रोग को समझें।

0: जागरूक हों। भैया रो हेपेटाइटिस के खिलाफ लड़ाई में कोनो भी पीछे न छूट पाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हुए और लीवर की ई बीमारी को रोकबे और उके परीक्षण उपचार को बढ़ावा मिल सके। भैया रो हेपेटाइटिस के प्रकार और उनके खतरों के बारे में अगर पूरी जानकारी सही समय पे इको उपचार मिले तो निश्चित रूप से जो रोग जो है इतनो घातक नहीं हो पाते, इको पूरी तरह ठीक कर हो जा सकते। भैया रो इकी रोकथाम के लाने समय समय पर टीकाकरण भी होते, शुरुआती जांच और सही इलाज जैसी कि हमने कही है वो बहुत ज़रूरी है। तो भैया रो निश्चित रूप से ई दिवस पे अपन खो ई रोग के प्रति जागरूक होने और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने ताकि हेपेटाइटिस से छुटकारा मिल सके।
1: बिल्कुल सांची कह रहे भैया। और भैया देखो, जैसे आपने बताई कि आज हेपेटाइटिस दिवस है, तो आज एक दिवस और है, वो है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। और भैया जो हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है, और जो दिन प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए समर्पित रहते हैं, और जो दिवस पृथ्वी के सीमित प्राकृतिक संसाधनों को सही तरीका से उपयोग करने की भी सीख दी थे। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और वनों की कटाई जैसी गंभीर समस्या पे ध्यान केंद्रित करते हैं। और ई दिवस को मनावे को भी नीरज भैया जो ही उद्देश्य रहते हैं कि पेड़ पौधों और जानवरों की जो विलुप्त हो रही है प्रजातियां उनकी रक्षा हो सके। बिल्कुल। और हम सभी जने जागरूक होकर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगावे और इनको जो वन है अपन देख रहे हैं कि कटत जा रहे हैं, तो जी कटे ने और इनको दायरा भी बढ़ाओ जा सके। और अपन देखो भैया जैसे देख रहे हैं कि दिनों दिन अपन जब गर्मी को मौसम आता तो अपन पानी की कमी देख भी आते हैं, कैसे कि जो अपने बस कार चल रहा हो अपनो तो अपन पानी को रोक के नहीं राखत, उनकी बर्बादी हो जाते। तो ई दिवस के माध्यम से जा भी सब लोगों को जानकारी दी जाते, जागरूक करो जाते कि पानी की बर्बादी हो रोको जाए और अबे बसकारी में वर्षा के जल को जितो हो सके उनको बताओ जा सके।
0: माने सीधी सी बात जा कहानी के विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पे ऐसी तमाम चीजें जो अपनी प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं उनको संरक्षण कर वो जरूरी है, चाहे वे जंगल हों, वन हों, पहाड़ हों, जल हों, जो जो चीजें हैं सबको संरक्षण जरूरी है। सेलिबन्ना ये दिवस खो लेके जो है हाजिर की जो हालात बने हैं देखो, आसों पर देख रहे हैं मैं किसान भैया ने चिंतित भी हैं कि पानी जो है बीच बीच में रुक रहा है, तो जी कछु यही कारण है भैया रो अनाधुंध वनों की कटाई भई है, पेड़ बहुत कम रह गए हैं, तो हम किसान भैयाहरों की भी जिम्मेदारी बना थे कि भैयाहरों किसानी के संगे संगे फलदार वृक्षों दीगर वृक्षों को रोपण करें, उनकी जिम्मेदारी लेवे, उनको बड़े होबे तक की। निश्चित रूप से ऐसो करके हम प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ो कदम बढ़ा सकत हैं।
1: बिल्कुल भैया साची कह रहे। और देखो भैया जैसे अपन कह रहे कि दिन दिवस की चर्चा तो हो गई,
0: अब अपनी बिल्कुल,
1: बिल्कुल भैया। और देखो भैया जैसे जो जुलाई को महीना रहे थे अपन और जानते ही है कि भैया ने जैसे बोनी के काम से फुर्सत हो के देख रहे हैं कि सब जने फ्री हो गए, अब समय आ गया है अपनी फसल की निगरानी को। ऐसे समय में अपन देख रहे हैं कि जिन भैयानों की फसलें इतना ज़्यादा समय की हो गई हैं, तो मैं अब निराई गुड़ाई करवे की या खाद प्रबंधन की जरूरत है या समय जो चल रहा है, तो ऐसे में अपन हम देखने हैं कि अपनी फसलों की अपन निगरानी सही तरीके से करने हैं जी। मैं अपन देखा था कई बार के नींदा नाशक को भी हमारे भैया ने उपयोग कराते हैं और उनमें अगर सावधानी बनने बरते हैं तो उनको नुकसान भी भैया रखो उठाने पड़ा थे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते भाई अपन अगर फसलों की निगरानी करें तो अपन को उत्पादन भी अच्छा मिले और अपनी फसलें नसाने पाए।
0: बिल्कुल सांसी कही। तो सेलुबिन्ना अब ये बीच में हो गया है समय कछु संदेशों को सुनने को।
1: बिल्कुल, तो चला सुनाते जी जरूरी संदेश।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
1: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: भैया, संदेशों के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपको खूब खूब स्वागत कर रहे हैं। और भैया देखो, अपनी चर्चा तो हो गई थी और अब समय होगा है आपको मनोरंजन करवा भी को, तो आपको ले चल रहे हैं मनोरंजन की तरफ और आपको सुनवा रहे हैं जो वर्षा गीत, एक गा रहे हैं इंद्रपाल विश्वकर्मा।

0: भैया अबे अपन जो वर्षा गीत सुन रहे थे इखुंगा रहे थे इंद्रपाल विश्वकर्मा। और अब समय होगा भैया रो आपको अच्छी सी जानकारी भेंट वार्ता के माध्यम से देवे की लाने। तो आज हम भेंट वार्ता ले आए हैं सोयाबीन और उड़द में खरपतवार प्रबंधन, इसमें जानकारी दे रहे हैं अंकित रावत और जे सह संचालक कृषि सागर से हैं और इनसे बात करी है अपने राजेंद्र नारायण भैया तिवारी जी ने। तो चलो सुनाते हैं जब भेंट वार्ता।
1: किसान भैया बिनारो, समय समय पे हम अपने स्टूडियो में विशेषज्ञों को बुला के आप औरों को खेती किसानी से जुड़ी भाई समसामयिक और उपयोगी जानकारी दुआउत रहते हैं। तो आज यही क्रम में हमने आमंत्रित करो है अंकित रावत जी के लाने, जो सहायक संचालक कृषि सागर हैं। आपसे आज हम चर्चा कर रहे हैं सोयाबीन और उड़द में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। तो रावत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। जा बताएं कि हमारे किसान भैया बिन्नाहरों के लाने सोयाबीन और उड़द में खरपतवार नियंत्रण करवो काय जरूरी है और खरपतवार नियंत्रण भी कैसे करें।
2: सारे किसान भाइयों को नमस्कार। जैसे कि अभी खरीफ का हमारा सीजन चल रहा है और खरीफ के सीजन में हमारे जिले में मुख्यतः सोयाबीन, उड़द, मक्का जैसी फसलों की खेती की जाती है। अधिकतर किसान हमारे क्षेत्र में इन्हीं फसलों की बोनी करते हैं। अन्य भी फसलें होती है लेकिन मुख्यतः यही फसलें हमारे क्षेत्र में होती है। अब बात आती है खरपतवार। तो खरपतवार का मतलब ये रहता है जो चीज़ हमने हमारे खेत में जो फसल बोई है, या कह सकते हैं कि जो भी हमने किस्म बोई है फसल में भी किस्म। जैसे अगर हमने आपका सोयाबीन की 2172 किस्म बोई है, JS 2172, तो हमारे लिए केवल वो ही फसल है। अगर उसमें 2303 का पौधा दिखता है तो हमारे लिए उसको भी हम खरपतवार के रूप में परिभाषित करते हैं। चूंकि इतना किसान भाइयों के लिए आवश्यक नहीं है तो वो चलो ठीक है, दूसरी वेरायटी है उसको भी अपन फसल के रूप में ले लेते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगी, हम लोग उसको मंडी में बेचते हैं। लेकिन जहाँ बीज उत्पादन

0: कार्यक्रम लिया जाता है, किसान हमारे किसान भाइयों को बीज के रूप में वो फसल का उपयोग होता है, तो वहाँ पे जो दूसरी किस्में रहती हैं, JS 21 बहत्तर खेत में ली है तो केवल JS 21 बहत्तर के ही सारे पौधे होने चाहिए, अगर दूसरी किस्म के हैं या कोई अन्यत्र दूसरी फसल के पौधे, उनको सबको खेत में निकाल दिया जाता है। अब बात आती है कि खरपतवार से हमारे किसान भाइयों का कितना नुकसान हो सकता है। देखा जाए तो खरपतवार से हमारे किसान भाइयों को 30% से लेके 35% तक नुकसान केवल समय पे खरपतवार का प्रबंधन ना करने से होता है, क्योंकि जो हमारा पौधा रहता है खरपतवार, आप ये मान के चलिए एक आवारा फसल कह लो आप उसको,
1: जी
0: और जो आवारा फसल है वो अपनी जितनी फसल, जितना आपका पोषक तत्व लेगी, जितना आपका पानी लेगी, उससे ज़्यादा हमारे खेत का पानी ले लेगा वो, उससे ज़्यादा हमारे ज़मीनों से वो आपका पोषक तत्व प्राप्त कर लेगा। जब वायुमंडल से आपका नाइट्रोजन फिक्स होती है या वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो वो उसको हर चीज़ में वो फसल से ज़्यादा वो प्राप्त करता रहता है। और हर चीज़ का समय है, हमारे सारे किसान भाई जानते हैं कि सोयाबीन की फसल है तो वो 90 से 100 दिन, 105 दिन तक की होती है। हमारी उड़दा की फसल है लगभग 70 से 80 दिन की होती है। ऐसे ही मक्के की अलग अलग वैरायटी होती है जिसमें अलग अलग ड्यूरेशन होता है, 110 दिन का भी हो सकता है, 120 दिन का भी हो सकता है, 105 दिन का भी हो सकता है, और उसमें भी जो बढ़वार की अवस्था रहती है।
1: जी
0: अगर हम सही समय पे खरपतवार का प्रबंधन ना करें तो उससे हमारे पौधे की बढ़वार नहीं हो पाती है। जैसे हमारे घर में छोटे बालक हैं, अगर उनका आपने बचपन में प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, उनका उतना अच्छा विकास नहीं हो पाता, वही स्थिति हमारी फसलों की भी रहती है। तो हमें सर्वप्रथम तो खरपतवार का प्रबंधन इसी अवस्था में करना चाहिए, और सबसे ज्यादा जो जो नुकसान होता है वो लगभग 1 महीने के आसपास, 1 महीने से लेके आपका 40 दिन तक, तो वो सभी बहुत ज्यादा हमारी फसलों को नुकसान कर देता है। तो
1: जी
0: उसके प्रबंधन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जिससे हमारे किसान भाई केवल खरपतवार का प्रबंधन करते हुए अपनी उपज का 30% तक वृद्धि कर सकते हैं।
1: तो खासतौर से अगर अपन सोयाबीन और उड़द की बात करें तो इन फसलों में कौन कौन से खरपतवार लगाते हैं और उनकी पहचान किसान भैया आ रहे हैं कैसे कर सकते हैं?
0: आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जनरली हमारे किसान भाई ये जान लेते हैं खेत में कि वो उसकी पहचान कर लेते हैं उसकी पत्तियों से ही कर लेते हैं,
1: जी
0: कि वो चौड़ी पत्ती की खरपतवार है कि सकड़ी पत्ती की खरपतवार है। और हमारे किसान भाई जो अपना नींदा का प्रबंधन करते हैं वो उसी हिसाब से करते हैं।
1: जी
0: बाजार में जो दवाएं भी आती हैं सकड़ी पत्ती वाली खरपतवार के लिए भी आती हैं, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार के लिए भी आती हैं, दोनों खरपतवार के लिए आती हैं। और अगर हम बात करें कि आपकी चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार, तो खेतों में हमें हजार दाना, सफ़ेद मुर्गी, बन मकोई, महकुआ, पत्थर चट्टा, कनका, बड़ी दूधी, छोटी दूधी, इस प्रकार की खरपतवार हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है। सकड़ी पत्ती वाली खरपतवार में बात करें तो आपका सांवा हो गया, कोदो हो गई, दूध धारा इत्यादि प्रकार की खरपतवार हमारे किसान भाइयों को खेत में देखने को मिलती है।
1: जी
0: और जनरली क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा रोल जो रहता है आपका केवल खरपतवार नियंत्रण का ही रहता है, अगर हमने समय पर अपने खरपतवार का नियंत्रण कर लिया तो हमारे किसान भाइयों को अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो विभिन्न प्रकार की खरपतवार नाशी निजी विक्रेताओं के पास उपलब्ध रहते हैं। और आज के समय तो हमारे किसान भाइयों के लिए एक और सूचना बताना चाहेंगे कि जितने हमारे निजी विक्रेता हैं सारे के सारे लोगों प्रशिक्षित हैं, उनको डिप्लोमा के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। तो आप अपने निकटतम जो अच्छा दुकानदार है आप उसके पास जाएं जो आपको पक्का बिल दे, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि किसान भाई बड़े सीधे रहते हैं, उनको जिसने जैसा बोला वो वैसा कर लेते हैं। तो हमें अच्छी दवाई लेनी चाहिए और उसका पक्का बिल जरूर लेना चाहिए। अगर कभी ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि हमारा खरपतवार डालने के कारण हमारी फसल नष्ट हो जाती है या हमारी फसल प्रभावित होती है, तो उस स्थिति में वो जो हमने पक्का बिल लिया है हमारा वही आधार रहता है। अगर मान लो आप किसी भी स्तर पे शिकायत करते हैं तो आपके पास पक्का बिल होना आवश्यक है, अगर आपके पास पक्का बिल है तो ही आप शिकायत को क्लेम कर पाते हैं, अन्यथा हमारा किसान भाई यही सिद्ध नहीं कर पाता है कि उसने उसी विक्रेता से, दुकानदार से आपकी खरपतवार नाशी लिया है या कीटनाशी लिया है। तो सभी किसान भाइयों से एक विशेष अनुरोध है कि वो जिस भी दुकान से खरपतवार नाशी खरीदें उससे पक्का बिल अवश्य ले लें। और जब आप उसका पक्का बिल लोगे तो बिल के प्रारूप में ये भी लिखा रहता है कि आपको वो कौन सी खरपतवार नाशी दे रहा है, उसका व्यावसायिक नाम क्या है, व्यावसायिक नाम के अलावा उसमें ये भी लिखा रहता है कि इसमें कौन सा केमिकल कितने परसेंट है, उसके अलावा उसमें ये भी लिखा रहता है कि इन खरपतवार नाशी या कीटनाशी का प्रयोग हमें किन किन फसलों में करना चाहिए
1: जी।
0: तो ये चीज का हमारा किसान भाई अगर ध्यान देगा, पक्का बिल लेगा, तो उसको जो फील्ड में जो समस्याएं आती हैं वो नहीं आएगी, और वो अपना खेती में पैसा तो खर्चा कर ही रहा है, खरपतवार नाशी के लिए पैसा तो वो खर्चा कर ही रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपना अच्छा क्वालिटी का खरपतवार नाशी क्रय करके उसका वो उपयोग अपने खेतों में कर सकता है
1: जी। रावत जी, खेती किसानी में समय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो सोयाबीन और उड़द में खरपतवार नियंत्रण को सही समय का है, ये बारे में भी कछु जानकारी देवे।
0: जैसे कि अगर अपन बात करें तो सामान्यतः जो खरपतवार की जो नियंत्रण है वो अपना 20-25 दिन से प्रारंभ हो जाता है खरपतवार का नियंत्रण
1: जी।
0: अगर अपन शुरू से बात करें, बोनी से लेके अंत तक, तो जो हमारे किसान भाई है, बोनी करने के पहले जब हमारे खेत में पर्याप्त नमी आ जाती है, हल्की फुल्की खरपतवार दिखने लगती है, या ये कह सकते हैं कि खरपतवार जैसे अपना बीज का अंकुरण होता है वैसे एक बार अच्छा पानी गिर गया तो खरपतवार का भी जमाव होना रहता है, तो उस समय जब हमारे किसान भाई बोनी करते हैं तो जब कल्टीवेटर अगर मान लो ज़्यादा वैसा है तो अपन कल्टीवेटर भी चला सकते हैं, नहीं तो अपन नॉर्मल सीडल से बोनी करते हैं, तो जब हम सीडल से बोनी करते हैं तो वो होता क्या है, हमारा खरपतवार का नियंत्रण प्रारंभिक अवस्था में तो वहीं से शुरुआत हो जाता है, जो आपके खरपतवार का अंकुरण हुआ वो बीज अपन ने वहीं की वहीं समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद 20-25 दिन बाद हम चाहें तो कई विधियां हैं, कुछ हमारे किसान भाई जिनका रकबा कम रहता है वो स्वयं खरपतवार को अपने खेतों में हाथों से उचका लेते हैं, और उचका के हमारे किसान भाइयों के पास पशु रहते हैं, पशु को चारे के रूप में वो खिला देते हैं, जिससे हमारे पशु को चारा भी मिल जाता है और अच्छा चारा रहता है, और उसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों के खेत का खरपतवार भी समाप्त हो जाता है
1: जी। ये तो यांत्रिक विधि,
0: ये यांत्रिक विधि हो गई। उसके अलावा जैसे अपन देखें कि कुलपा से भी खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है सोयाबीन या उड़द की फसल में, देखा जाए बीच बीच में चूंकि डिस्टेंस ज्यादा रहता है तो जब हम कुलपा चलाते हैं, कुलपा नॉर्मल एक अपना साइकिल का टायर टाइप का रहता है, उसमें पीछा एक वो आपका पंजा टाइप का लगा रहता है, तो उससे दो काम हो जाते हैं हमारे खेत में, एक प्रकार का आपका जो नाली टाइप की भी बन जाती है, माटी हमारे पौधों पे चढ़ जाती है ना, और लेकिन इसमें थोड़ा सा एक आध महीने बाद ये प्रक्रिया हमें करनी चाहिए ताकि हमारा पौधा क्या है कि थोड़ा मजबूत हो जाए
1: जी।
0: अगर हम शुरू शुरू में करेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे पौधों को भी नुकसान होना लगे। जब हमारे पौधों को आपका मिट्टी चढ़ने की आवश्यकता है उसी समय मिट्टी चढ़ाए तो ज्यादा उपयुक्त रहता है, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के अपनी यांत्रिकी विधि हो गई।
1: और रावत जी, रासायनिक विधि के बारे में अगर अपन बात करें तो कौन कौन से रसायनों के द्वारा खरपतवारों को नियंत्रण करो जा सकते है और कैसे करें किसान भैया रहे, ये बारे में भी थोड़ी जानकारी दे मैं।
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा किसान हितों के लिए। आज के समय अधिकांश हमारा किसान भाई नीदानाशक का उपयोग करके ही खरपतवारों का नियंत्रण कर रहा है। बाजार में कई प्रकार के नीदानाशी व्याप्त हैं। जैसे अगर हम बात करें अपने सोयाबीन उड़द के लिए तो इमिजेथार पर दवा हो गई है ना, अगर हम धान के लिए जाएं तो आपका कार्फोट्रोजोन इथॉल हो गई है ना, अगर अपन तेल के लिए जाएं तो कुनॉल फॉज हो गई, इथाइल हो गई, इस प्रकार की कई प्रकार की दवाएं किसान भाइयों के लिए निजी विक्रेताओं के पास उपलब्ध है, उनका वो उपयोग कर सकता है और करता है। लेकिन दवा लेने मात्र से हमें फायदा नहीं होता, दवा लिया और खेत में डाल दिया, सबसे महत्वपूर्ण चीज है दवा जो हम ले रहे हैं वो एक प्रकार का रसायन है, एक प्रकार का केमिकल है
1: जी।
0: तो इसके लिए हमें एक चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो रसायन हम हमारे खेत में डाल रहे हैं है ना, वो रसायन को पर्याप्त पानी में मिला के खेत में डालें। अगर हम खरपतवार का नियंत्रण कर रहे हैं और हमारे खेत में अगर हमने खरपतवार डाली लेकिन कम पानी का उपयोग करा तो होता क्या है कि वो जो खरपतवार का पौधा पूरा अगर जहां भींग जाएगा ना, एक पूरा पौधा भींगेगा तो वो और अच्छी तरीके से सूखेगा पौधा, अगर वो थोड़ा बहुत पत्ती अत्ती पे गिरेगा तो उतना अच्छी तरीके से वो नियंत्रण नहीं हो पाता, उतना नहीं सूख पाता, कभी कभी ऐसा होता है कि वो दोबारा निकल के आ जाता है। तो हमें सारे किसान भाइयों को इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए, नींदा नियंत्रण के लिए कम से कम हमें प्रति एकड़ 150 लीटर पानी है ना, जैसे मान लो आपका 15 लीटर का अगर एक पंप है तो आप ये मान के चलो 10 पंप हमें एक एकड़ के लिए पर्याप्त है। अगर हेक्टर में जाएं तो वो ही लगभग आपका 400 लीटर के आसपास, 400 साढ़े 400 लीटर के आसपास पानी हो जाता है
1: जी।
0: दवा मिला के अपने खेत में अपन स्प्रे करते हैं, पौधा आपका बराबर तरीके से गीला हो जाता है, जिससे हमारे खरपतवार का नियंत्रण अच्छा होता है, है ना। उसके बाद आती है, ये तो अपना हो गया कि अपन ने इतना पानी मिला के कर दिया
1: जी।
0: हमारे किसान भाइयों के लिए खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ उनका स्वास्थ्य नियंत्रण भी आवश्यक है
1: जी। रावत जी, खास तौर से अगर अपन सोयाबीन और उड़द की बात करें

0: इनके लाने कौन कौन से खरपतवार नाशी उपयुक्त हैं, ये बारे में किसान भैयारों को थोड़ी जानकारी दे मैं।
1: जैसे अगर अपन इसकी बात करें, सोयाबीन की बात करें, तो सोयाबीन के लिए इमेजा थार्पर हो गया आपका 10 SL, 1 लीटर घास कुल की जो आपकी खरपतवार रहती है उनके लिए अपन उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर तो और भी कई खरपतवार नाशी अवेलेबल है, जैसे प्रोपोक्यो जो ना फॉस 10 EC हो गया, है ना। ऐसे अगर आप उड़दा की बात करें तो उड़दा में भी इमेजा थार्पर का प्रभाव अधिकतर किसानों के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, है ना। तो इस प्रकार के और भी कई खरपतवार नाशी हैं नए नए जो आते रहते हैं
0: जी,
1: है ना, तो इनका उपयोग करते हुए खरपतवार का प्रबंधन वो कर सकते हैं
0: जी। रावत जी, कई खरपतवार बुआई के पहले उपयोग करे जाते हैं भूमि में छिड़क के, कछु बुआई के बाद मनो अंकुरण के पहले उपयोग करे जाते हैं, तो इनके बारे में भी कछु जानकारी देवें जिससे किसान भैयारों की फसलों को नुकसान ना हो पाए।
1: देखिए, जो गेहूं की जैसे अपन बात करें, है ना, तो बुआई के पूर्व भी अपन खरपतवार नाशियों का उपयोग करते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो सोयाबीन या उड़द के लिए हो गई आपकी पेंडामेथिलीन 30 SC प्लस इमेजा थार्पर 2% EC लगभग 2.5 से 3 लीटर खरपतवार नाशी अगर हमारे खेत में डालते हैं, है ना, तो इससे हमारा शुरू से हमारे खरपतवार का प्रबंधन चालू हो जाता है। अगर सोयाबीन में बुआई के 0 से 3 दिन के बाद अगर खरपतवार प्रबंधन की बात हम करें तो कैलोमोजॉल 50 EC लगभग 1.5 से 2 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से हम डालेंगे तो इसमें हमारी चौड़ी पत्ती एवं सकड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है
0: जी।
1: और चूंकि अब ये वाला समय तो निकल चुका है, अब तो वो समय है कि हमारे खेत में खरपतवार का नियंत्रण करना है, तो खेत में खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए अपन इमेजा थार पर 10 SL 1 लीटर खरपतवार प्रति हेक्टर के हिसाब से हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। वही अगर हम इसका उपयोग अपना उड़द या उसमें करते हैं मूंग में, तो ये थोड़ी मात्रा कम हो जाती है। उड़द के लिए 750 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से इमेजा थार पर क्या मात्रा पर्याप्त होती खरपतवार नियंत्रण है तो
0: जी। रावत जी, अंत में हमारे किसान भैयारों को जा भी सलाह देवें कि वे सुरक्षा की दृष्टि से इन खरपतवार

0: रहते हैं है ना, उनका भी हम प्रयोग करें है ना, उपलब्ध हो जाए तो हाथ में अपन ग्लव्स पहन सकते हैं। ग्लव्स नहीं भी पहन रहे तो नॉर्मल अपनी जो पॉलिथिन रहती है आसानी से उपलब्ध हो जाती, उसको अपन ने थोड़ा सा हाथ में पहन लिया तो उससे क्या है कोई अपना हाथ में उसका रसायन का संपर्क नहीं आता है। और जब हम अपने पर्याप्त उसमें पानी डालें और जब हम खेत में स्प्रे करने जाएं तो चेहरे पे मास्क और चश्मा अवश्य लगाएं, क्योंकि जब हम फुहार के रूप में वो खरपतवार को हमारे खेत में डालते हैं तो कहीं हवा चलती है तो हवा के माध्यम से वही हमारे चेहरे पे आ जाती है, वो हमारे आंखों में चली जाती है, जब आंखों में चली जाती है तो उसमें आंखों में जलन होने लगती है, है ना। चेहरे में भी लंबे समय तक हम खरपतवार का नियंत्रण के लिए दवाई डालते रहते हैं तो हमारे चेहरे में हाथ पैर में खुजान टाइप की चलने रहती है
1: जी जी।
0: तो ये उसी के दुष्परिणाम है रसायनों के। तो हमारे किसान भाई जब भी इस प्रकार का काम करें तो अपने पूरे शरीर को कवर कर लें,
1: हवा की दिशा को भी ध्यान रखें,
0: की दिशा को भी ध्यान रखना चाहिए है ना, ताकि हमारे आंखों का ध्यान रखना है, हमारे चेहरे का ध्यान रखना है, हमारा शरीर का ध्यान रखना है। और जैसे ही हमारा खरपतवार का प्रबंधन हो जाए उसके पश्चात हमारा जो भी वो रहता है आपकी स्प्रेयर रहता है उसको अच्छी तरीके से धो के रख लें, आने के पश्चात अच्छी तरीके से आपका साबुन से हाथ पैर चेहरा को साफ करें और नहा के अपनी दिनचर्या आगे चालू करें। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इनका तत्काल प्रभाव नहीं दिखता है लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ जाता है दूरगामी प्रभाव इनके नजर आते हैं और यही हमारे शरीर में विकार के रूप में उत्पन्न होते रहते हैं। जब हम अपने खेत में जाते हैं तो ये बारिश का समय है, भांति भांति प्रकार के कीट और कई प्रकार के कीड़े हमारे खेतों में रहते हैं, बारिश के समय वो उनके बिलों में पानी भरा जाता है तो वो बाहर निकल के आ जाते हैं। तो हमें यानी अच्छे जूते पहनने चाहिए, जनरली तो वो आपका जो खेत वाले जो जूते आते हैं ना थोड़े से ऊंचे वाले अगर वो मिल जाए तो और अच्छा, क्योंकि कभी कभी हमारे किसान भाइयों को कांटा भी लग जाता है, कभी कभी ऐसी स्थिति निर्मित होती है कूड़ा मकोड़ा काट लेता है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब अच्छा है, अगर हमारा शरीर में कोई विकार आ रहा है तो उसका प्रभाव तो हमारे परिवार पे भी पड़ता है, हमारी खेती बाड़ी से लेके हर चीज पे पड़ता है।
1: तो अंकित रावत जी, सहायक संचालक कृषि सागर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भैयारों के लाने सोयाबीन और उड़द में खरपतवार प्रबंधन के बारे में इतनी उम्दा और नौनी जानकारी दी, एक लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखो नीरज भैया, अपन ने इतनी अच्छी भेंट वार्ता सुनी सोयाबीन और उड़द में खरपतवार प्रबंधन।
3: तो अब मिन्ना एक बार फिर समय होगा मनोरंजन को।
2: हाओ।
3: तो एक बहुत ही प्यारो सो लोक गीत अपन सुन रहे हैं, शकुंतला राजपूत को गाओ भाओ।
2: हाओ।

0: देखो भैया कितना अच्छा लोकगीत सुनो अपन ने शकुंतला राजपूत की आवाज में। और भैया देखो अब समय होगा है मंडी के भाव बतावे को।
1: किसान भैया रो आज नाज मंडी में प्रमुख नाजों के भाव ये तरीके से रहे। गेहूं 2460 रुपया से 2995 रुपया प्रति क्विंटल, चना 4000 से 6145 रुपया प्रति क्विंटल, सोयाबीन 3505 से 7130 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर 5000 से 8800 रुपया प्रति क्विंटल स्थानीय नाज मंडी में भाव रहो। राई सरसों 6000 रुपया से 7430 रुपया, बटरी को भाव 2750 से 4300 रुपया प्रति क्विंटल और मूंग को अपनी नाज मंडी में भाव 2800 से 6950 रुपया प्रति क्विंटल रहो।
0: भैया आपने मंडी के भाव बता दे, भैया हम मौसम की जानकारी दे दें तो आज को अधिकतम तापमान रहो 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहो 25 डिग्री सेल्सियस। और भैया देखो घड़ी कह रही है कि अब हो गई है विदा लेवी की भी।
1: बिल्कुल मनो किसान भैया रो विदा लेवी की पहले आकाशवाणी सागर से जुड़े रहने हैं, किसान वाणी कार्यक्रम सुनते रहने हैं, अपनी हाजिर की फसलों की अच्छी देख रेख रखने संगे संगे जो जो कार्य किसानी के हमें करने हैं उनकी जानकारी लेते रहने अपने कार्यक्रम के माध्यम से। और भैया हरो चलवी के पहले एक बार फिर अपनों ख्याल रखने अपने बाल बच्चों को ख्याल रखने कहो।
0: हाँ भैया, और भैया हरो से लिए थे विदा और करत हैं
1: राम राम, राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: अरे सुन तो,
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है?
4: हाँ, क्यों क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ।
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
2: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

परीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी इनकी स्थापना होगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। श्री गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था, तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था, तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे इनकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा श्री प्रधान का स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसा स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। श्री गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई, जबकि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृह मंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था।
भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ही और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्षी दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी, एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि ये ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाए। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और यदि सरकार जेन जेड पर भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है, मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने
तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्षी सांसदों, खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृहमंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के लिए कहा। हंगामे के बीच ही श्री मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक एमएसएमई क्षेत्र के विकास की गति को देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। श्री मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। श्री मांझी द्वारा विधेयक पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

0: क्रीचर। इस फिल्म से यह गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी अरिजीत सिंह की, गीत और संगीत था टोनी कक्कर का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: और अब सुनिए कार्यक्रम में यह गीत।

काल इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं सोनू निगम, सुजाता, अनुराधा और एआर रहमान की। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत था एआर रहमान का। इस गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए संगीत सरिता। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला नगमा।

0: रहे थे। आवाज थी पंकज उधास की।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770-43-22-97।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आपके सवाल, आपके विचार सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गजल।

इब्राहिम अश्क का लिखा हुआ कलाम अभी आपने सुना, आवाज थी हरिहरन की। इसी गजल के साथ संगीत सरिता अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: To ensure speedy justice.
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
5: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा

अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर

0: डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। FIR वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
1: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
2: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
0: भुवनेश्वर। केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरल में

0: भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था, लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला फरमाइशी गीत।

0: धर्म कांटा, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। गीत के बोल लिखे थे मजरूह ने, संगीत था नौशाद का। पसंदगी लिख भेजी थी आप सभी ने। ग्राम मोहाली, तहसील बांद्री, जिला सागर से शिव नारायण तिवारी, रश्मि तिवारी, नंदिनी, सत्यम, शिवम और नितिन तिवारी। अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव और आपके सभी साथियों ने। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान, आशीष और आपके सभी साथी। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, रामनिवास अग्रवाल, बाला साहेब, करवा, धनंजय और आपके सभी साथियों ने। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान। पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या और आपके सभी साथियों ने।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770-43-22।

0: जुर्माना। इस फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था आरडी बर्मन का। इस गीत की पसंदगी आप सभी ने भेजी है। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी, प्रांजल और आपके सभी साथी। सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां, फरहत, नुजहत, साजिया और नाजिया। कुरावली से नसरीन, नौरीन, आसना, कैफ और आपके सभी साथी। रोहतक से पीयूष, सिक्का, कुनिका, डुग्गू। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य, कोयल और आपके सभी साथी। इसी गीत को सुनना चाहा था खंडवा से विजय महोबिया, कविता, सोनू मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और आपके परिवार के सभी सदस्यों ने। मेरठ से अनिल जैन, संयम, मुस्कान और आपके सभी साथी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: अब सुनिए कार्यक्रम में ये फरमाइशी नगमा।

सनम। इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ थी पंकज उधास की। गीत लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने। फरमाइश थी आप सभी की। छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला, चीनू, दीपक, अनुश्री और आपके परिवार के सभी सदस्य। पटियाला से मुकेश भट्टा, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश और आपके सभी साथी। यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी। इसी गीत को सुनना चाहा था। सतना से उमंग मलिक, आकांक्षा, माही और आपके परिवार के सभी सदस्यों ने। राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा। और अब सुनिए कार्यक्रम में ये अगला और अंतिम फरमाइशी गीत।

तेजाब। इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थीं अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। फरमाइश थी आप सभी की। झारखंड से SM जावेद, शगुफ्ता, अंजुम और आपके सभी साथी। सनावत से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, मूसा, राजकुमार, सुदामा, लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और आपके सभी साथी। जाफराबाद से सुधाकर राजे, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद, सानवी, हर्षदा और आपके परिवार के सभी सदस्य। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण, सोनी, जगदीश और आपके सभी साथी। इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अगला कार्यक्रम सुनिएगा विद भारती से। आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र।

0: सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा।
1: वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: दोस्तों नमस्ते,
1: मैं हूं अमरकांत। आज इस प्रोग्राम में याद करेंगे गुजरे जमाने की बेहद टैलेंटेड, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री कुमकुम को, जिनका असली नाम था जैबुन्नेसा। कुमकुम उनका फिल्मी नाम था। बहुत ही संपन्न और प्रतिष्ठित घराने में जन्मी कुमकुम, उन्होंने लगभग 115 फिल्मों में काम किया और जितने भी गीत उन पर फिल्माए गए सभी हिट रहे।

0: अजीगन।
1: आर-पार फिल्म का ये गाना अभिनेत्री कुमकुम पर पिक्चराइज था। कुमकुम के जीवन से जुड़ी बातों पर विस्तार से चर्चा शुरू करने से पहले आइए इस गीत से जुड़ी कुछ बातें ही आपको बताते हैं। गुरुदत्त जब फिल्म आर-पार के निर्माण में लगे थे तो उन्होंने ये गीत कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर फिल्म में रखने का निर्णय किया और तय किया कि ये गीत अभिनेता जगदीप पर फिल्माया जाएगा। जगदीप उनको आप जानते ही हैं, अभिनेता जावेद जाफरी और नावेद जाफरी के पिता हैं और उस समय कुमकुम के मित्र भी हुआ करते थे। बहरहाल फिर गुरुदत्त ने अपना विचार बदल दिया। गीत को उन्होंने किसी महिला अदाकार पर फिल्माने की बात सोच ली और उन्होंने ये भी सोचा कि जिस महिला अदाकारा पर यह गीत पिक्चराइज किया जाए उसे नृत्य भी आता हो। लेकिन उस दौर की अभिनेत्रियां जो नृत्य भी जानती थीं, वो सभी स्थापित अभिनेत्रियां थीं और किसी ने भी इतना छोटा सा रोल करना मंजूर नहीं किया। तब गुरुदत्त ने यह रोल कुमकुम को दे दिया, जिनकी प्रतिभा के बारे में उन्हें पहले से पता था। रोल छोटा ही सही, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद फिल्म के हिट होने के साथ साथ ये गीत भी जबरदस्त हिट हुआ और इसका कुमकुम को भरपूर फायदा मिला।

ये फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का गीत था जिसमें कुमकुम और किशोर कुमार लीड रोल में थे। कुमकुम का जन्म हुआ 21 दिसंबर 1935 को हुसैनाबाद बिहार में। इनके माता पिता ने इनका नाम रखा जैबुन्निसा। जैबुन्निसा यानी कुमकुम ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कथक नृत्य की भी तालीम हासिल की थी। पंडित शंभू महाराज की शिष्या रही हैं। इनके डांसिंग टैलेंट को हम सभी ने फिल्म कोहिनूर के इस नृत्य गीत में भी देखा।

कुमकुम ने अपनी अभिनय और नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कई फिल्मों में किया। कुमकुम की प्रतिभा से प्रभावित निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने उनको भी मुख्य भूमिका में लेकर फिल्में बनाई। फिल्म ललकार में कुमकुम धर्मेंद्र की हीरोइन थी।

जलते बदल में कुमकुम किरण कुमार की हीरोइन थी। रामानंद सागर की सुपरहिट फिल्म आंखें में कुमकुम ने धर्मेंद्र की छोटी बहन का रोल अदा किया, लेकिन ये सिर्फ एक मात्र छोटी बहन का रोल नहीं था, फिल्म में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी।

फिल्म गीत। इस फिल्म में भी राजेंद्र कुमार के साथ कुमकुम ने एक अहम भूमिका अदा की थी। कुमकुम ने भोजपुरी की उल्लेखित फिल्म गंगा मैया तोहे पेरिये चढ़ैबो में मुख्य भूमिका अदा की।

0: कुमकुम मेरे।
1: अपने पूरे फिल्मी करियर में कुमकुम ने लगभग 115 फिल्मों में काम किया। इनमें से हिट और उल्लेखनीय फिल्मों की बात अगर की जाए तो इस तरह से हैं, मदर इंडिया,

0: अभिनेत्री कुमकुम पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे स्वर अमरकांत का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: To ensure speedy justice.
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
4: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनाव को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये जिंदगी भी अजीब है। जिंदगी कभी सवाल बन जाती है जिसका जवाब हम भी खोज नहीं पाते कभी। कभी ये मुस्कुराहटों की चादर ओढ़कर बैठी रहती है तो कभी खामोशियों में आंसू छिपा लेती है। जितना इसे समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ये नए नए मोड़ दिखा देती है। शायद जिंदगी का मकसद हर सवाल का जवाब देना नहीं बल्कि हर अनुभव से हमें थोड़ा और बेहतर इंसान बनाना है। इसीलिए कुछ सवालों को वक्त के हवाले कर देना ही सबसे सही जवाब होता है। हम नहीं खोज पाते कुछ सवालों के जवाब।

ये दिल बड़ा अजीब है, ठगता है कभी कभी, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी ज़माने से रूठ जाता है, कभी खुशियों की पालकी पर सवार होकर उड़ जाता है आसमान में, तो कभी स्मृतियों की धूल में चुपचाप बिखर जाता है, कभी एक छोटी सी मुस्कान में पूरा आकाश समेट लेता है, कभी अनकहे शब्दों के बोझ तले निःशब्द हो जाता है, कभी भोर के ओस की पहली बूंद सा मुस्कुराने लगता है। शायद इसी का नाम दिल है, जो टूटकर प्यार करना नहीं भूलता।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। सोचा तो था नहीं करेंगे मोहब्बत, नहीं जाएंगे उम्मीदों की पालकी लेकर, लेकिन कुछ रिश्ते तकदीर की स्याही से लिखे होते हैं। उनसे बचने की हर कोशिश हमें उसी मोड़ पर ले आती है जहां

दिल फिर से धड़कना सीख जाता है। सोचा तो था नहीं करेंगे मोहब्बत, नहीं जाएंगे उम्मीदों की पालकी पर, लेकिन जब जिंदगी किसी खास शख्स से रूबरू कराती है तो इरादे पिघल जाते हैं, पीछे रह जाते हैं और दिल अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है। तभी तो शायर ने कहा है, दिल पर मुश्किल बहुत है दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर पानी लिखना।

कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है, फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, तुझे चाहा। शायद यही तो प्रेम की सबसे सच्ची और मासूम परिभाषा है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है। यही सच्ची प्रेम की परिभाषा है।

हमारे मन में स्मृतियों का सागर होता है, कुछ दर्द भरी स्मृतियाँ, कुछ खुशगवार। कुछ दर्द भरी स्मृतियों की लहरों से हमारा मन लहूलुहान भी होता है, कुछ दर्दीली स्मृतियाँ भी हमें सहलाती हैं कभी कभी। कुछ प्यारी स्मृतियाँ हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूलकर किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं और हम गुनगुनाते हैं कुछ यूं।

0: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8% जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्र टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यहीं संपन्न होती है। कल सुबह आपकी सेवा में एक बार पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।